भवता तद विषय चिंतन करना है ना बात जोड़ने का मतलब वो परमात्मा विषय जो चिंतन है चिंतन में लगाओ मेरा मन क्या करे परमात्मा के ब्रह्म चिंतन में परमात्मा चिंतन में तत्व चिंतन में लग जाए। ये आपको बताया केवल इतना चाहिए धिया हाँ धी हमारे बुद्धि बुद्धि का मतलब यह बुद्धि उपलक्षित सब इंद्रिया हाँ इंद्रिया भी हमारे तत्व चिंतन में लग जाए। मतलब इंद्रिया का अर्थ हुआ इंद्रिया अधिष्ठात्री देवता इंद्रिया के जो अधिष्ठात्री देवता आए कि नहीं जैसे हमारा नेत्र है हाँ नेत्र के अधिष्ठात्री देवता कौन है सूर्य है और मन के अधिष्ठात्री देवता कौन है चंद्रमा। इसी प्रकार एक एक इंद्रियों का एक एक अधिष्ठात्री देवता है उन देवता को भी हम इंद्रिय उपलक्षित तत् तत् देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इंद्रियां हमारा मन हमारे बुद्धि परमात्मा में लग जाए लगाना मन तत् तत् चिंतन करना। तो इस बात को पहले मैं बतलाया युंजाना प्रथम मन तत्वाय मिला सविता धिया अग्ने ज्योतिर्निशाय पृथ्वी अध्याय मन। अब इसी बात को यहां बताते हैं युंजाना प्रथम मन छठा मंत्र की भूमिका में मिला जुंजान प्रथम मन इत्यादिना सवित्रादि प्रार्थना प्रतिपादिता इत्यादि मंत्रों के द्वारा भगवान सविता से प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना क्यों हमारे मन जो है हमारा इंद्रिय जो है इंद्रिय उपलक्षित देवताएं हैं नहीं बात ईश्वर चिंतन में आत्मचिंतन में लग जाए। अब कहते हैं यस्तु पुनः प्रार्थना अकृत्वा अभी प्रार्थना जो नहीं कर किया मान लो कि हमने प्रार्थना नहीं किया और ध्यान में बैठ गया तो हानि क्या है क्यों जरूरत है हे अमृतस्य पुत्राः आगे आए ना इसी पहले के मंत्र में शेरबंतु आप सुनो सुनो सुनो हे देवताओं ये अमृत के पुत्र दिव्य लोक में रहने वाले हमारी प्रार्थना सुनो और हमकी अनुज्ञा दो हमारे प्रार्थना का स्वीकार करो कि हम ध्यान में बैठ रहे हैं योग में बैठ रहे हैं। तो पूछा गया अगर देवताओं की प्रार्थना करने की जरूरत क्या है ना करके बैठ जाए तो कहते देवताओं के प्रार्थना किए बिना यदि बैठोगे तो उसमें विघ्न आ जाता है रुकावट आ सकता है प्रतिबंधक आ सकता है क्योंकि किसी भी शुभ कर्म के प्रति मंगलाचरण करते हो कि नहीं शुभ कर्म के प्रति मंगलाचरण होता है ऐसे तो बोलते हैं ना मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुनर्याक्ष मंगलायतन हरि सब मंगल ही मंगल है सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधगे सर नेत्र मके गौरी नारायण नमस्तुति इसे बोलते हैं ना मंगलाचरण। आप जो तुम नहीं करोगे बड़ा का आशीर्वाद नहीं लोगे बड़ा का अनुज्ञा नहीं लोगे तो तुम्हारे ध्यान में विघ्न आ जाएगा हाँ? ये बात बता रहा है देखो यस्तु पुनः प्रार्थना मकृत्वा प्रार्थना किए बिना है बात प्रार्थना शेरबंधु विश्व अमृतस्य पुत्रा इसका मतलब समझ में आए ना हे अमृत के पुत्रों अमृत के पुत्र कौन है ये ऋषियों से प्रार्थना देवलोक में रहने वाला देवर्षियों से प्रार्थना मर्त्यलोक में रहने वाला ब्रह्म ऋषियों से प्रार्थना बड़े बड़े ऋषियों से बड़े बड़े देवताओं से प्रार्थना की जाती है हा? हमारे यहाँ सप्त ऋषि आएंगे नहीं कोई भी काम करो ऋषियों की पूजन करना पड़ता है काम करो ना ऋषि पूजन करो दिव्य देवता के पूजन करो
हाँ चारों दिशा दसों दिशाओं से दसों दिशाओं का जो देवता है उनकी पूजन करना पड़ता है, स्थान देवता की पूजन करना पड़ता है, वास्तु देवता की पूजन करना पड़ता है, क्यों इनको खुश करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, तो उसको अनुज्ञा लेकर आप शुभ कर्म करते हैं। ये बात इसी में बता रहे हैं, हे अमृत के पुत्र श्रीवंतो हो। कौन से ये अमृत के पुत्र कहाँ रहता है? आगे बतलाया गया, धामानी दिव्यानी तस्तु हो। ये दिव्यानी धामानी तस्तु हो, दिव्य धामों में रहने वाले। दिव्य धाम क्या है? दिवी भव दिव्य, दिवी मानी ज्योतिर्मय, दीप कहते ज्योति को। देवलोक में रहने वाला, ज्योतिर्मय लोक में रहने वाला देवता देवर्षि आदि है, मर्तलोक में रहने वाला ब्रह्म ऋषि आदि है, ये सबसे प्रार्थना की जाती है। दिव्यानि प्रार्थना मकृत्व तैर अनुज्ञात संयोगे प्रवर्तते स भोग हेतु कर्मयैव प्रवर्तते। तो योग में जो प्रवृत्त होता है उनका भोग के हेतुभूत हो जाता है। मतलब क्या है? परमार्थ में न लाग करके व्यवहार में योग आदि में लग जाए, किसके लिए है ये? देखो योग तो करता है, योग है ये। हिरण्याक्ष ने 1,00,000 वर्ष तपस्या की, योग किया। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु 1,00,000 वर्ष तपस्या किया। अभी यो तो पुराणों में देखो भगवान विष्णु 3,50,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। हाँ 3,50,000 दिव्य वर्ष हमारे वर्ष नहीं है। इसी प्रकार शंकर ने, इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने तपस्या की, लक्ष्मी ने किया, पार्वती ने किया, 1,00,000 वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के बाद में क्या हुआ? दिव्य भोग मिला उनको, विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, शिवलोक की प्राप्ति हुई, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। हाँ ये सब क्या चीज है? अगर जब जो मोक्ष के लिए प्राप्त करता तो इतना योग किया है, दिव्य भोग हमको ये पद मिले, ये पद है याद रखना, है नहीं बात? ये जो देवता लोग जो तपस्या करके प्राप्त करते हैं ना, अथवा असुर लोग तपस्या करके प्राप्त करते हैं ना, योग करके अभ्यास करके प्राप्त करते हैं ना, ये सब किसके लिए है? ये सब भोग आने बात, दिव्य भोग, मर्त्य भोग, पितृलोक का भोग, गंधर्व लोक का भोग, आने बात, ये सब भोग अलग अलग है। जो जिस लोक में जाना चाहते तद विषय उपासना करे, तद विषय अभ्यास करे, तो लोग इसको मिलता है। अगर यदि तुमने देवताओं की अनुज्ञा के बिना अभ्यास शुरू कर दिया तो तुम्हारे को क्या मिलेगा? कहते भोग मिलेगा। और यदि देवताओं की अनुज्ञा लेकर के तुमने योग में अभ्यास किया तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का अभ्यास। इस बात के लिए यह प्रार्थना करते हैं, भोगो हेतु हो कर्मयैव प्रवर्तते। तो कर्म में ही इनकी प्रवृत्ति होती है। तो कौन सा कर्म? तो ये बतला रहे अग्निहोत्र, अग्नि जत्र अभिमिच्छते, वायु जत्र अधिरुध्यते, सोमो जत्र अतिरिच्छते, मेरा मन तत्र संजायते। मेरा मन कहाँ लगे? मन को कहाँ निवेश करना चाहते हो? यही है, यहाँ बोलते हैं हम आपने ध्यान करना चाहते हैं ध्येय वस्तु में। अभी पहले तो ध्यान बतलाया था आपको, ध्यान तिलेशु तैलम ददनी वर्पिण आप स्रोत सरणशु अग्नि, आया कि नहीं यार? तिलेशु तैलम, परमात्मा कहाँ रहे? देखो परमात्मा का दो स्वरूप है, याद रखना, यह उसमें ही बतलाया गया। एक सामान्य स्वरूप है, एक विशेष स्वरूप है, हाँ बात। परमात्मा का दो स्वरूप है,
सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप। तो सामान्य स्वरूप कैसा है और विशेष स्वरूप कैसा है? जैसे अग्नि है ना, अग्नि, अग्नि का दो स्वरूप है, एक सामान्य अग्नि और विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि जैसे तिलेशु तैलम दधनी व सर्पिर आप स्रोतसु अरणिश अग्नि, तिल में तेल है, दही में घी है, यानी स्रोतों में जल है और अरणि में अग्नि है। अरणि तो देखने में आता है, लकड़ी के अंदर अग्नि है देखने में आता है, क्यों? वो सामान्य अग्नि है। तो अग्नि लकड़ी के अंदर है, यानी बात अग्नि हमारे शरीर में है। अग्नि जथई का भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूप बहुव एकस तथा सर्वभूता अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिष्य। जैसे एक ही अग्नि भूमंडल के अंदर प्रविष्ट होकर के तत्त्व रूप हो गया, पर अग्नि देखने में नहीं आता, अग्नि का आश्रय देखते हो, यानी बात। तो सामान्य अग्नि व्यापक है, सामान्य अग्नि व्यापक है, आप विशेष अग्नि प्रत्यक्ष है। तो आपका सामान्य अग्नि चाहिए कि विशेष अग्नि चाहिए? तो जैसे अग्नि सामान्य होने से व्यापक है और किसी का विरोधी नहीं है, किसी का विरोधी कौन होगा? विशेष अग्नि। जैसे मस्तिष्क में आपका अग्नि है, मस्तिष्क के तिल्ली में अग्नि आएगी नहीं, परंतु प्रकृत आपका जेब नहीं जलाता है, जेब में रख तो जलता है, पर अग्नि है कि नहीं? अगर यदि अग्नि नहीं होता आप रखते क्यों उसको? तो जैसे अग्नि मस्तिष्क के अंदर होता हुआ भी देखने में नहीं आता है, जल के अंदर अग्नि होता हुआ भी जल में देखने में नहीं आता है, लकड़ी के अंदर होता हुआ भी देखने में नहीं आता है, भूमंडल के अंदर अग्नि होता हुआ देखने में नहीं आता है, उसको कहते हैं सामान्य अग्नि। विशेष अग्नि कौन? जब मस्तिष्क को घर्षण करोगे प्रकट होगा, उसी अग्नि से तुम अगरबत्ती जला सकते हो, बीड़ी सिगरेट जला सकते हो, आनी बात उसी से कर सकते हो। सामान्य अग्नि से तो जलेगा नहीं ना अगरबत्ती, जलेगा तो कौन सा अग्नि चाहिए अगरबत्ती जलाने के लिए? ऐसे ही परमात्मा तुम्हारे जो है ना अज्ञान की निवृत्ति करता है, अविद्या की निवृत्ति करता है, तुमको मोक्ष देता है, पर कौन सा अग्नि परमात्मा देगा? क्योंकि सामान्य चेतन जो है ना, सामान्य चेतन जैसे तेल में तेल है पर देखने में नहीं आता, घर्षण किए बिना तेल जो है ना प्रकट नहीं होता है, दही में मक्खन है पर मक्खन होता हुआ भी देखने में नहीं आता, जब तुम इसको मंथन करोगे तो मक्खन प्रकट होता है, ऐसे ही परमात्मा व्यापक होता हुआ भी हमारे भीतर होता हुआ भी हमारे अज्ञान को मिटा नहीं सकता। क्यों? उसके साथ इसका विरोध नहीं है, उसके साथ जैसे अग्नि के साथ लकड़ी का विरोध नहीं है, सामान्य अग्नि के साथ मस्तिष्क का विरोध नहीं है, हाँ विरोध कौन होगा? प्रकट करोगे। ऐसे ही परमात्मा सब जगह में है, तो हमारे भीतर भी है, तो हमारे अज्ञान को, हमारे अविद्या को, हमारे दुखों को क्यों नहीं मिटा सकता? तो इसको विशेष रूप में प्रकट करना पड़ता है, सामान्य से विशेष रूप में प्रकट करना पड़ता है, यानी बात। सामान्य चेतन को क्या करोगे? तो कैसे करोगे? साधन के द्वारा। तो साधन क्या है? आप अलग अलग अलग अलग अलग अलग साधन की प्रक्रिया है, अधिकार के भेद से साधन की प्रक्रिया में भिन्नता होती है। एक व्यक्ति सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करता है, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करता है, वो
ये जो तीन साधन ये बता रहा है ना ये

0: का परंपरा साधन है, याद रखना। एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन, साक्षात साधन। ये कर्म परंपरा साधनों में आता है, बहिरंग साधन आने बात। अबे आपको मन को कहाँ लगाना है, ये प्रश्न हुआ। हमने पूछा कहाँ लगाए मन, तो स्मृति कहती है मन कहाँ लगाना चाहते हो, अग्नि जत्र अभिमिच्छते है, जहां अग्नि का मंथन होता है। अग्नि का मंथन होता है क्या मतलब, कर्मकांड में अग्नि का मंथन होता है, यज्ञ होता है, हवन किया जाता है, अग्नि मंथन होता है। वो यज्ञ तभी होगा ना जब मंथन करके अग्नि को प्रकट करोगे, तो अग्नि मंथन कहाँ होगा, जहां अग्नि होगा वहां से मंथन करोगे। जल को मंथन करने से अग्नि प्रकट होगा क्या, जिसमें अग्नि रहेगा उसी को मंथन करोगे तो वहां से अग्नि प्रकट होगा, दूसरे जगह से नहीं। ऐसे परमात्मा जहां रहेगा वहां ध्यान निर्मथनाभ्यासा देवम पश्य निगूढ़वत। हाँ आया कि नहीं आया, कहाँ आया, अरे इसी में आया नहीं, कठोपनिषद में जाते हो, ये क्या पढ़ा आपने, इसमें श्लोक देखो पहले आना। हाँ स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्राणवम सउत्तर अरणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासा देवम पश्य निगूढ़वत्। चौदहवा श्लोक है, दूसरा पहले अध्याय का चौदहवा श्लोक है, समझ गए। स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्राणवम स उत्तर अरणिम ध्यान निर्मथनाभ्याम देवम पश्य निगूढ़वत्। निगूढ़ माने छिपा हुआ, तो छिपा हुआ का मतलब जैसे तेल में तेल छिपा हुआ रहता है, दूध में दही में घी छिपा रहता है, अरणि में अग्नि छिपी रहती है, ऐसे परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। तो कैसे प्राप्त करोगे, अपने शरीर को अरणि बनाओ, स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्राणवम स उत्तर अरणिम। प्राणम मानी ओंकार, प्रकर्षेण नुयते स्तुयते इति प्राणव प्रकंस न नास्ति व उष्माकम इति प्राणव। हाँ जो प्र माने प्रभंस, न माने नास्ते, वह माने उष्माकम। साधक के अंदर जो प्रणव के जप करने वाला के अंदर से ये प्रभंस हमेशा के लिए मिट जाता है, इसलिए इनका नाम रखा प्रणव। इसको ओंकार भी कहते, प्रणव भी कहते हैं, आने बात उद्गीत भी कहते हैं, उद्गीत उद ऊर्धम गियते गायते उद्गीत। ये प्रणव उच्चारण कैसे किया जाता है, उच्च स्वर से
1: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम शिवाय नमः। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज Spiritual Music. In this, you are about to listen Shiva Stotram. The title is Shiva Sahasra Namavali from Linga Puranam, Chapter 65, presented by Sri Subramanian Sharma, Chennai. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Namah Shivaya. Linga Mahapurane, Purva Bhage, रुद्रसहस्रनामकथनं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्याये शिवसहस्रनामावलिः।

नमः राजोदयाय नमः कर्त्रे नमः मृगबाणार्पणाय नमः घणाय नमः महातपसे नमः दीर्घतपसे नमः अदृश्याय नमः धनसाधकाय नमः संवत्सराय नमः कृताय नमः।

सुवक्त्राय नमः, उदग्राय नमः, विनताय नमः, दीर्घाय नमः, हरिकेशाय नमः, सुतीर्थाय नमः, कृष्णाय नमः, श्रृगालरूपाय नमः, सर्वार्थाय नमः, मुण्डाय नमः, सर्वशुभंकराय नमः, सिंहशार्दूलरूपाय नमः, गंधकारिणे नमः, कपर्दिने नमः, ऊर्ध्वरेतसे नमः, ऊर्ध्वलिंगिने नमः, ऊर्ध्वशायिने नमः, नभसे नमः, तलाय नमः, त्रिजटिने नमः, चीरवाससे नमः, रुद्राय नमः,

महापाशाय नमः, नित्याय नमः, गिरिचराय नमः, अमताय नमः, सहस्रहस्ताय नमः, विजयाय नमः, व्यवसायाय नमः, आनन्दिताय नमः, अमर्षणाय नमः।

नमः विश्वकर्मणे नमः विश्वभुजे नमः तीक्ष्णाय नमः अपायाय नमः हर्यश्वाय नमः सहायाय नमः कर्मणे नमः कालविदे नमः विष्णवे नमः प्रसादिताय नमः।

सर्वतो मुखाय नमः विमोचनाय नमः शरणाय नमः हिरण्यकवचोद्भवाय नमः मेखलायै नमः कृतिरूपाय नमः।

महागिरये नमः, धन्वन्तरये नमः, धूमकेतवे नमः, सूर्याय नमः, वैश्रवणाय नमः, धात्रे नमः, विष्णवे नमः, शक्राय नमः, मित्राय नमः, त्वष्ट्रे नमः, धराय नमः, ध्रुवाय नमः, प्रभासाय नमः, पर्वताय नमः, वायवे नमः, अर्यम्णे नमः, सवित्रे नमः, रवये नमः, धृतये नमः, विधात्रे नमः, मान्धात्रे नमः, भूतभावनाय नमः, नीराय नमः, तीर्थाय नमः, भीमाय नमः, सर्वकर्मणे नमः, गुणोद्वहाय नमः, पद्मगर्भाय नमः, महागर्भाय नमः, चन्द्रवक्त्राय नमः, नभाय नमः, अणघाय नमः, बलवते नमः, उपशान्ताय नमः, पुराणाय नमः।

नमः चरणाय नमः धात्रे नमः परिधायै नमः परिपूजिताय नमः संयोगिने नमः वर्धनाय नमः वृद्धाय नमः घणिकाय नमः गणाधिपाय नमः नित्याय नमः धात्रे नमः सहायाय नमः देवासुरपतये नमः पत्ये नमः युक्ताय नमः युक्तबाहवे नमः सुदेवाय नमः सुपर्वणाय नमः आषाढाय नमः सुषाढाय नमः स्कन्धदाय नमः हरिताय नमः हराय नमः वपुषे नमः आवर्तमानाय नमः अन्याय नमः वपुश्रेष्ठाय नमः महावपुषे नमः शिरसे नमः विमर्शनाय नमः सर्वलक्ष्यलक्षणभूषिताय नमः अक्षयाय नमः रथगीताय नमः सर्वभोगिने नमः महाबलाय नमः साम्नायाय नमः महाम्नायाय नमः तीर्थदेवाय नमः महायशसे नमः निर्जीवाय नमः जीवनाय नमः मन्त्राय नमः सुभगाय नमः बहुकर्कशाय नमः रत्नभूताय नमः रत्नांगाय नमः महार्णवनिपातविदे नमः मूलाय नमः विशालाय नमः अमृताय नमः व्यक्ताव्यक्ताय नमः तपोनिधये नमः आरोहणाय नमः अधिरोहाय नमः शीलधारिणे नमः महातपसे नमः महाकंठाय नमः महायोगिने नमः युगाय नमः युगकराय नमः हरये नमः युगरूपाय नमः महारूपाय नमः वहनाय नमः गहनाय नमः नगाय नमः न्यायाय नमः निर्वापणाय नमः आपादाय नमः पंडिताय नमः अचलोपमाय नमः बहुमालाय नमः महामालाय नमः शिपिविष्टाय नमः सुलोचनाय नमः विस्ताराय नमः लवणाय नमः कूपाय नमः कुसुमांगाय नमः पलोदयाय नमः ऋषभाय नमः वृषभाय नमः भंगाय नमः मणिबिम्बजटाधराय नमः इन्दवे नमः विसर्गाय नमः सुमुखाय नमः शूराय नमः सर्वायुधाय नमः सहाय नमः निवेदनाय नमः सुधाजाताय नमः स्वर्गद्वाराय नमः महाधनुषे नमः गिरावासाय नमः विसर्गाय नमः सर्वलक्षणलक्षविदे नमः गंधमालिने नमः भगवते नमः अनंताय नमः सर्वलक्षणाय नमः संतानाय नमः बहुलाय नमः बाहवे नमः सकलाय नमः सर्वपावनाय नमः करस्थालिने नमः कपालिने नमः ऊर्ध्वसंहननाय नमः यूने नमः यंत्रतंत्रसुविख्याताय नमः लोकाय नमः सर्वाश्रयाय नमः मृदवे नमः मुंडाय नमः विरूपाय नमः विकृताय नमः दंडिने नमः कुंडिने नमः विकुर्वणाय नमः वार्यक्षाय नमः ककुभाय नमः वज्रिणे नमः दीप्ततेजसे नमः सहस्रपदे नमः सहस्रमूर्ध्ने नमः देवेन्द्राय नमः सर्वदेवमयाय नमः गुरवे नमः सहस्रबाहवे नमः सर्वांगाय नमः शरण्याय नमः सर्वलोककृते नमः पवित्राय नमः त्रिमधवे नमः मन्त्राय नमः कनिष्ठाय नमः कृष्णपिंगलाय नमः ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः शतघ्नाय नमः शतपाशधृषे नमः कलायै नमः काष्ठायै नमः लवाय नमः मात्रायै नमः मुहूर्ताय नमः अह्ने नमः क्षपायै नमः क्षणाय नमः विश्वक्षेत्रप्रदाय नमः बीजाय नमः लिंगाय नमः आद्याय नमः निर्मुखाय नमः सदसते नमः व्यक्ताय नमः अव्यक्ताय नमः पित्रे नमः मात्रे नमः पितामहाय नमः स्वर्गद्वाराय नमः मोक्षद्वाराय नमः प्रजाद्वाराय नमः त्रिविष्टपाय नमः निर्वाणाय नमः हृदयाय नमः ब्रह्मलोकाय नमः परागतये नमः देवासुरविनिर्मात्रे नमः देवासुरपरायणाय नमः।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: நமஸ் சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நமஸ் சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhara Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Ittham Sheetam Prabhutam, Tavakanaka Sabha Nathavodham Kvashaktihi, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये, गांगम वारी मनोहारि मुरारि चरणच्युतम्, त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्। नमःशिवाय सोमाय सगुणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंतहेतवे, शक्तिरप्रतिमायस्य ह्यैश्वर्यञ्चापि सर्वगम्, स्वामित्वं च विभुत्वं च ஸ்வபாவம் சம்ப்ரசக்ஷதே, தமஜம் விஸ்வகர்மாணம் சாஸ்வதம் சிவமவ்யயம், மகாதேவம் மகாத்மானம் வ்ரஜாமி சரணம் சிவம். ஸ்ரீமத் க்ஷீரதரங்கிணி தடகதே புண்யே விரிஞ்சே புரே, நித்யம் சந்நிஹிதம் கிலாகலயிதும் க்ஷீராபிஷேகாதரம், ஸ்ரீகாருத்மத வல்லிகா சஹசரம் மார்கே சஹாயம் நிருணாம், ஸ்ரீமத் தீக்ஷித விப்ரதைவதவரம் சஞ்சிந்தயே சங்கரம். ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரசிதஸ்ய கங்காதராஷ்டகஸ்ய த்விதீய ஸ்லோக. ஸ்லோகேஸ்மின் பித்ரோ தாரித்ர்யவசாத் பேயக்ஷீராலாபரூபாம் ஆர்த்திமாபத்யமானஸ்ய வியாக்ரபாதசூனோ உபமன்யோ ஆர்த்திஹந்தாரம் ததிஷ்டப்ரதம் பகவந்தம் ஸ்துவந்தி தீக்ஷிதேந்திராஹ. ஏவம் பவதி ஸ்லோகஹ. க்ஷீரம் ஸ்வாது நிபீய மாதுல கிரஹே கத்வா ஸ்வகீயம் கிரஹம், க்ஷீராலாப வசேன கின்ன மனசே கோரம் தபஹ குர்வதே, காருண்யாத் உபமன்யவே நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான், ஆர்த்தத்ராண பராயணஸ்ய பகவான் கங்காதரோ மே கதிஹி இதி. அன்வயஹ ஏவம் பவதி. ஸ்வாது க்ஷீரம் மாதுல கிரஹே நிபீய ஸ்வகீயம் கிரஹம் கத்வா க்ஷீராலாப வசேன கின்ன மனசே கோரம் தபஹ குர்வதே உபமன்யவே, யஹ காருண்யாத் நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. ஸ்லோகேஸ்மின் பிரயுக்தஹ ஏகைகோபி சப்தஹ ஸ்ரீ சிவமஹாபுராணாந்தர்கதாயாஹ சப்தம்யாஹ வாயவீய சம்ஹிதாயாஹ பிரதமே பாகே சதுஸ்த்ரிம்ஷத் பஞ்சத்ரிம்ஷத் அத்யாயயோஹ கதிபய ஸ்லோகானாம் சாரஹ. ஸ்ரீ சிவமஹாபுராணாந்தர்கதாயாஹ சப்தம்யாஹ வாயவீய சம்ஹிதாயாஹ பிரதமே பாகே சதுஸ்த்ரிம்ஷத் பஞ்சத்ரிம்ஷத் அத்யாயாப்யாம் பிரதிபாதிதம் உபமன்யு அனுக்ரஹ விருத்தாந்தம் சங்க்ருஹந்தி, கோரம் தபஹ குர்வதே கின்ன மனசே உபமன்யவே, யஹ காருண்யாத் நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. கோரம் துஷ்கரம் தபஹ குர்வதே தபஹ அனுதிஷ்டதே, கின்ன மனசே கின்னம் சோகாக்ரஸ்தம் மனஹ யஸ்ய தஸ்மை உபமன்யவே, வியாக்ரபாதசூனவே தௌம்யாக்ரஜஸ்ய ச பகவத்யவஹித மனசே இதி யாவத். யஹ இதி வாக்யசேஷஹ. காருண்யாத் தத்துஹ்க பிரஹாணேச்சாதஹ நிரவதிம் நிஸ்ஸீமானம் க்ஷீராம்புதிம் க்ஷீரசமுத்ரம் தத்தவான் சஹ பூதபாவனஹ ஆர்த்தத்ராணபராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி. தத்ர உபமன்யோஹ மனஃக்கேதே ஹேதுமாஹுஹ. ஸ்வாது க்ஷீரம் மாதுல க்ருஹே நிபீய ஸ்வகீயம் க்ருஹம் கத்வா க்ஷீராலாபவசேன இதி. ஸ்வாது ரசனேந்திரியேஷ்டம், க்ஷீரம் கவ்யம் பயஹ मातुलगृहे इत्यनेन मातुर्जन्मगृहे इत्यर्थः। निपीय आस्वाद्य स्वकीयं गृहं गत्वा इत्यनेन स्वपितुर्गेहमेत्य इत्यर्थः। क्षीरालाभवशेन क्षीरस्य अहरः पेयस्य पयसः अलाभः अप्राप्तिः तस्य वशः अभिभवः क्षीरालाभवशः तेन इति एवं वर्तते कथा। अस्ति शिवं नाम शिवमधिकृत्य प्रवृत्तं चतुर्विंशतिसहस्र ग्रन्थसङ्ख्याकं चतुर्थं पुराणं यथोक्तं तदन्तर्गतायां सप्तम्यां वायवीयसंहितायां ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परं आग्नेयं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गं वाराहमेव च स्कान्दं च वामनं चैव कौर्मं मात्स्यं च गारुडं ब्रह्माण्डं चेति पुण्योऽयं पुराणानामनुक्रमः। तत्र शैवं तुरीयं यत् शार्वं सर्वार्थसाधकम् इति तस्य भेदाः एव मुक्ताः। यदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसंमितं तस्य भेदान् समासेन ब्रुवतो मे निबोधत इति व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशत्सहस्रकं शैवं तत्र पुराणं वै चतुर्थं सप्तसंहितं विद्येश्वराख्या तत्राद्या द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पञ्चमी कथिता चोमा षष्ठी कैलाससंहिता सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह इति। वायवीयसंहितायाः भेदः पुनरुच्यते। चतुस्साहस्रकं यत्तु वायवीयमुदीरितं तदिदं वर्तयिष्यामि भागद्वयसमन्वितम् इति। अत्र सप्तम्यां वायवीयसंहितायां भगवता वायुना नैमिषारण्यस्थेभ्यः ऋषिभ्यः परमेश्वरस्य कथाः निवेदिताः। पुरा हि शौनकादयः महर्षयः शिवतत्त्वं ज्ञातुकामाः ब्रह्माण्डं प्रपेदिरे। स च तान् महर्षीन् सहस्रवर्षपर्यन्तं क्रतुं कञ्चित् अनुतिष्ठितमादिदेश। तत्समाप्तौ पितामह निदेशात् वायुभगवान् तत्र आविर्भूय शिवतत्त्वं तान् ऋषीन् उपदिश्य तानजग्राह। शिवात् वायोः उत्तमत्वकथनेन यस्य विषराजाशिनः परमेश्वरस्य अपकर्षः मध्वाचार्यैः श्रीमद्भागवतवचनविरुद्धं कृतः तस्य भगवतो विषकण्ठस्य स्तुतिः प्रथमे श्लोके कृता श्रीमदप्पय्यदीक्षितेन्द्रैः। शिवभक्तवर्येण भगवता वायुना यस्य गुणकथाः शिवपुराणे वर्णिताः तस्य श्रीपार्वतीपतेः स्तुतिं विधातुमेवायं द्वितीयश्लोकः निबद्धः इति प्रतीयते। तत्र उपमन्युवृत्तान्तजिज्ञासुभिः महर्षिभिः वायुदेवं प्रति कृतः प्रश्नः। धौम्याग्रजेन शिशुना क्षीरार्थं हि तपः कृतं तस्मात् क्षीरार्णवो दत्तः तस्मै देवेन शूलिना इति। तान् प्रति वायुदेवकृतम् उत्तरम्। कदाचित् क्षीरमत्यल्पं पीतवान् मातुलाश्रमे ईष्यया मातुलसुतं सन्तृप्तक्षीरमुत्तमं पीत्वा स्थितं यथाकामं दृष्ट्वा वै मातुलात्मजम् इति। पुनरुच्यते तत्रैव उपमन्युर्व्याघ्रपादिः प्रीत्या प्रोवाच मातरम् इति। क्षीरालाभवशेन खिन्नमनसः उपमन्योः प्रवृत्तिमाह। मातर्मातर् महाभागे मम देहि तपस्विनि गव्यं क्षीरमतिस्वादु नाल्पमुष्णं पिबाम्यहम् इति। पुनरुच्यते भगवान् वायुः तच्छ्रुत्वा पुत्रवचनं तन्माता च तपस्विनि व्याघ्रपादस्य महिषी दुःखमापत्तदा च सा उपलाल्यात सुप्रीत्या पुत्रमालिङ्ग्य सादरं दुःखिता विललापाथ स्मृत्वा नैर्धन्यमात्मनः स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः क्षीरम् उपमन्युः स बालकः देहि देहीति तामाह रुदन्भूयो महाद्युतिः। तद्धटं सा परिज्ञाय द्विजपत्नी तपस्विनी शान्तये तद्धटस्याथ शुभोपायमरीरचत् उञ्छवृत्त्यार्जितान् बीजान् स्वयं दृष्ट्वा च सा तदा बीजपिष्टमथालोड्य तोयेन कलभाषिणि एह्येहि मम पुत्रेति समपूर्वं ततस्सुतम् आलिङ्ग्यादाय दुःखार्ता प्रददौ कृत्रिमं पयः पीत्वा च कृत्रिमं क्षीरं मात्रा दत्तं स बालकः नैतत्क्षीरमिति प्राह मातरं चाति विह्वलः दुःखिता सा तदा प्राह सम्प्रेक्ष्याघ्राय मूर्धनि सम्मार्ज्य नेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलायते इति जनन्युवाच त्वं मातुलगृहे स्वल्पं पीत्वा स्वादुपयश्रितं ज्ञात्वा स्वादु त्वया पीतं तज्जातीयमनुस्मरन् दत्तं न पय इत्युक्त्वा रुदन् दुःखीकरोषि मां प्रसादेन विनाशं भोः पयस्तव न विद्यते पादपङ्कजयोस्तस्य साम्बस्य सगणस्य च भक्त्या समर्पितं यत्तत् कारणं सर्वसम्पदाम् अधुना वसुदोऽस्माभिः महादेवो न पूजितः सकामानां यथा कामं यथोक्तफलदायकः धनान्युद्दिश्य नास्माभिः इतः प्रागर्चितः शिवः अतो दरिद्राः सञ्जाताः वयं तस्मान्नतेऽपयः इति अनेन यो भक्तः येन भावेन भगवन्तमाराधयति तथैव स भगवान् अनुगृह्णाति तं भक्तम् इति सूचितम् अथ तद्दौर्भाग्यहेतुभूतदुरितशमनार्थं भक्तवत्सलं भगवन्तमेव उपासितुं तन्माता तं शशंसेत्याह विलम्बं मा कृथास्त्वं हि भजसाम्बं सदाशिवं तस्य देवाधिदेवस्य शिवस्य वरदायिनः साक्षान् नमः शिवायेति मन्त्रोऽयं वाचकस्मृतः प्रबलश्च तथा ह्येषः मन्त्रः मन्त्रान्तरादपि सर्वरक्षाक्षमोऽप्येषः नापरः कश्चिदिष्यते तस्मात् मन्त्रान्तरांस्त्यक्त्वा पञ्चाक्षरपरो भव तस्मिन् जिह्वान्तरगते न किञ्चिदिह दुर्लभम् इति मातुर्गिरमाकर्णयतः उपमन्योः अग्रिमां प्रवृत्तिमाह एवं मात्रा समादिश्य शिवमस्त्वित्युदीर्य च विसृष्टस्तद्वचो मूर्ध्नि कुर्वन्नेव तदा मुनिः तां प्रणम्यैव मुक्त्वा च तपः कर्तुं प्रचक्रमे तमाह च तदा माता शुभं कुर्वन्तु ते सुराः अनुज्ञातस्तया तत्र तपस्तेपे सदुश्चरं हिमवत्पर्वतं प्राप्य वायुभक्षः समाहितः तपसा तस्य विप्रस्य चोपमन्योर्महात्मनः चराचरं च मुनयः प्रदीपितमभूज्जगत् इति एवम् उग्रे तपसि स्थितस्य तस्य उपमन्योः पुरस्तात् भगवान् शिवः प्रादुर्भूय वाञ्छितादप्यधिकं फलं ददौ इत्याह क्षीरार्णवसहस्रं च पीयूषार्णवमेव वा दध्यादेरर्णवांश्चैव घृतोदार्णवमेव च फलार्णवं च बालस्य भक्ष्यभोज्यार्णवं तथा अपूपानां गिरिं चैव दर्शयामास सप्रभुः इति पुनरुच्यते अत्रैव क्षीराब्धिरपि साकारः क्षीरं स्वादुकरे दधत् उपस्थाय ददौ पिण्डीभूतं क्षीरमनश्वरं योगैश्वर्यं सदा तुष्टिं ब्रह्मविद्यामनश्वरां समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसः इति अथ उपमन्युः निश्चञ्चलां शिवभक्तिं प्रार्थयामास भगवन्तम् इत्याह प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमां दिव्यामव्यभिचारिणीं श्रद्धां देहि महादेव त्वत्सम्बन्धिषु मे तदा स्वदास्यं परमं स्नेहं सान्निध्यं चैव सर्वदा एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षगद्गदयागिरा सतुष्टाव महादेवं उपमन्युर्द्विजोत्तमः देवदेव महादेव शरणागतवत्सल प्रसीदकरुणासिन्धो साम्बशङ्कर सर्वदा इति अथ भगवान् एतदप्यनुगृह्य अन्तर्दधे अनेन कथेयं समाप्ता अनेन च भाषणमिदं समापयामि हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
3: ओम नमः शिवाय
4: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org
3: ओम नमः शिवाय

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri ஆத்மானந்த கிரிஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: ஓம் ஓம் ஓம். சர்வஜ்ய ஆதிகுரு பகவான் சங்கராச்சாரிய விரச்சித் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்ர பெற विचार आरंभ हो रहा है। इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी महाराज के परम शिष्य नृसिंह अवतार सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक लिखी है और उस वार्तिक का नाम है मानसोल्लास। तो इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के विचार के प्रसंग में मानस उल्लास पर भी विचार करते जाएंगे। तो मूल श्लोक दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, शायद प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की तरफ से मूल श्लोकों का ये 10 श्लोकों का ये फोटोकॉपी पत्रिका आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। आप इस श्लोकों का अभ्यास करें और जब हम इसके पदों पर विचार करने लगेंगे, पदार्थ पर, तो आप एक एक पद के उच्चारण करें, पढ़ें और उसके अर्थ पर चिंतन करें, तो अवश्य ही मुमुक्षुओं को ये बहुत सहायक होगा। परम पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज का ये प्रिय मंगलाचरण श्लोक है। अपने प्रवचनों के आरंभ में हमेशा इस श्लोक का वो मंगलाचरण के रूप में प्रयोग किया करते थे।
3: विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम् श्री दक्षिणामूर्तये।
2: इदम् नमः, ये मेरा नमस्कार है। किसको? गुरुमूर्तये, जो साक्षात गुरु के रूप में अद्वैत वेदांत के प्रथम आचार्य के रूप में प्रकट हुए, ज्ञानावतार गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति के बारे में हमने कल संकेत किया था। मुमुक्षु, जिज्ञासु, श्रद्धालु सनत कुमारों को शास्त्र विधि से गुरु की आवश्यकता पड़ी। यूं तो उनको किसी ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी चाहे कितने ही बड़ा व्यक्ति हो, वह नियम और विधि का उल्लंघन करता है तो प्रत्यवाय का भागी बनता है। इस अर्थ में कि सनत कुमार यदि गुरु न करते तो उनको पाप लगता, ऐसा नहीं है, सामाजिक दोष लगता है। क्योंकि वह स्वयं स्वरूपतः जन्मतः निवृत्त मार्गी थे, ज्ञानमूर्ति थे। पाप तो उस पर लगता है जिसको कर्म में कर्ता भाव होता है। सनत कुमारों में कर्ता भाव नहीं था, इसलिए उनको इस प्रकार के पाप या प्रत्यवाय की शंका नहीं कर सकते, वो तो मुक्त पुरुष थे। फिर भी सामाजिक एक प्रत्यवाय होता है कि वह कि गुरु परंपरा का उच्छेद करने का प्रत्यवाय उनको लगता, तो उसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए सनत कुमारों ने गुरु की जिज्ञासा की और उनकी जिज्ञासा की परिपूर्ति किया भगवान शिव ने। ज्ञानावतार करुणामूर्ति भगवान शिव स्वयं ही बाल रूप में युवा रूप में बटवृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख होकर बैठे और उन पर उनकी श्रद्धा हुई। देखो, महापुरुषों को वो काम करनी चाहिए जिससे जिज्ञासु और मुमुक्षुओं की श्रद्धा बनी रहे। श्रद्धालुओं की श्रद्धा का उपेक्षा गुरुओं को नहीं करनी चाहिए। उनकी श्रद्धा जिस रूप में, जिस भावना से उनकी श्रद्धा है, उसी रूप में उनके श्रद्धा को आदर करना चाहिए। पूज्य महाराज जी ने एक जगह लिखा है, अखंडानंद जी महाराज जी ने प्रवचन में कहा, दृष्टांत के रूप में दिया। कहते हैं एक बहुत सिद्ध महात्मा थे, बड़े ज्ञानी महात्मा थे और उनके दो चार शिष्य भी थे, और कहीं चातुर्मास करने के लिए किसी शहर में पहुंच गए। श्रद्धालु भक्तों ने आग्रह किया कि महाराज आप यहीं रहें और चातुर्मास में हमें कुछ वेदांत ज्ञान गुण की बात सुनाएं। कहते महात्मा, ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा है, हमको कहीं न कहीं बैठना है चातुर्मास में, तुम कहते हो तो यहीं बैठ जाते हैं। तो बैठ गए। एक बार किसी भक्त ने भोजन के लिए बुलाया, वो भी वहां का नामी भक्त था उस शहर का। महाराज, हमारी इच्छा है, हमारी श्रद्धा है, हमारी इच्छा है कि आप हमारे घर में भोजन के लिए पधारें। महात्मा ने कहा कि ठीक है, हमको भोजन तो करनी ही है, चाहे प्रेमपुरी की करें चाहे आपके घर की करें, भोजन तो करनी ही है, लेकिन हमारे साथ दो चार और शिष्य भी हैं। बोले, कोई बात नहीं, आप मंडली की सहित आए, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ईश्वर की कृपा से सब कुछ व्यवस्था है। महात्मा पहुंचे, शिष्य सहित भोजन किया, भोजन बहुत बढ़िया था। भोजन के पश्चात उस भक्त ने महात्माओं को और उन महाराज को, सभी को अपनी क्षमता अनुसार खूब दक्षिणा, खूब सामग्री, संतों को क्या चाहिए, दंड कमंडलू, कौपीन, कंथा, यही तो है संतों की संपत्ति। तो उसने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी दी महात्माओं को खूब, क्योंकि समर्थ था, वैभव से संपन्न था, कपड़े लत्ते दंड कमंडलू बहुत कुछ दिया एक एक महात्माओं को। महात्मा आपस में विचार करने लगे, महात्मा की तरफ, गुरु की तरफ देखने लगे। महात्मा ने कहा, बेटा क्या देखते हो, उठाओ ले चलो। तो सब कुछ उठा के लेके आए, तो महात्मा गुरुजी तो खाना खा के आए थे, वो आराम करने के लिए चले गए, और वो जो शिष्य लोग थे आपस में बैठकर वार्ता करने लगे, विचार करने लगे। देखो ये कैसा धन का अभिमानी है, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकले हैं, त्यागी हैं, और ऐसे विरक्त त्यागी को ये ऐसा समझता है कि ये परम विलासी हैं, भोगी हैं, इनको सब कुछ चाहिए, और इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि इन सबको तो हम छोड़ के निकले हैं और ये दे रहा है। हमारे त्याग पर इसको विश्वास नहीं है। और हमारे गुरुजी भी फिर कैसे है, देखो लेके चलो कहते हैं, ये सब छोड़ दो, यहीं कह देना चाहिए था, हम लेके आ गए। अब इसका क्या करेंगे, पहले से एक डंडा है, दूसरा डंडा क्या करेंगे, पहले से ही एक कमंडलो है, दूसरा कमंडलो आ गया, उसका क्या करेंगे, पहले से ही एक जोड़ी वस्त्र है तो ये दूसरे जोड़ी वस्त्र आ गए, इसका क्या करेंगे। आपस में वह वार्ता करने लग गए तो महात्मा सुन रहे थे। महात्मा ने कहा क्या बात है महात्माओं, तुम लोग सो नहीं रहे हो, क्या चर्चा कर रहे हो। तो कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। महात्मा ने कहा कुछ तो कर रहे हो, बोलो क्या कर रहे हो। महाराज ये चीज है, हम इस तरह सब कुछ त्याग करके छोड़ छाड़ कर निकले हैं, और इस हमारी त्याग का यह कुछ महत्व नहीं समझ रहा है, और ये सारा संपत्ति दे रहा है, अब यह क्या करें बोलिए। और आपने कहा कि ले चलो, अब इसका क्या करेंगे, एक कमंडलो की जगह दो कमंडलो, एक डंडे की जगह दो डंडे, एक जोड़ी वस्त्र की जगह दो जोड़ी वस्त्र, एक छाता की जगह दूसरा छाता, एक खड़ाऊं की जगह दूसरे खड़ाऊं। महात्मा ने कहा कि अरे क्यों परेशान होते हो, रखे रहो पड़े रहो, कोई और दूसरा महात्मा है जिसके पास कमंडलो नहीं है उनको दे देना, कोई दूसरा महात्मा आएगा जिसके पास एक जोड़ी वस्त्र नहीं है उनको दे देना, कोई महात्मा आएगा जिसके पास दंड नहीं है उनको दंड दे देना, वो कोई महात्मा आएगा जिनके पास छत्री नहीं है छत्री दे देना। क्यों परेशान होते हो, सामान पड़ा रहने दो, जो आएगा जिसके काम में आएगा दे देना। बोले महाराज जब देना ही था तो पहले क्यों लिया, लेना ही नहीं चाहिए था, आपने कहा ले चलो। तो महाराज जी ने दृष्टांत दिया है, कहते देखो वो पैसे वाला व्यक्ति है, वो तुम्हारी त्याग तपस्या संत साधु के प्रति परम श्रद्धा रखता है, और तुम्हारी त्याग पर श्रद्धा रख के ही वो ये सब कर रहा है, क्योंकि वह वैभव में संपत्ति में खेलता है, इसलिए उसके अलावा श्रद्धा व्यक्त करने को दूसरे विकल्प सोचता ही नहीं है। वो पैसों में खेलता है, इसलिए पैसा देने से महात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, हमको कृपा मिल जाएगा, क्यों उसको तो वही है। तो इसीलिए उसकी श्रद्धा जो तुम्हारी प्रति थी, उस श्रद्धा को सामग्री के माध्यम से उसने व्यक्त की है। यदि तुम लोग उसको वहीं छोड़कर आ जाते तो उसके श्रद्धा में आघात पहुंचती, मैंने दिया और महात्माओं ने लिया नहीं, तिरस्कार कर दिया, तो उसके श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, नहीं तो फिर कल किसी आवश्यक महात्माओं को कोई सामान की आवश्यकता पड़ी वो देगा नहीं फिर, क्योंकि महात्मा को क्या जरूरत है कहेगा वो। तो इसलिए उसकी श्रद्धा की रक्षा करना बहुत जरूरी था, इसलिए तुम लोग को हमने कहा उठा के ले आओ, अब तुम्हें आवश्यकता है रखो, नहीं है तो बांट दो, दूसरे साधु को दे दो, खत्म हो गई बात। उसकी श्रद्धा तो बची रही, सुरक्षित रही। महात्माओं ने कहा कि बहुत अच्छी दृष्टि है, हमारी दृष्टि गई नहीं वहां पर। तो कुछ दिन के बाद फिर दूसरा संत ने भोजन के लिए बुला लिया, माने भक्त ने, तो गए महात्मा मंडली सहित, भोजन किया, बड़ा प्रेम से भोजन किया। जब चलने लगे तो उसने एक पैसा भी दक्षिणा नहीं दी, उसने उस भक्त ने दक्षिणा के एक पैसा भी नहीं दिया, सामान की तो बात ही छोड़ दो, दंड कमंडलो कौपीन खड़ाऊं छाता छत्री कुछ नहीं, दक्षिणा भी नहीं दी। वापस आ गए कुटिया में, महात्मा तो गुरुजी थे वो तो सो गए, और शिष्य इधर फिर चर्चा करने लग गए, क्या बात है भाई, देखने में तो लगता है घर इतना बड़ा है, वैभव क्या है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने नौकर हैं, इतने चाकर हैं, सब कुछ है, और भोजन करने के लिए बुलाया, खाली भोजन करा दिया, एक पैसा भी नहीं दिया, कैसा आदमी है, कंजूस महाकंजूस। तो बात करने लगे तो महात्मा को फिर पता चला कि अरे भाई क्या बात है, तुम लोग सोए नहीं हो। तो बोले महाराज देखिए ऐसा है, ठीक तो कर रहा है वो तुम्हारी त्याग तपस्या अपरिग्रह का आदर करता है, वो ये डर रहा है कि इतने बड़े त्यागी इतने अपरिग्रही, यदि मैं इनको 100 रुपया दे दूं तो उस साधु को रात भर निद्रा नहीं आए कि 100 रुपया मैं क्या करूं, तो तुम्हारी त्याग का ही वो सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है। देखो तो हम तो वही हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, अखंडानंद जी महाराज दृष्टांत देते हैं, साधु को इसी तरह रहना चाहिए है? वो जो कर रहा है वो श्रद्धा, उसकी श्रद्धा की रक्षा। तुम यदि पैसा मांगने लग जाते, अरे चलते समय में भोजन कराया और दक्षिणा नहीं दिया कहते, तो फिर वो तुम्हारी श्रद्धा पर आघात होता है, ये कैसे लोभी साधु हैं, इनको पैसे की क्या आवश्यकता, खाना था भोजन कर लिया हो गया, पैसे की क्या आवश्यकता, साधु होकर दक्षिणा पैसा मांगते हैं, कैसे लोभी है? उसकी श्रद्धा खंडित हो जाती और तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो देकर भी वो श्रद्धा ही कर रहा है, न देकर भी तुम्हारी त्याग का आदर और श्रद्धा ही कर रहा है। यदि ये न होती तो भोजन के लिए न बोलाता, बड़े प्रेम से भोजन कराया। तो ये दृष्टांत से यही समझना चाहिए कि महापुरुषों को किसी की भी श्रद्धा, जिस रूप में वो श्रद्धा कर रहा है, उसकी श्रद्धा का हर हालत में रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी श्रद्धा को तोड़ दो, मैं विरक्त हूं, मैं त्यागी हूं, मुझे पैसा देकर मेरे विरक्ति मेरी त्यागपना का खंडन कर रहा है, मुझे लोभी और भोगी समझता है, ये भी उसकी श्रद्धा का हनन होगा। तो भगवान शिव, दक्षिणामूर्ति शिव, ये वह गुरु हैं जो जिस रूप में श्रद्धा करना चाहता है वह उसी रूप में उसकी श्रद्धा की रक्षा करते हैं। वे गुरु चाहते हैं, लेकिन गुरु कैसा चाहते हैं कि देखने में वह त्यागी हो, विरक्त हो, असंग हो, अपरिग्रही हो, अनासक्त हो, निष्प्रपंची हो। तो भगवान शिव को वैसा ही बनकर सनत कुमारों के सामने आना पड़ा और आए और उनकी श्रद्धा का सम्मान हुआ, रक्षा हुई और बैठ गए वहीं। गुरु बोल नहीं रहे हैं, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, और उन्होंने खाली संकेत करके चिन मुद्रा भद्रा मुद्रा दक्षिणामूर्ति में यो भद्रया मुद्रया करके उसका संकेत किया है। उतनी से उनको ज्ञान हुआ, बोध हो गया, गुरु मान लिए। अब देखो उपनिषद का प्रसंग है, वही नारद जी जिन्होंने पहले सनत कुमारों को गुरु करने के लिए प्रेरित किया और नारद जी की प्रेरणा से सनत कुमारों ने गुरु का अनुसंधान किया और दक्षिणामूर्ति भगवान शिव गुरु के रूप में उनको प्राप्त हुई। कालांतर में वही नारद जी फिर उन्हीं सनत कुमारों के पास जाते हैं और कहते हैं अधि ही भगवन, हे भगवन मुझे कुछ उपदेश कर लीजिए, मैं सारे वेद वेदांग आदियों को जानता हूं, शिक्षा निरुक्त आदि सब कुछ जानता हूं, पद और पदार्थ सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैंने सुना है उपनिषदों में तरति शोकम आत्मवित, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति समस्त शोक मोह से वह तर जाता है, मैं सारे उपनिषद वेद वेदांग आदियों को सबको अच्छी तरह जानता हूं, अपद पदार्थों को जानता हूं, फिर भी मेरा शोक मोह निवृत्त नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मैं शास्त्र को परोक्ष माने आत्मा को ब्रह्म को परोक्ष रूप में तो जानता हूं, अपरोक्ष रूप में नहीं जान रहा हूं। तो वो आत्मा अपरोक्ष रूप में ज्ञात हो और शोक मोह से निवृत्ति हो तो मुझे उसका कोई उपदेश करिए। तब वही सनत कुमारों ने नारद जी को फिर सद्विद्या का उपदेश किया। छांदोग्य उपनिषद में नारद सनत कुमार का संवाद है। तो क्योंकि नारद जी को मालूम है कि यही मेरे शोक मोह को निवृत्त कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जब गुरु नहीं किया है तो फिर मैं ऐसे को गुरु में कैसे बनाऊं, तो परंपरा होनी चाहिए। तब उनको पता चला कि दक्षिणामूर्ति को इन्होंने गुरु बना लिया है, तो अब मुझे इनको गुरु बनाना कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शास्त्र मर्यादा है, गुरु परंपरा है। संततमातनोस्मि अस्मद् गुरुम संततमानतोस्मि। तो ये प्रसंग है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का। और सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक है, मानसोल्लास वार्तिक। सुरेश्वराचार्य जी ने अपने वार्तिक लिखने के क्रम में मंगलाचरण के रूप में पहला श्लोक लिखा है, बड़ा सुंदर है ये। मंगलम दिशतु मे विनायको

0: विनायक, नायक और विनायक। हम लोग सब क्या हैं? नायक हैं। या तो हम किसी और के ऊपर शासन करते हैं या हमारे ऊपर कोई और शासन करता है, इसलिए हम नायक हैं, हम लोग विनायक नहीं हैं। हम नौकर के ऊपर शासन करते हैं, बच्चों के ऊपर शासन करते हैं, और या फिर मां बाप के द्वारा शासित हैं, पति पत्नियों के द्वारा शासित हैं, और कुछ नहीं, अपने से ज्यादा जो बॉस है उसके द्वारा तो शासित है ही है। तो हम लोग सब नायक हैं, भगवान गणेश विनायक हैं। उनके ऊपर, भगवान गणेश के ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह शासन करने वाला कोई नहीं है तो अनुशासित हीन है, ऐसा नहीं है। यही तो उनकी विनायकता है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया, उसके ऊपर और कोई नहीं है, इसका मतलब वह स्वच्छंद हो जावे, ये तो मानवीय गुण है, दानवीय गुण है। तो गुण क्या कहें? दानवीय गुण को तो हम लोग की दृष्टि से दुर्गुण ही कहा जाए। जो जितना बड़ा है वह उतने ही मर्यादा और अनुशासन में रहना चाहिए। विनायक, विघ्न विनाशक होने के कारण वो विनायक है। विघ्नों का नायक है और खुद विनायक है। तो ऐसे जो विनायक हैं, विघ्न ध्वंस, विघ्ननाशक, विघ्न ध्वंसक, मंगलम दिशतु मैं, मेरे लिए वो मंगलकारक हो, मंगल का उपदेशक बने, संवाहक बने। तो पहला तो गणेश जी के बारे में उन्होंने मंगलाचरण में गणेश जी का स्मरण किया, क्योंकि मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक, ये तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि में इसका संकेत किया है, अध्यास भाष्य में। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां कोई नमस्कारात्मक नहीं है, लेकिन ब्रह्मसूत्र बादरायण जी ने सीधे ही, कोई भूमिका नहीं, कोई मंगलाचरण नहीं, किसी परमात्मा को नमस्कार आदि नहीं किया, और सीधे ही सूत्र की रचना कर दी कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। बोले तुमने देखा नहीं, अथ ये शब्द का जो प्रयोग किया यही तो मंगलाचरण है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावे तो ब्रह्मण पुरा कंठम वित्त विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका भुवौ। सृष्टि के आरंभ में दो शब्द क्रमशः प्रकट हुए परमात्मा के श्वासोच्छ्वास से। सबसे पहला शब्द प्रयोग हुआ, अक्षर प्रयोग हुआ, ओम प्रणव। उसके तुरंत बाद अथ ये शब्द प्रयोग हुआ। तो अतः ओम और अथ ये सृष्टि के आदि के परमात्मा के ध्वनि हैं, अतः दोनों ही मंगलवाची हैं, मंगलकारक है।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट आर रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाई डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Ilayankudi Maranayanar Puranam, presented by Sri Singapur Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar Ilayankudi Marar ki kahani. Yeh Tamil Nadu में रामनाथपुरम जिले के क्षेत्र इलयानकुड़ी के निवासी इलयानकुड़ी मारर एक समृद्ध कृषक थे। माटी में हल चलाकर वे अमृतमय अन्न पैदा करते थे। उनके परिश्रम से खेती सोना उगलती थी। इलयानकुड़ी मारर शिव भक्तों के दास थे। प्रत्येक पथिक में उन्हें शिव ही दिखाई देते थे। पथिक को आदर समेत आमंत्रित करते थे और उनका सम्मान पूर्वक आसन प्रदान कर विविध व्यंजनों से युक्त भोजन करवाना ही उनकी साधना थी। इस भांति इलयानकुड़ी मारर के यहाँ सदाव्रत खुला रहता था। इलयानकुड़ी मारर के महत्व को उजागर करने के लिए तिल्ले के स्वामी शिव ने शनै शनै यानी कि धीरे धीरे से उनकी धन संपदा स्थिति को निर्धनता में बदल दिया। यह शिव की ही परीक्षा थी। कालांतर में उनकी समस्त संपत्ति समाप्त हो गई, पर उनकी अतिथि सेवा की भावना अभी भी दृढ़ ही थी। यहाँ तक कि वो नितांत कंगाल हो गए। वर्षा ऋतु ऐसा समय भी आया कि एक दिन वर्षा ऋतु थी, घर में अन्न का दाना भी नहीं था। पति पत्नी दोनों निराहार ही सो गए थे। उस समय शिव एक तपस्वी का रूप धारण कर इलयानकुड़ी मारर के घर पहुंचे। भक्त ने इलयानकुड़ी मारर ने उनका स्वागत किया, उन्हें आदरपूर्वक अपने घर में बिठाया और उनके शरीर को स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर विश्राम करने को कहा। अतिथि को भोजन देने के लिए घर में एक दाना भी नहीं था। घर में कुछ भी भोज्य पदार्थ नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से परामर्श किया और रात्रि के अंधकार में भी सुप्रयास कुछ दिन पूर्व बोए बीजों को बटोर कर लाए, छप्पर की लकड़ी काट कर ईंधन जुटाया। वर्षा में भीगते हुए ही घर के पिछवाड़े में उग रहे आधे उगे साग को अंधेरे में टटोल टटोल कर उखाड़ कर ले आए। साग को उखाड़ना मानो पुनर्जन्म रूपी पौध की समूल उखाड़ना था। पत्नी ने अन्न और साग का स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया। अतिथि को भोजन खिलाने के लिए बरामदे में आने पर इलयानकुड़ी मारर ने देखा कि एक अद्भुत ज्योति थी। ज्योतिपुंज से एक स्वर उठा, वत्स, मैं प्रसन्न हूं। जीव मात्र की भूख शांत करने में तुम सदैव तत्पर हो। अब चलो मेरे संग। और प्रभु ने सपत्नी अपने दिव्य लोक में ले गए। चकिलर ने इस कथा की महत्व को अद्भुत ढंग से अभिव्यक्त किया है। यदि मारर ने केवल भस्मधारी शिव भक्तों को ही अन्न खिलाया होता तो वह धार्मिक निष्ठा का परिचय होता। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का परिचय उनके धार्मिक भेदभाव को त्याग कर मानव मात्र की भूख मिटाने के नियम से चलता है, चिक्किलर का कथन है। चिक्किलर जो कि तमिलनाडु के बहुत बड़े कवि थे, उनका कथन है। राह चलते हर पथिक को शिव का भक्त मानकर मारर अपने घर ले जाते थे और बड़े प्रेम से भोजन कराते थे। तमिलनाडु में प्राचीन काल से ही अन्नदान को महादान माना जाता है। संगम साहित्य की पंक्ति बभुक्षार रोग का समर्थक चिकित्सक और पंच महाकाव्यों में प्रसिद्ध पंक्ति अन्नदाता जीवनदाता है इसी भाव को दर्शाती है। कालांतर में धर्म और संप्रदायों की विभिन्नता होते हुए भी लोग कम से कम अपने धर्म या संप्रदाय के मानने वालों को अन्नदान करना अपना कर्तव्य मानते थे। लेकिन इलयानकुड़ी मारर ने बिना अपने धर्म या परम या पराय धर्म न जानते हुए भी हर व्यक्ति की भूख को मिटाने का प्रयास किया। इसीलिए वह कहते हैं प्रभु के समस्त भक्त आएं और अन्न ग्रहण करें। इससे यही शिक्षा मिलती है कि धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को भूलकर मानवता को अन्न या भोजन खिलाना ही उत्तम संस्कार है। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org. The next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
6: Tahi vidhi rakhiye, tahi vidhi rahiye. चाहे झोपड़ी में बास हो हैं? क्या है वो, चाहे महलों में बास हो चाहे झोपड़ी में बास हो, लेकिन जब परमात्मा झोपड़ी में तुमको भेजता है तब परमात्मा से तुम नाराज हो जाते हो। भजन तो गा देते हो भजन तो गा देते हो भगवान के सामने, हे भगवान चाहे तुम महल में रख चाहे झोपड़ी में रख, तुम्हें जहां इच्छा हो वहां रखो। मुझे झोपड़ी में रखकर तुमको आनंद आ रहा हो, मैं झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं, समझे कि नहीं। मुझे महल में रखकर तुम्हें आनंद आ रहा हो, मैं महल में रहने को तैयार हूं। लेकिन हम अपने आप को भगवान से भी बड़े मान लेते हैं ना। भगवान से बड़े किस लिए मानते हैं? हमको महल में रहने पर ही आनंद आएगा, इसलिए हम महल में ही रहेंगे, झोपड़े में तो किसी हालत में नहीं जाएंगे महाराज। हमको महल ही चाहिए झोपड़ी नहीं। परमात्मा कहते हैं तुम्हें झोपड़ी में रखकर हमको आनंद आता है, तो उस समय क्या कहोगे बोलो हैं? उस समय क्या कहोगे? हमको तो रस और पूरी खाने से ही आनंद आता है महाराज, हमको तो रस पूरी ही चाहिए। अब परमात्मा कहता है महाराज रस पूरी नहीं, कभी कभी बाजरे की बासी रोटी भी नमक और मिर्ची के साथ खाओ बेटा, हमको आनंद आएगा। तुम खाने को राजी हो कि नहीं बोलो? वहां नहीं होते हो तब समस्या आई। वहां तुम क्या कहते हो? नहीं महाराज, मेरे द्वारा बाजरे की बासी रोटी और नमक मिर्ची से बासी रोटी खाने पर तुमको आनंद आता है, भले आवे, हम नहीं खा सकते। तुम्हारा यही कहना है कि नहीं बोलो हैं? मानो कि उस भोजन से आनंद, तुम अपने को आनंदित होना चाहते हो, इसीलिए भक्ति अधूरी हो जाती है। इसलिए भक्ति अधूरी हो जाती है। उस क्रिया से तुम आनंदित होना चाहते हो खुद, जबकि वह क्रिया परमात्मा खुद आनंदित होने के लिए तुमसे करा रहा है, तो ये गलती हम करते हैं। तो परमात्मा के संकल्प में और हमारे संकल्पों में संघर्ष चल पड़ता है। परमात्मा के संकल्प में और हमारी दिनचर्या दैनदिनी में संघर्ष चल पड़ता है, तब जीवन विषाद हो जाता है। विषाद आनंद नहीं होता है। आगे का श्लोक, बहुविध परितोष बाष्प पूर स्फुट पुलकांचित चारु भोग भूमि चिरपद कांक्षि सद्यमानं परम सदा शिव भावनां प्रपद्ये। बहुविध परितोष, देखो योग में योग करने वाले योगियों को योग सिद्धि से पहले योग की सिद्धि के कुछ लक्षण दिखता है। ये लक्षण उस योगी साधक के जीवन में आवे तो मानो कि योग ठीक रास्ते पर चल रहा है। पूर्व भूमिका है, वो लक्षण से अनुमान करते हैं। और योग की जो भूमिका है वही भक्ति की भूमिका है। भक्ति शास्त्र में भी वही भूमिका है। तो आपकी भगवान के प्रति जो होने वाली भक्ति है, भक्ति भाव, वो भक्ति भाव कितनी पराकाष्ठा में है उसकी पूर्व भूमिका लक्षण दिखता है भक्तों में। ये स्वाभाविक भक्तों के स्वाभाविक लक्षण हो जाते हैं। इसको फिर नाटक के रूप में आप प्रस्तुत नहीं करना। ये लक्षण भक्तों के जीवन में स्वाभाविक अभिव्यक्त होते हैं। क्या है? तो बहुविध परितोष। भगवान की भक्ति अनेक प्रकार के संतुष्टि का कारण है। भक्त कभी भी असंतुष्ट होता ही नहीं। असंतुष्टि भक्त का लक्षण नहीं है। मैंने पहले एक भजन की पंक्ति गाई है, जाई विधि राखी है ताई विधि रही है। वहां असंतोष का कहां है, असंतुष्टि कहां है? वहां पर जाही विधि राखी है ताई विधि रही है, तो असंतोष कहां है वहां पर? हा? बात मारे भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं, भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं बाप मारने पर? मां मरने पर भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं? भक्त तो नहीं होगा। जाही विधि राखी है ताही विधि रही है। पति मरने पर भगवान का भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं, बोलो? होगा है? अन्यथा नहीं लेना हो। भक्त तो ये कह सके, महाराज पति न मरा है, तुम तो नहीं मरे हो, ये कहने का हिम्मत होना चाहिए कि नहीं भक्तों में, बोलो है? ये होनी चाहिए कि नहीं? पति मरा और रो नहीं रहा है, कोई पूछे पति मर गया क्यों नहीं रो रही हो, और खुद भगवान पूछे तुमसे तुम्हारा पति मर गया तो तुम क्यों नहीं रो रही हो, तो तुम क्या जवाब देना है तुम्हें? पति मर गया, तुम तो नहीं मर रहे हो, बोलो। जाही विधि राखे राम है, इतना साहस होनी चाहिए कि नहीं, बोलो ना भक्तों में। जाही विधि राखे राम, बहुविध परितोष। ये अन्यथा संसार में को लोक माराध ये तुम समर्थ। कालिदास जी ने एक वाक्य लिख दिया है, ये संसार में किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता कोई भी। कोई भी किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता है। एक को खुश करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा खुश तीसरा नाराज। एक वस्तु से वो प्रसन्न है दूसरे वस्तु से नाराज। को लोक माराध ही तुम समर्थ। तो एक ही चीज है संसार में, बहुविध परितोष। हर प्रकार से संतुष्ट होना भक्त का लक्षण है। हंसे तो ठीक, रोए तो ठीक, चले तो ठीक, बैठे तो ठीक, बहुविध परितोष बाष्प पूरा,
0: दूसरा लक्षण
6: बाष्प पूरा, भक्तों के भक्ति साधना के काल में, योगियों के योग साधना काल में और भक्तों के भक्ति साधना काल में बाष्प पूरा, उसके शरीर से पसीना निकलेंगे। हाँ, ये भक्तों का लक्षण है। और हम तो पसीना आने लग जाए तो घबरा जाएंगे, ऐसे कहां गया। स्फुट पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने का, पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने लगेगा। चारु भोग भूमि आनंद की भूमिका है वो। चिरपद कांक्षी सेव्य माना, चिरपद कांक्षी सेव्य माना, जो नित्य आनंद के अनुभव करना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा सेव्य, उन्हीं को ही चिरपद प्राप्त होगा उनके द्वारा। परम सदा शिव भावनाम प्रबंधे, परम सदा शिव के भावना भक्ति के शरण में प्रपद्य में जाता हूं। तो परम शिव के जो भक्ति चरण में जिसकी अनन्य भक्ति है, वो भक्ति का प्रभाव यह है कि बहुविध परितोष, हर प्रकार की संतुष्टि प्राप्ति होगी, बाष्प पूरा। इसको अन्यत्र योग भूमि में इस तरह भी लिखा है, स्तंभ स्वेदो अथ रोमांच स्वर भंगो अथ बेपथु हो, भक्त स्तंभ हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, स्तंभ जड़ की तरह। भागवत आदि लक्षणों में तुम पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई सब स्तंभ हुए, स्तंभ हुए। भागवत में लिखा है जंगल के जो मृग सावक हैं, मृग हैं, घास खा रहे थे और मुख में जो घास लिया तो मुख ही में है। बच्चे मां के दूध पी रहे थे, चूसना बंद कर दिया, स्तंभ। जो जहां है वहीं स्तंभित हो गया। भगवान की बांसुरी का ध्वनि ऐसा मधुर था, इतना सम्मोहक था, पशु जंगल में घास चरते चरते जहां पहुंच गए थे वहीं खड़े हो गए। मुख में घास है, न वो परित्याग कर रहे हैं, न नीचे या उतार रहे हैं, स्तंभ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। स्वेदः शरीर में भाव उद्रेक होने पर पसीना निकलने लगता है। अतः रोमांच लक्षण है, ये भक्ति पराकाष्ठा के लक्षण है। शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, रोमांच। स्वर भंगो, कुछ बोलना चाहें बोली नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं निकलती, बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते, स्वर भंग। बेपतुहु शरीर कांपता है। वैवरणम उसका जो स्वरूप है उसमें बदलाव आ जाता है। अश्रु प्रलय जोर जोर से आंख से आंसू निकलने लगते हैं। यही भक्ति के सात्विक भाव है। ये सात्विक भाव है लेकिन आजकल देखते हैं कोई कोई ये लक्षण पढ़ लेते हैं और समाज में बड़े नामी भक्त होने के लिए ऐसे ही रोने लग जाते हैं, नाटक की तरह रोने लग जाते हैं। कोई कहे अरे ये तो बड़ा भगवान का भक्त है, ये सिद्ध करने के लिए कहां अपने लगते हैं। बहुत देखते हो कहीं भगवान का भजन हो रहा हो, नाम जप हो रहा हो, किसंकी

భవద్ విమల భవత్ పద గోష్టం. ఆపే జో చరణ హై వహీ ఉస్ గాయ కే లియే ఉత్తమ గోష్ట హై. గుడ్, వహాన్ యది ఆపనే ఆశ్రయ దియా తో వో గాయ బడీ ఖుష్ హోగీ ఔర్ ముఝే నిత్య నిరంతర అమితం ఉద అమృతం మోర్ దుహంతి. జబ్ చావో తబ్ మే ఉస్సే అమృత దూ సక్తా హూ. హర్ వస్తు కే లియే ఆనంద కా అమృత దూధ్ కే రూప్ మే దే సక్తి హై. సదయా మహారాజ్ కృపా కరో. हमारे एक भक्त है, एक बार हमारे पास आकर उन्होंने कहा, ये सच घटना हो, और संयोग से उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था. घर में एक कुत्ता पाल रखा था. औसतन कुत्ते की आयु 14-15 वर्ष, 12-14 वर्ष, ज्यादा ज्यादा 15-16 वर्ष की आयु है. उसे ज्यादा कुत्ते नहीं बांसते हैं, औसतन आयु वही है. उनके बहू बेटे दोनों बाहर चले गए, विदेश चले गए, अमेरिका चले गए. तो एक बाई रखा था उन्होंने घर में काम करने के लिए, बहुत पुरानी बाई. अक्सर उस कुत्ते की देखभाल वही भाई करती थी. समय में खाना देना, उसको बाहर ले जाना, घुमाना, है ना, भाई करती थी. भाई वृद्ध हो गई तो मर गई भाई, दूसरी भाई मिली नहीं. घर में कुत्ता है, 16 साल का हो गया, हो बहुत बूढ़ा है कुत्ता. अब अपने आप मर नहीं रहा है, घर में पाला हुआ है. अब उसको मारने का तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, पाला हुआ कुत्ता कैसे मारेगा. अब उस बूढ़े कुत्ते को कोई दूसरा पालेगा भी नहीं. उसके लिए ऐसा बंधन हो गया है कि उस कुत्ते को छोड़कर एक दिन भी कहीं बाहर जा नहीं पाती है. उसी कुत्ते के लिए समय में खाना देने के लिए घर में रहना पड़ेगा. आकर मुझे सुनाती है, महाराज और कोई बंधन नहीं है घर में, कुत्ते का बंधन है. अब क्या कहूं भाई, कहां रखें उसको, और लेके जाए तो कहां लेके जाए, छोड़ के जाए तो किसके यहां छोड़ के जाए. वो जब तक नहीं मरेगा तब तक मुझे उसके अधीन में होकर घर छोड़ ही नहीं पाती हूं. तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मेरी जो गाय है ऐसे विलक्षण है वो है. अब इस गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद नहीं करती है, करेगी? आजकल की बहू पसंद करेगी? सास ने ये गाय पाल रखी है, मान लो भगवान शिव की भक्ति रूपी कामधेनु सास ने पाल रखी है. अब भक्ति रूपी गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद करेगी है? बेटे के यहां जाओ तो बेटा पसंद करेगा? तो तुम्हारे लिए ये मुसीबत हो गई कि नहीं बोलो है? तुम छोड़ भी नहीं सकते हो. अमितम उदम अमृतम मुहूर्त दुहंतिम, बार बार तुमको अमृत की प्राप्ति हो रही है, छोड़ भी नहीं सकते. और संसार में कोई भी तुम्हारे द्वारा धारण की हुई भक्ति को किसी को देने जाओ, कोई लेने को तैयार होता नहीं. आज के जमाने में कोई भक्ति लेने को तैयार है? बोलो.
कभी कभी तो ये बिना मतलब का भक्ति हमने शुरू कर लिया, मुसीबत हो गया। कई बार शालिग्राम लाते हैं घर में वो शालिग्राम मुसीबत हो जाता है, मुसीबत हो जाता है। लेके जाएं तो अमेरिका कहां लेके जाएंगे, तुलसी का पत्ता मिलता नहीं। महात्मा ने शालिग्राम दिया था रोज तुलसी का पत्ता चढ़ाना, यहां थे तो चढ़ाते रहे, अब अमेरिका जाना है तो लेके जाएं तो वहां तुलसी का पत्ता मिलेगा नहीं, यहां छोड़ के जाएं तो बहुत चढ़ाएगी नहीं तुलसी का पत्ता, मुसीबत हो गई कि नहीं, बोलो क्या करें। भक्ति भी कभी कभी मुसीबत होती है, शंकराचार्य जी को हो गई, तुम्हें नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये भक्ति काम देनु, भक्ति देनु काम में काम, एक ही गाय है वह आपके विमल भवत पद गोष्ठम आवसंतिम, वहीं बैठना राजी है, इसलिए हम आपके चरण रूपी गोठ में उस भक्ति को बांध देना चाहते हैं। सदय पशुपते सुपुण्य पाताम, मेरे अनेक जन्मों के सत्फल सत्कर्मों का फल परिपक्व हुआ तब जाकर आज मुझे बढ़िया गोठ प्राप्त हुआ, गोठ प्राप्त हुआ। कौन सा गोठ? भगवान के चरण रूपी गोठ की प्राप्ति हुई है बात। अब ये भगवत भक्ति रूपी गाय इसी गोठ में मैं बांधता हूं। मम परिपालयः, महाराज इस गाय को पालने का काम आपका है, आपके प्रति मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसकी रक्षा करने का काम आपके है, आपके चरण में मैं अर्पण कर रहा हूं। हाँ? मम परिपालयः, भक्ति देनु में ये काम, मैं और किसी को पत्नी को पालो मैं नहीं कहूंगा, बेटे को पालो ये नहीं कहूंगा, मां को पाल लो, बाप को पाल लो, मुझे पाल लो ये नहीं कहूंगा। एक भक्ति जो मेरे पास है उसको आप पालन करो, अपने गोठ में पालन करो, और ताकि अमृत दूध मैं पी सकूं। बोलो, भगवान को तो गोठ के गोठाला बनाने चाहते हैं शंकराचार्य जी, ग्वाला बना दिए भगवान के। बोले गाय भी तुम्हारी है, गोठ भी तुम्हारा, पालन पोषण तुम ही करो, हमको तो अमृत पान करना है बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय।

0: நமசிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நமசிவாய.
1: ஓம் நமசிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் .org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, பிரசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: 10 ghanta குச் சோச்சனை கலியே கஹே கிளிஷ்ட பாத்தே சூக்ம பாத்தே தோ மே சோச் சக்தா ஹூ, மே திமாக சே சல் சக்தா ஹூ, பர் ஷாரீரிக் மே அஸ்வஸ்த ஹூ, தோ கோய் பாத் நஹி, அப் ஹட்யோக் கர்கே யோக் கர்கே ज्यादा तकलीफ देके आपके शरीर को कष्ट मत दीजिए. बुद्धि दी है भगवान ने, तो बुद्धि से ज्ञान से वो परमात्मा को प्राप्त करके आप छूट जाइए. तो कोई कहेगा कि भाई मेरी बुद्धि है इतनी सूक्ष्म चल नहीं सकती है. आप कहे तो मैं योग कर सकता हूँ, मैं आसन कर सकता हूँ और मेरी मन की चंचलता को दूर कर सकता हूँ, तो उसके लिए योग पर्याप्त है. कोई कहेगा कि मैं योग थोड़ा कम कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि जो है मैं ज्यादा क्लिष्ट और सूक्ष्म बातें सोचना नहीं चाहता. मैं आप कहेंगे तो प्रणिपात कर सकता हूँ, तीर्थ यात्रा कर सकता हूँ, माला जप मंत्र कर सकता हूँ. आप बोलेंगे उतने तो वो करके भी आप मन शांत करना क्या है, उद्देश्य क्या है ये सब चीजों का? ये सब चीजों का उद्देश्य है अंतकरण की शुद्धि, मन की, मन का जो चांचल्य है, मन की चंचलता जो है, उद्विग्नता जो है, उसे दूर करना है. यही एक पर्पज है. पठन्तु शास्त्राणि, यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्वाणि, भजन्तु देवताः. आत्मैक बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि. ये याद रख लीजिए कि ये सब करने के बाद भी मैं वो परमात्मा हूँ, ये अहम् अयम् अस्मि इति ब्रह्म, वो जो पुरुषः, आत्मानं चेद् विजानीयात् अयम् अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय. अंतिम क्या है ज्ञान? तो बोले ये जो भीतर जो परमात्मा, जो आत्मा है, हृदय गुहा में हृदयस्थ जो परमात्मा है, वो मैं ही हूँ, वो जानना वो अंतिम परिणाम है. और ये जो यजन, पठन, पाठन, तीर्थ यात्रा, दर्शन है, वो क्यों, ये वो व्यवस्था किसके लिए है? ये जानने के लिए मन का जो शांत होना जरूरी है, मन में भगवद आकार वृत्ति का उत्पन्न होना जो जरूरी है, उसके लिए ये सब किया जाता है. कहने का तात्पर्य, आपके संस्कार, आपके आदतों के मुताबिक ये सब साधनाएं करना. ये न कहने प्रकार है ना, आपका मन जिससे शांत हो ऐसे आप शांत कर सकते हैं. अनुकरण मत करना और उसकी ज्यादा बहुत चिंता भी मत करना. उसे प्राप्त करने निकले हैं तो उसे ही उसकी चिंता करने दो. आप चिंता करके अपनी शक्ति का व्यय मत करो. देखिए ये जो संघात दिया है ना, ये लिमिटेड है और ये लिमिटेड से अनलिमिटेड को प्राप्त करना है. ये आंख में जो देखने की शक्ति दी गई है ना, परमात्मा ने आपको पैकेट तो भेज दिया, पर आंख को देखने की जो शक्ति दी गई है वो उतनी ही शक्ति दी गई है जिससे आप परमात्मा को देख सको. परमात्मा को देख सको यानी परमात्मा तो अदृश्य है, आंख का विषय नहीं है, पर आंख से देख के इतना ही निर्णय करना है कि हे परमात्मा, मैं जिसे देख रहा हूँ उसमें अस्थि भांति प्रिय रूप आप हो, आप नाम आकार के रूप में नहीं हो. इसमें आंख की शक्ति है, उसका सदुपयोग करना है. पर हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड आंख की शक्ति दी है, लिमिटेड कर्ण की शक्ति दी है, लिमिटेड वाणी की शक्ति दी है, लिमिटेड पैर की चलने की शक्ति दी है, पर हम क्या करते हैं, ये सब शक्ति को गलत कर्म में, गलत जगह में, गलत वस्तु में, गलत विषयों में हम डाल के खत्म कर देते हैं. पर ये कोई नेवर एंडिंग ऐसा डायनामो ऐसा नहीं दिया है कि वो रिजनरेट होता जाए. शक्ति गई तो गई, वापस नहीं आएगी, नहीं तो हमको चश्मा नहीं आते. और देखिए आप ऋषि मुनियों को, आप हिमालय में चले जाइए, 100-100 साल का जीवन है और चश्मा क्या, कैटरेक्ट भी नहीं आता है. क्यों, आपका दुरुपयोग ही नहीं किया है. कान चले ही नहीं जाते, आप और मुझसे और आपसे ज्यादा सुन सकते हैं वो. अच्छा क्यों, क्योंकि गलत सुना ही नहीं दिया है. ऐसी ही वाणी सुनी है जो भगवत का नाम, परमात्मा की, भगवत आकार की वृत्ति उत्पन्न करे, ऐसा ही कान में डाला है शब्द. क्या हम ये कर सकते हैं, ऐसा करो तो ये तप हो गया, ऐसा करो तो और कुछ आसन योग शास्त्र की जरूरत नहीं रहेगी, आप शांत हो जाएंगे अपने आप. हिम्मत है ऐसा करने की? जहां भी प्रपंच गया, जहां भी दूसरी वाणी, नाम और आकार की बात आई और उठकर आप जा सकते हैं बिना शर्म, बिना झिझक, बिना संकोच? तो समझना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ आपने किया, उठ के चले जाइए। शर्माइए मत, उसको प्राप्त करने के लिए संकोच मत कीजिए। यह वाणी से कितना गलत और बिन उपयोगी कितनी वाणी हमने बोल दी, एनर्जी वेस्ट गई तो गई, अभी चली गई। और संतों की वाणी, ऋषियों की वाणी हम तड़पते हैं सुनने के लिए, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गलत वाणी बोल के एनर्जी वेस्ट नहीं की, तो उनके मुख से जो निकलता है वाक तपस हो जाता है, जो बोलते हैं वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाणी ने गलत नहीं बोला, इसलिए जो बोलते हैं वो हो जाता है। तात्पर्य क्या है अब बराबर समझ लीजिए कि हमें क्या सीखना है इससे। जो भी शक्ति आपको दे गई है उसका सदुपयोग करना है। अब पुष्पदंत जी के स्वभाव के मुताबिक उन्हें ये वाणी को थोड़ी रसमयी बना के गीतात्मक रूप में परमात्मा की स्तुति करने का एक मौका मिल गया। देखिए, और एक बात समझ लीजिए कि प्रतिकूल संजोग आ गए तो प्रतिकूल संजोग में परमात्मा उनके श्रवण का, मनन का, चिंतन का, निधिध्यासन का, गान का, भक्ति का मौका दे रहे हैं। ये मौका मत चूकना। मीराबाई को जब ये जहर का कटोरा यहां तक आ गया तो मीराबाई को तो बहुत खुश हो गए। क्यों? मौका मिल गया कि हे परमात्मा, इतनी एकतानता तेरे साथ कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। इतनी एकतानता थी कि वो पिए तब उनके मन में ये विष है उतनी वृत्ति, देखिए ये विष है ऐसा कहने के लिए वृत्ति होनी चाहिए कि ये विष है। पहले अंतकरण वृत्ति जो है वो तत्त्वत विषयाकार होती है, फिर ही भान होता है कि ये है। अब वो विषयाकार करने के लिए मेरे मन में ओम नमः शिवाय की वृत्ति चल रही है, जहर का कटोरा आ गया तो ओम नमः शिवाय की वृत्ति मेरी क्या होगी? चली जाएगी। और ये विष है ऐसा सोचने के लिए वृत्ति यहां से निकल के यहां जाएगी। अब यहां से निकल के यहां गई, उतनी क्षण के लिए भी उन्होंने परमात्मा का, भगवत का नाम नहीं छोड़ा, तो भगवत आकार वृत्ति ऐसी ही बनी रही। तो हे परमात्मा, मुझे तो खुशी हुई कि ये जहर मिला, क्योंकि ये होने तक ये है ऐसी भी वृत्ति, इतना भी नोटिस नहीं किया, तेरे साथ में ज्यादा हो सकी, ये प्रतिकूलता से आप ज्यादा मिल गए। अब देखिए, कोई भी जीवन में प्रतिकूलता आएगी तो आप परमात्मा का नाम थोड़ा विशेष रूप से लेंगे कि नहीं लेंगे? आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कुछ सुन लिया कि अरे भाई कुछ गलत हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तूफान आ गया है, कर्फ्यू लग गया है, तो क्या होगा? तुरंत ही परमात्मा का नाम की प्रबलता बढ़ जाती है कि नहीं? हाँ, प्रतिकूलता में प्रबलता बढ़ जाती है। यानी प्रतिकूलता को क्यों आई, ये प्रतिकूलता कैसे आई, उसमें से कैसे मैं बाहर चली जाऊं, कैसे निकलू, कैसे छूटू, ये सोचने के बदले आपकी भगवताकार वृत्ति को एकदम ही पकड़ के प्रकर्षण मजबूत किए जाइए। तो ये पुष्पदंत जी ने क्या किया, राजा के सामने गिड़गिड़ाना तो बंद ही कर दिया। देखिए, उनके उद्यान से चोरी की है तो भी उन्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हाथ उसे जोड़ने हैं। गलत किसी का किया भी, गलत तो करना नहीं ही है, पर कर ही लिया तो कोई बात नहीं, कोई छोटे बन जाने की भी जरूरत नहीं है। प्रार्थना तो करनी ही है, नमस्कार तो, माफी तो मांगनी ही है, वो परमात्मा की मांग लेना। तो उन्होंने क्या किया, कोई राजा के साथ की बात कुछ नहीं की, कोई सैनिकों के साथ कुछ मारपीट कुछ नहीं, मन में द्वेष भी नहीं रखा कि मैं पकड़ा गया, निर्माल्य क्यों रखा, अब उसके मुताबिक भी वार्तिक नहीं किया, क्योंकि गंधर्व योनि मनुष्य योनि से ऊपर है, देव गंधर्व योनि भी ऊपर है गंधर्व योनि से, तो ये तो ऊपरी हो गए। तो भी कोई वाद नहीं किया, कोई तर्क, देखिए तर्क से कुछ भी जीता जा सकता है, ये तर्क से काशी नरेश राजा को भी वो असत्य ठहरा सकते थे, उनमें शक्ति थी है। पर ऐसा करने में हमें आपको बताया, जो एनर्जी जो है, जो शक्तियां दी गई है परमात्मा को जानने के लिए, उसका व्यय नहीं करना। ये तर्क आपकी शक्ति को खा जाता है और परमात्मा को नहीं मिलने देता। तो ये जो शक्ति है उनका सदुपयोग उन्होंने मात्र परमात्मा की स्तुति के लिए किया, और वो स्तुति है शिव महिम्न स्तोत्र। पहला श्लोक है आपके पास, जिसके पास शिव महिम्न है कईयों को तो मुखपाटी होगा आप सबको, जिसको नहीं है पुस्तक में आप देख के मेरे साथ ही गान करना।

ये एक महिम्न स्तोत्र ऐसा है जो शिखरिणी वृत्त में ही गाया जाता है। आप कोई अलग कोई राग में गाए तो वो अलग बात है, बाकी इनके लिए शिखरिणी जो वृत्त है, शिखरिणी जो छंद है, उसी में गाने का विधान किया गया है, क्योंकि वो ज्यादा ये मधुर रस जो है, ये मधुर रस में ज्यादा मधुर, ये कहते हैं ना आइसक्रीम के ऊपर आप टॉपिंग रख देखते हैं, ऐसे मधुर को भी मधुर करते हैं, क्योंकि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, परमात्मा सब मधुर जितना एकत्र कर लिया, जितना आनंद, जितना श्रेष्ठत्व, जितना सौंदर्य एकत्र कर लिया, उससे भी ज्यादा वो परमात्मा है। उनके महिमा को हम पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए जितना महिमा किया उतना आपके लिए तो कम ही है, क्योंकि मैं जितना आपका वर्णन करूंगा, मैं जितना आपका महिमा का गान करूंगा, उससे आप ज्यादा ही है, इसलिए जितना वर्णन करूं उतना कम है, फिर भी जितना भी करूं उतना पर्याप्त भी है, क्योंकि मैं आगे बढ़ सकता नहीं हूं। आप मधुर से भी ज्यादा मधुर है, तो ये मधुर से भी ज्यादा मधुर स्तोत्र है, उसको और मधुर बनाने के लिए शिखरिणी वृत्त क्यों किया गया, क्योंकि ये गान शिखरिणी छंद में गाने से परमात्मा की आनंद की बात इसमें बन जाती है। तो शिखरिणी वृत्त में 17 जो अक्षर जो बने हैं उसमें 6 को तोड़ देते हैं और बाकी के 11 अलग गाए जाते हैं, तो ये आपकी जानकारी के लिए। अब यहाँ कहा है महिम्न पारमते परम विदुषो यद्र सदृशी, हे परमात्मा, हे महादेव, आपके महिमा की परम सीमा, परम विदुषो परम सीमा जो है वो न जानते हुए मेरी स्तुति अगर आप उसे अयोग्य कहेंगे, यानी हे परमात्मा, आपका जो महिमा है वो अवर्णनीय है, आपका महिमा आप ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम स्वरूप ब्रह्म है, और परब्रह्म के बारे में क्या कहा गया है उपनिषदों में, हम भी जानते हैं कि अवांग अमनस अगोचरम, यानी वाणी का विषय नहीं है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का विषय ये नहीं है, वो बंद हो गए। अच्छा, मन का विषय है, तो बोले मन भी उड़ गया, अंतकरण का भी विषय नहीं है वो परमात्मा, बुद्धि का भी विषय नहीं है, और हमारे पास है क्या? What we have to know that Lord? ये मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि का संघात है, और ये संघात के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये मैं स्तुति कर सकूं। तो ये संघात की मदद से अगर मैं स्तुति कर रहा हूं तो वो अयोग्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो महिमा को पहुंच नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि शरीर मन बुद्धि के पर की वो महिमा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं तो वो अयोग्य नहीं है। क्यों अयोग्य नहीं है? तो उसकी बात बता रहे हैं कि स्तुति ही ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मादि है वो देव भी, उनकी वाणी भी आपकी स्तुति करने में अयोग्य है। अयोग्य है यानी पहुंच नहीं सकती है, पूर्ण नहीं हो सकती है। और यहां ब्रह्मा जी की ही बात क्यों की? ब्रह्मा जी के साथ कुछ उनको तकलीफ हुई थी क्या? तो बोले नहीं, ब्रह्मा जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पर ब्रह्मा जी स्वयं परमात्मा में से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनकी स्तुति को, उनके महिमा को खुद ही उत्पन्न हुए तो भी नहीं जान सकते हैं, उनके कारण है तो भी नहीं जान सकते हैं, उनका कार्य है तो भी नहीं जान सकते हैं, तो मेरी तो बात ही क्या? अगर ब्रह्मा जी नहीं जान सके तो भी उन्होंने स्तुति की है, तो मेरी स्तुति सर्वथा योग्य ही है, स्वीकार्य ही हो सकती है, इसीलिए मैं ये स्तुति करने की कोशिश चेष्टा कर रहा हूं। आगे कहते हैं, अथावाच्य सर्व स्वमति परिणामा वधिगृणन ममाप्येश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः। और उन्होंने कहा कि अपनी अपनी बुद्धि के मर्यादा के मुताबिक स्तुति करने वाले हर कोई अगर निंदा पात्र नहीं है तो मेरा ये स्तोत्र जो है उसका प्रयत्न निर्दोष ही आप समझिए। हे हर, हर याने
हरण करने वाले, किसका हरण करने वाले, अज्ञान का हरण करने वाले। तो अगर आप अज्ञान का हरण करने वाले हैं तो मेरी स्तुति में अज्ञान कहां से आ गया? भाई शरीर मन और बुद्धि का उपयोग किया ना, यही अज्ञान आ गया। अगर आप जो अगर कहेंगे ना कि भाई ब्रह्म ही है और आप ब्रह्म में ही निष्ठा रखते हैं, ऐसा हम कैसे जाने? जिस दिन हम बोलना बंद कर देंगे सब संत, तब मान लेना कि ब्रह्म में। तो क्या संतों को ब्रह्म में निष्ठा नहीं है? ऐसा नहीं है, बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सुनने वाले की, वक्ता की, शरणागत की भी निष्ठा हो, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी ब्रह्म को जानने के बाद कुछ बोलना नहीं रहता है, एक शब्द नहीं रहता है, ये तो उच्छिष्ट हो गया ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में बोले तो ब्रह्म उच्छिष्ट हो गया। वो उच्छिष्ट कैसे हो सकता है? वो तो परम शुद्ध है, बोला ही नहीं जा सकता। बोलते इसलिए है क्यों? क्योंकि कोई शरणागत है। बोलते इसलिए है क्योंकि बोलने वाला ही सुन के वो नहीं बोलने वाले को प्राप्त हुआ है। किसी का तो उसने प्रवचन सुना है, किसी को तो बोल सुने हैं, कोई तो उद्धृत हुआ है उनको बोलने के लिए, और वो सुन सुन के वो परमात्मा के बारे में जान सके हैं, अंतिम विधि तक जान सके हैं, अंतिम अवधि तक पहुंच सके हैं, इसलिए वो फिर से बोलते हैं। ये कष्ट होता है बोलने में, क्यों? क्योंकि एक बार पता लग गया कि वाणी का विषय भी जो नहीं है, जो मन का भी विषय नहीं है, बुद्धि का भी विषय नहीं हो, उसमें बल जबरी बोलना पड़े तो जानना के क्या होता है, फिर भी बोलते हैं। इसीलिए गुरु को, संत को, ये वेद को अकारण दयामय कहते हैं, वो इसीलिए। तो पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे परमात्मा हर, आप हर यानी अज्ञान का हरण करने वाले हैं, मेरी जो स्तुति में कर रहा हूं उसमें अज्ञान क्या आ गया कि आप वाणी से पर है तो भी वाणी में बोल रहा हूं, तो ये वाणीगत जो अज्ञान है उसको आप निकाल दीजिए। और जो परम शुद्ध आप रह गए वाणी के बाद, वाणी के बाद कैसे रह गए? तो देखिए, अगर आप परमात्मा का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये वाणी का उपयोग किया। अब वाणी में से परमात्मा को हर बोल के प्रार्थना क्या करनी है कि इसमें से अज्ञान को निकाल दो, यानी शब्द को निकाल दो और उसकी जो असर है उसमें आप स्थित हो जाओ। ओम नमः शिवाय जब आप बोलेंगे तो असर क्या होगी? ओम बोलेंगे तो असर क्या होगी? तो बोलने के बाद जो शांति है, जो आनंद है, जो शरीर मन बुद्धि की संवेदनाएं हैं वो चली जाती है, प्रारब्धगत सुख दुख जो है वो क्षण के लिए जो दूर हो जाते हैं, और मात्र परमात्मा का जो क्षणिक स्पंदन होता है वो परमात्मा ठहर जाता है, वहां रह जाता है। पर प्रार्थना में वो अज्ञान को निकाल देता है, वाणी को निकाल देता है। जो वाणी को निकालने के बाद, तो हे परमात्मा वाणी से बोल रहा हूं उसमें वाणी रूप अज्ञान को निकाल दीजिए, और मेरा जो हार्द है, मेरा जो प्रेम है आपके प्रति जो प्रदर्शित हो रहा है, वो प्रेम को आप पकड़ लीजिए, आप तो वो करने में सक्षम है। देखिए, इतना आप भक्ति किसको बोल सकते हैं? जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको आप मानते हैं। तो परमात्मा को इतना नितांत अपना पहले मानिए, पहले अपना बना लीजिए, फिर ही उसको बोल सकते हैं। अच्छा, मेरे मन का, जो मन और बुद्धि से आपकी महिमा का मैं वर्णन तो कर रहा हूं, वाणी से आपके रूप का वर्णन करूंगा, पर आपके जो गुण है, निर्गुण गुण है, ये कैसा है? शक्कर का एक टुकड़ा है, तो उसका जो रूप है उसका वर्णन मैं वाणी से कर सकूंगी कि भाई ऐसा है, सफेद रंग है, ऐसा ऐसा है, इतनी जगह रोक रहा है, उसका वजन इतना है, उसका वॉल्यूम इतना है, ये टेबल पे रखा गया है, ये सब तो मैं बोल सकती हूँ। पर वो कैसा है, उसके अंदर भीतर कुछ और भी है क्या? शक्कर के भीतर ये रूप के अलावा और क्या है? मिठास है, तो मिठास दिख रही है? नहीं, मिठास दिख नहीं रही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको चखना पड़ेगा, उसको वाणी के ऊपर लाना पड़ेगा, जूठा करना पड़ेगा। जूठा करने के बाद क्या आएगा? जूठा करने के बाद जवाब क्या आएगा कि ये मीठा है। ऐसे हे परमात्मा, मेरी गलती तो हो ही गई है, वाणी से नाम लेके मैंने जूठा कर दिया आपके नाम को। ये वाणी से भी लिया नहीं जा सकता नाम, तो भी मैंने लेने की दृष्टता चेष्टता की, पर मुझे माफ करना। क्यों? क्योंकि शक्कर के निर्गुण गुण को जानने के लिए मुझे उसे जूठा करना ही पड़ता है, तो ही मैं मीठा ऐसा बोल सकता हूँ। ऐसे हे परमात्मा, वाणी से आपका नाम लेके
मन और बुद्धि से ये नाम लेने के बाद जो भी आपके निर्गुण निराकार जो विशेषण जो गुण थे वो मेरे भीतर जिस प्रकार आए उसका मैंने वर्णन, निर्गुण का भी वर्णन मैंने किया है। इसलिए ये स्तुति का बहुत महत्व है, क्योंकि सगुण और निर्गुण को एक साथ प्रदर्शित किया है, एक ही प्रभु के लिए प्रदर्शित किया है। और ये जो परमात्मा मन और बुद्धि से मैंने जो निर्गुण तत्व का वर्णन किया है उसमें से अज्ञान रूप मन को हर, आप हर इसलिए है कि हर में ये मन की जो मेरा जो मन है, मेरा जो संस्कार है सत्व रजस तमस, मेरे मन के जो संकल्प विकल्प आपके निर्गुण रूप को वर्णित करने में भी बीच में आ गए हो उसको आप निकाल देना, और फिर जो रह जाएगा वो स्तुति आप स्वीकार कर लेना। बुद्धि से भी, जो भी बुद्धि से मैं जहां तक पहुंच सका, आप बुद्धि से पर है, मैं जहां तक पहुंच सका वहां तक मेरी बुद्धि गई, वो मेरी अज्ञान रूप बुद्धि को निकाल लेना और जो भी बच गया वो स्तुति को आप ले लेना। ऐसा हर, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा जिस दिन आप परमात्मा को कह सकेंगे कि हे परमात्मा ये तेरा नाम मैं ले रहा हूं, उसमें से ये अज्ञान रूप मन वाणी का विषय निकाल देना और जो परम तत्व आप रह गए हैं, तदेको अवशिष्ट शिव केवलोहम, ये अवशिष्ट जो रह गया है हे परमात्मा उसको आप सहर्ष स्वीकार कर लेना। तब समझना कि आपने परमात्मा को स्वीकार किया, आप परमात्मा को प्रेम कर रहे हैं। कुछ नहीं तो उसके साथ मन ही मन बातें कीजिए, कभी उसके साथ बात की है? हाँ, ऑर्डर ही किया है, पैर दुखता है हे भगवान मिटा दो, आंख दुखती है हे भगवान मिटा दो, ये होगा घर टूट गया हे भगवान, ये क्या ऑर्डर, हाउ कैन यू ऑर्डर? और ऑर्डर किसको कर सकते हैं? जिसके साथ इंटीमेसी हो, जिसके साथ फ्रेंडशिप हो। कभी उठ के पूछा है हाउ आर यू? हाँ, परमात्मा को कभी मन से भी पूछा है? नहीं, उसको प्रेम ही नहीं किया। परमात्मा को आस्तिक के बुद्धि से प्रेम करो। देखिए तकलीफ होती है तब वही परमात्मा, वही उनके सगुण साकार रूप के बाद आप नहीं सोचेंगे तो भी जाते तो है ही, अनजाने में भी चले जाते हैं, दौड़ जाते हैं, मदद मांगते हैं, और वो गलत भी नहीं है। तो अनजाने में उनके पास अगर आप दौड़ जाते हैं तो जानते हुए जाइए ना, शर्म क्यों लगती है, ये संकोच क्यों है, ये संकोच तोड़ दीजिए। ये शर्म, परमात्मा के बारे में संकोच और शर्म तोड़ दीजिए, तो ही परमात्मा को आप कह सकेंगे कि मेरी वाणी से अनुरुत निकाल दीजिए। हाँ, असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये असत जो वाणी में मन में बुद्धि में रह गया है उनको आप निकाल दीजिए। तो यहाँ मेरी स्तुति निर्दोष है ऐसा परमात्मा को पहले से ही उन्होंने बता दिया। क्यों? क्योंकि आपका वर्णन हमेशा जितना वर्णन करूं उससे आप अधिक ही है। देखिए व्यवहार में भी मैं मिठास का जितना वर्णन करूं वो कम ही है ना, आपको तृप्ति कब होगी? हाँ, जब वो मिठास आपके भीतर जाएगी तभी आपको तृप्ति होगी। वर्णन तो वैसे भी अधूरा रहेगा, तो व्यावहारिक शक्कर का वर्णन भी अधूरा है तो ये परमात्मा का वर्णन तो अधूरा ही रहेगा। वो मुझे पता भी है कि अधूरा रहेगा तो भी मैं चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं करने से तो वर्णन करना अच्छा है। इससे क्या हो रहा है, देखिए सूक्ष्मतया क्या हो रहा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी घटना घट रही है। ये भगवदाकार वृत्ति तैयार हो रही है, ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जिसमें आप वो तत्वमसी का उपदेश है वो धारण करके रख सकते हैं। यही एक पात्र है, यही एक शुद्ध भगवदाकार वृत्ति का पात्र है जिसमें ये परमात्मा ठहर सकता है, क्योंकि वो अति शुभ्र अति शुद्ध है। आप यहां आए और आपके कुर्सी के ऊपर कल जो कुछ पूजा हुई होगी, किसी ने प्रसाद या शक्कर के दो तीन दाने पड़े होंगे, तो आप वो कुर्सी पे बैठ जाएंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? साफ करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे बताइए। भाई ये तो मंदिर है, ये मंदिर ही है, तो मंदिर में तो कहां भी बैठा जाता है, साफ करने की क्या जरूर है? नहीं, हम तो साफ करके बैठेंगे। देखो ये जड़ शरीर मन बुद्धि का संगात है, मृत प्राय। शंकराचार्य जी ने इतना अच्छा बताया विवेक चूड़ामणि में, सुनने को तो अच्छा नहीं लगेगा कि ताजा मरा हुआ मर्दा है ये शरीर, ताजा ताजा एकदम फ्रेश मरा हुआ, सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पर ये हकीकत स्वीकारनी पड़ेगी। तो ये ताजे मर्दे को भी बिठाने के लिए साफ सफाई करते हैं, तो वो अति शुद्ध परमात्मा वो क्या अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मल, हाँ,
ये इतनी अशुद्धि हो कि सीट पे बैठ जाएगा आके हृदय में लगता है बैठेगा। हाँ, हम चेयर को साफ कर करके बिठाते हैं तो आप अपने अंतकरण को शुद्ध कब करेंगे, कैसे बैठेगा वो अंदर, एक क्षण के लिए भी नहीं बैठेगा। इट इज एन इंसल्ट टू इन्वाइट लॉर्ड, उनको बुलाने की जल्दी मत करना, क्योंकि यो वेद नहीं तम गुहायाम, वो तो आके है ही पर अपने स्वरूप को वो बताता नहीं है। अहम अस्मि प्रत्यय से वो प्रकटीकरण नहीं करते हैं अपने आप को। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जो आसन है वो स्वच्छ नहीं है। आप किसी के घर में जाते हैं, आपको अगर शुद्ध आसन बैठने के लिए नहीं दिया गया या जानबूझ के गंदा आसन दिया गया, गंदा आपका आदर सत्कार नहीं किया, ठीक जगह पे आपको अपने स्टेटस के मुताबिक बिठाया नहीं तो क्या होगा? वोंट यू फील इंसल्टेड? हाँ, हमको बुरा लगेगा, हम वापस वहां नहीं जाएंगे। हम तो निर्णय लेके बैठ जाते हैं कि हम वापस ये घर में जाएंगे नहीं। परमात्मा तो इतना भी नहीं कर सकता है, और यही बात का हम डिसएडवांटेज लेते हैं उनका। अशुद्धि तो पूरे पूरी है, परमात्मा को बुलाया कि मेरा ये काम कर दे, कभी कभी मन हुआ प्रार्थना कर ली, मन हुआ सत्संग कर लिया, पर ठीक जगह ठीक आसन उनको नहीं दिया, तो ये परमात्मा इतना करुणामय दयालु है कि ये ऐसा भी नहीं कहता है कि मुझे ठीक बिठाने को नहीं मिला तो मैं चला जाता हूं, नहीं। वो ऐसे ही अंतस्थित अहम प्रत्यय से आपको सत्ता और स्फूर्ति देते ही रहते हैं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, इतनी धीरज वो परमात्मा रख सकता है। अब तो सोचिए कि उसे निज आसन पे बिठाना, ये परमात्मा को बिठाना यानी क्या कि परमात्मा को अहम ब्रह्मास्मि अहम वृत्ति से इतना व्यावृत्त होने देना, इतना अभिव्यक्त होने देना कि आप कुछ भी वाणी बोले, कुछ भी देखे तो उसमें अदृश्य परमात्मा दिखाई दे, उसको अभिव्यक्त होने देना। ये आंख उसने दी है तो परमात्मा को अंदर बोलिए, ये शरणागति क्या है, ईश्वर अर्पितम नेच्छया कृतम, ईश्वर को अर्पण करना क्या है, शरणागति क्या है कि ये आंख तूने दी है, मैंने ठीक ठीक सब देख लिया, नाउ इट इज फॉर यू। आप जितना जल्दी सके दे सके उसको आंख दे देना, यानी आंख दे देना यानी क्या कि ये आंखें अब तेरे लिए है, तुझे जो देखना है वो देख ले, ये मुख तेरे लिए है, जो बोलना है वो बोलना, जो खाना है वो खाना है परमात्मा, जो कान तुझे दे दिए, अब मैं जिद नहीं करूंगा कि यही सुनना है, यही खाना है, यही देखना है, यही पहनना है, इट इज योर्स, यूटिलाइज इट। ये शरणागति है, तो हृदय आसन शुद्ध होगा, और ऐसे हृदय आसन शुद्ध करने के लिए ये भक्ति है, स्तोत्र है, अनेकविध स्तुतियां है, ऐसे ये न केन प्रकारेण सत्संग करके, ये प्रयत्न करके हम परमात्मा के प्रति जितने निकट हो सके, मनुष्य शरीर एक ही ऐसा है उसमें हम जा सकते हैं, इसीलिए इसका सदुपयोग करके, एक एक क्षण का उपयोग करके वो परमात्मा के प्रति हमारी निष्प्रतिदिन गति हो, ऐसी ही परमात्मा को प्रार्थना करते हुए कल हम फिर से मिलेंगे।

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: उसी से वही क्या है जगत का सृष्टा है, ये संकेत और फिर आगे संकेत किया वरेण्यम, वही क्या है वर्ण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, क्योंकि जब मूल की प्राप्ति हो जाए तो सब कुछ मिल गया, और मूल की जब तक प्राप्ति नहीं होती है तब तक अधूरापन रहता है, तब तक सर्वस्व नहीं मिलता, पूर्णता नहीं आती। इसलिए संकेत किया कि वही वर्ण करने योग्य है, वही प्राप्त करने योग्य। और शास्त्रों में अन्यत्र भी तम ह आत्मबुद्धि प्रकाशम ममुखर वही शरणम अहम प्रपद, माने उस आत्मरूप को प्रकाशित करने के लिए ऐसी बुद्धि को हम उस देव से चाहते, ऐसा संकेत किया। और अन्यत्र भी संकेत किया स्मृति के अंतर्गत सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान मपोहनम च, जो ये सब कुछ करने वाला है, का वही वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यु, संपूर्ण वेदों के द्वारा कौन जानने में आने वाला, कहा वही मूल तत्व। और जब उस मूल तत्व को जान लिया जाता तो वेदांत कृत वेद है, संकेत कर दिया तो वो वेदांत कृत हो जाता। और वेदांत कृत का मतलब कृत भूतकालिक क्रिया, माने उसने सिद्धांत को कर लिया, और जिसने सिद्धांत को कर लिया तो अब करना बाकी क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से वही असंकेत किया वरेण्यम, वही प्राप्त करने योग्य है। इसलिए क्यों कहा, उसकी प्राप्ति भी हो जाएगी तो लाभ क्या होगा, प्रश्न हमारा तो जो है, क्योंकि आप बोलते हो दर्शन की पद्धति है अनुद्देश्यम बिना मंदो बिना प्रवर्तते, जब तक कोई उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती है तो एक मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त, तो हम इस कार्य में प्रवृत्त क्यों हो, इससे हमें लाभ क्या होगा, लाभ की दृष्टि होती। अब लाभ की दृष्टि जब देखते हैं तो संकेत क्या किया, कहा वरेण्यम देवस्य भर्गो, क्योंकि देव कैसा है तो उसका विशेषण दिया भर्ग रूप। ये भर्गता क्या है, तो भर्ज धातु से भर्ग शब्द बनता, भर्जयति भर्गयति इति भर्गः, तो जैसे भुर्जी शब्द बनता उसी धातु से, भुर्जी क्या करता, चने को भून देता, और चने को भून देता है तो चना क्या होता, उसका आवरण टूट जाता, और आवरण टूट जाता है तो चने में एक विकास आता है, एक सौंदर्य आता है और स्वादिष्ट भी हो जाता, लेकिन उसमें फिर आगे जो है प्ररोहण नहीं, मन अंकुरित वो नहीं होता। तो जैसे वहां भुर्जी काम करता वैसे ही क्या है, परमात्मा भी भुर्जी है, इसलिए भर्ग कह दिया। वो क्या करता, कहा वो भूंज देता, किसको भूंज देता है, तो जैसे वो अंकुरित होने की शक्ति है वैसे ही कामना ही सारे संसार की जड़ है, अंकुर है, तो वो हमारी कामना को ही भूंज देता, अथवा यूं कहें हमारे पाप और पुण्य दोनों को जला देता। संपाति गया असुर के सामने तो क्या हुआ, दोनों पक्ष उसके जल, तो निष्पक्ष बना दिया, तो ये क्या करने वाला, निष्पक्ष बनाने वाला, निर्विशेष बनाने वाला। तो इसलिए संकेत किया कि भर्ग रूप है, ऐसे भर्ग रूप देवस्य धीमही, हम उसका ध्यान करते, क्यों ध्यान करते, कहा वही हमारी बुद्धि में ऐसा प्रकाश, हमारी बुद्धि को प्रेरित करेगा, जिसके द्वारा हम उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकेंगे, जिसे गुरु जो है चिदाकाश रूप जो गुरु है और उपाधि को लेकर के जिस कार्य को करता है वो कार्य इसी ओम से हो जाएगा, ये संकेत किया। तो इस प्रकार का ओम, अब जो ये ओम है ऐसे ओम का उच्चारण करते हुए क्या कहा, ओम शन्नो, तो ओम तो संकेत कर दिया ब्रह्म का अत्यंत नजदीकी है, लेकिन अब उसी ब्रह्म की नजदीकता से फिर कुछ दूरी चलेगी, तो दूरी में फिर संकेत क्या किया, मित्र हो। क्या कहा? मित्र। ओम शं नो मित्र, ओम मित्र न शं। अब जो मित्र है वो क्या करे? तो कहे न अस्माकम, हमारे लिए, शम सुखम शमनम, शमन करे, सुख करे, जो हमारे में दुख है उस दुख का शमन करे, और दुख का शमन करके क्या करे? सुख प्रदान करे। तो वह कौन करे? तो कहा मित्र। अब मित्र क्या है? तो सर्वमान्य इति मित्र, या मित्र शब्द का अर्थ दूसरा क्या है? तो आप जानते हो, भर्तरी ने लिखा, पापान निवारे योजेते इताय गुहम च गुवद गुणान प्रकटी आपदगतम न जहात ददाति काले शनमित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति। तो सच्चे मित्र के लक्षणों की चर्चा की। सच्चा मित्र कौन है? तो संसार के जो मित्र हैं वो कुछ सहयोग तो कर देते हैं, कुछ कार्य तो करते हैं, लेकिन जैसा यहां कहा गया वैसा आपत्ति के समय साथ नहीं देते। वैसे तो देते हैं, पापों से भी हटाने का प्रयास कर लेंगे, सदमार्ग में भी लगा देंगे, ये सब कर दें, और दे भी देंगे, सहयोग भी कर देंगे, लेकिन आपत्ति में साथ देना, मृत्यु काल में साथ देने वाला, ये हमारा संसार का कोई भी मित्र नहीं। तो ये मित्र तो हैं, लेकिन यथार्थ मित्र। तो सच्चा मित्र कौन है? तो कहने लगे ओम सच्चिदानंद परमात्मा। अब जो है वही सच्चा मित्र है। तो ऐसे मित्र को लेकर के कहा जो मित्र है, और मित्र कब कहलाता है, मित्रता कब होती है? तो आप जानते हो, मित्र मित्र में परस्पर स्नेह भाव होता है। परस्पर क्या होता है? स्नेह भाव होता है। बगैर स्नेह के मित्रता कभी टिकती नहीं। तो मित्र में स्नेह, और स्नेह क्या है? तो नैयायिकों ने तो लिखा, चूड़ाद पिंडी भाव हेतु स्नेह, बिखरे हुए खंड खंड कणों को जो एकीकृत कर देता है उसका नाम है स्नेह। जैसे आप जो कनक है, आटा है, वो आटा क्या है? कण कण में बिखरा हुआ, और जल को जब उसमें डाल देते हैं तो वही क्या बन जाता है? पिंड बन जाता है। और पिंड बन गया तो किसके माध्यम से? जो जल के अंदर स्नेह तत्व था, गुण था, स्नेह जल का गुण है, उसने क्या किया? उसे एकीकृत कर दिया। तो स्नेह क्या करता? एकत्व स्थापित करता, एकीकृत करता। तो स्नेह क्या हो गया? तो इसलिए स्नेह को क्या कहा? स्नेह कहो, प्रेम कह दो उसी का नाम, उसी को क्या कहा? भक्ति कहा गया। उसी का नाम क्या रखा गया? भक्ति है ना। इसलिए जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने लिखा, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ा सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ऋतिख्याता तथैव मुक्तिर न चान्यथ। संकेत किया। अब स्नेह कब होता है, प्रेम कब होता है? तो किसी से भी प्रेम तभी होता है जब उसमें गुण विशेष आप देखते हो। गुण विशेषों को लेकर के ही किसी पदार्थ से या किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम होता। अर्थात गुणों, गुण क्या बतलाते हैं? गुण उसके महत्व को बतलाते हैं। गुण क्या बतलाते हैं? गुण पदार्थ की महिमा को बतलाते हैं, पदार्थ के महत्व को बतलाते हैं। तो जब उसकी महिमा का हमें ज्ञान होता, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु, पहले उसकी महिमा का ज्ञान होता, पदार्थ में गुण विशेषों का ज्ञान होता, और जब पदार्थ में पदार्थ की महिमा का ज्ञान होता है, गुण विशेषों का ज्ञान होता है, तो उस पदार्थ से हमारा स्नेह हो जाता। और जिस पदार्थ में गुण विशेषों का हमें ज्ञान नहीं होता है तो उससे हमारा स्नेह भी नहीं होता। तो वही संकेत किया कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु, उसकी महिमा का ज्ञान होने पर, और सुदृढ़ सर्वतोधिक, सबसे अधिक और दृढ़ क्या हो जाता है? का स्नेह जो स्नेह है, तो सबसे अधिक और दृढ़ स्नेह है, उस स्नेह का नाम ही है क्या?
3: भक्ति।
2: स्नेहो भक्तिर्तिख्याता, ऐसे स्नेह का नाम, ऐसे प्रेम का नाम क्या है?
3: भक्ति।
2: और सबसे अधिक और दृढ़ प्रेम कहां संभव है?
3: तो विद्यारण्य स्वामी ने क्या लिखा,
2: हमको धन से प्रेम है, संसार के पदार्थों से प्रेम है, और शरीर से प्रेम है, पुत्र से प्रेम है, है? परिवार आदि से प्रेम है, ये सारे प्रेम है, स्वर्ग आदि से प्रेम है, ये सब प्रेम, लेकिन सबसे अधिक प्रेम कहां है? ये जब कहा जाए तो आप देखते हो कि आपको धन से प्रेम है, लेकिन धन का आप त्याग कर देते हो। कब? तो धन से अधिक प्रेम कहां हो गया, इसलिए सुरेश्वराचार्य ने लिखा भी है वार्तिक में, तो वित्त से भी अधिक प्रेम है पुत्र से। यदि पुत्र अस्वस्थ हो जाए तो क्या करते हो, धन भी आप त्याग देते हो, और वही पुत्र आपको नींद आ रही है और पुत्र आपसे बातचीत कर रहा है तो कहते हैं अब चुप हो जा, अब जो है मैं हैं सहन कर लेने दे, तो पुत्र आदि का प्रेम भी जो है कैसा हो जाता, वो भी परित्यक्त हो जाता, तो आप कहां चले जाते, कहा नींद में चले जाते, विश्राम में चले जाते। लेकिन ये भी विश्राम कैसा, खंडशः है, तब अंतिम जो विश्राम है वो क्या है, आत्मा का ही विश्राम, और वही है प्राणी मात्र का सबसे अधिक प्रेम। इसलिए याज्ञवल्क्य और का नाम मैत्रेयी के प्रसंग में आप सुनते ही हो, है ना, कि सब जो प्रेम जो सब वस्तुओं से है वो किसके लिए, का आत्मानस, आत्मा के प्रेम के लिए। और यही आचार्य जो है विद्यानंद स्वामी ने लिखा, यम आत्मा परानंदा परम प्रेमास्पदमेता, ये आत्मा ही पर आनंद रूप है। इसलिए सबसे अधिक प्रेम हमारा सुदृढ़ प्रेम कहां होता है, आत्मा में ही होता है। बंदरिया का दृष्टांत भी लोग देते हैं, जब तक जल जो है उसके गले तक आया तब तक तो बच्चे को सिर पर रख लिया, और जब जल उसके मुख में जाने लगा, नासिका में जाने लगा, तो बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई। क्यों? अपने से सबसे अधिक प्रेम है। तो ये तो उदाहरण है स्थूल शरीर को लेकर, लेकिन आत्मा से वास्तव में प्राणी मात्र का सबसे अधिक प्रेम। तो ऐसा जो प्रेम है, ऐसी महिमा को, जब आत्मा की महिमा को हम जब जान लेते हैं, तो सबसे अधिक हमारा प्रेम कहां होता है, उस आत्मा, उस प्रेम का नाम ही है भक्ति, अन्य प्रेम का नाम भक्ति नहीं। इसलिए चाहे भगवत पादाचार्य आचार्य शंकर ने लिखा हो कि आत्मानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी, वही श्रेष्ठ भक्ति, और चाहे जहां आचार्य शब्द से संकेत किया गया कि व्रजवल्लभाएं व गोपिकाएं भक्ति की आचार्य हैं, तो उनके हृदय को जरा टटोलो, उन्होंने क्या लिखा, नकल गोपिका नंदनो भवान अखिल देह नाम अंतरात द्रक। ये जब दृष्टि उनकी बनी तब उनका सबसे अधिक प्रेम हुआ, और उस प्रेम का नाम ही है भक्ति। तो यहां संकेत करते कि वह मित्र, और वो मित्र कौन है, मित्र कहलाने योग्य कौन है, तो कोई दूसरा नहीं है, वही चिदाकाश कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, सच्चिदानंद कहो, वही क्या है, परम प्रेमास्पद का विषय, और उससे ही सुदृढ़ प्रेम होना। और उससे सुदृढ़ जब प्रेम होगा तो वो प्रेमी क्या करेगा, वो प्रेमी तुम्हारे दुर्गुणों को दूर कर देगा, तुम्हारी सारी बाधाओं को नष्ट कर देगा। तो ये मित्र का लक्षण। तो ऐसा जो मित्र, यद्यपि इंद्रिय गत देवता रूप से भी मित्र को कहा गया, लेकिन यथार्थ रूप में यहां मित्र शब्द का अर्थ शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत भी और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत भी यही किया गया, अंतर थोड़ा सा है नीचे की पंक्तियां छोड़ करके, और जो है विष्णु रुक्रमा यहां तक जो है कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र आया और शुक्ल यजुर्वेद में भी इस मंत्र आया। तो अब जो है संकेत करते कि मित्र हो वह मित्र है, और आप ये जानते हो एको देवा सर्वभूतेषु, वो एक ही देव है, लेकिन एक ही देव अनेक देवों के रूप में भी, विशेष उपाधि को लेकर के अनेक रूपों में भी वही देव के रूप में प्रकट हो जाता। आप एक चर्चा सुनते रहते हो, 33 कोटि, अब ये 33 कोटि क्या है,
3: तो लोग बड़ी चर्चा इस पर करते हैं कि उस समय इतनी जनसंख्या भारत की नहीं थी और 33 करोड़ देवता और फिर भी सुधार नहीं कर पाए, ऐसा कहते हैं। लेकिन वहां पर आप विचार करके देखें, ये 33 कोटि जो है किसका परिचायक है?

पृथ्वी लोक ऋग्वेद अष्ट वसु और एक ब्रह्मा ये देव और ऋग्वेद आदि की संकेत कर दिया, अरिष्टपादी छंद कर ला दिया, गारहस्थ्य अग्नि बतला दी। तो अब वहां देवों की चर्चा जो मूल हम लेना चाहते, तो देव कितने बतलाए? अष्ट वसु माने आठ वसु और एक ब्रह्मा कितने हो गए? नौ। उकार जो द्वितीया अस्य उकार मात्रा, जो दूसरी उसकी उकार मात्रा है, उस उकार मात्रा से क्या लिया? तो रुद्र, जो एकादश रुद्र कहे गए उनमें से एक रुद्र गण किया। रुद्र आदित्याश्च, रुद्र और द्वादश आदित्य बतलाए जाते हैं। द्वादश आदित्य कितने हो गए? तेरह। और फिर वहां पर यजुर्वेद आदि करके संकेत किया गया, जगति आदि छंद की चर्चा की गई। तो लेकिन चलो उनसे मतलब नहीं, हमें देव शब्द से मतलब। तो वहां पर कितने हो गए? द्वादश माने बारह और एक रुद्र तेरह। तेरह और नौ कितने हो गए? बाईस। बाईस और जो तृतीय मात्रा है, तृतीया मकारस्य मात्रा, तृतीय जो मकार मात्रा है उससे द्यौलोक, द्यौलोक और कहने लगे द्यौलोक श्याम वेद, श्याम वेद आवाहनी अग्नि और जो है इसी प्रकार से वहां क्रम से बतलाते हुए फिर देव की चर्चा कर दी। कहा देव? तो कहने लगे विष्णु और दशरुद्र। तो विष्णु और दशरुद्र कितने हो गए? ग्यारह। ग्यारह बाईस कितने हो गए? तैतीस। ये हैं तैतीस देवता। अब कहा कि कोटि शब्द बचा पड़ा हुआ, उस संख्या का वाचक वहां पर नहीं, शब्द जहां पर भी शब्द का अर्थ लिया जाता संगति के अनुसार। जब यहां तैतीस की गणना की गई तो तैतीस में कोटि शब्द जो है वो करोड़ का वाचक, संख्या का वाचक नहीं। तब कोटि शब्द किसका वाचक? तब कोटि शब्द है, आप बोलते हो ये बड़ी उत्तम कोटि का व्यक्ति है, तो कोटि शब्द क्या है? श्रेष्ठता का वाचक। ये तैतीस श्रेष्ठ देवता, और आप सुनते ही वृदारण्य को प्रश्न, एक देवता फिर डेढ़ देवता रई प्राण आदि को लेकर के, फिर तीन देवता और फिर तीन से तैतीस देवता, उन्हीं तैतीस को लेकर के फिर इंद्रियगत आदि जो है अवयवगत देवताओं को भी ग्रहण कर लिया गया। तो मुख्य देवता जो है श्रेष्ठ देवता कौन बतलाए? तैतीस श्रेष्ठ के अंतर्गत। तो ये तैतीस देवताओं का संकेत, इसलिए यहां पर संकेत करते हैं, है तो वो एक एको देवा, लेकिन वही देव जो है उपाधि भेद से, और वही क्या है? मित्र है। वही क्या है? मित्र। क्यों? आंख में जो रोशनी है वो किसको लेकर के? आपको आंख की रोशनी है, आंख तो बेचारी इतनी लाचार है कि आंख जब भी देखती है तो उसे सहयोगी चाहिए, बगैर सहयोग के देखने में समर्थ। तो भौतिक प्रकाश उसे चाहिए, या तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं तो चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, चंद्रमा का प्रकाश नहीं तो विद्युत का प्रकाश चाहिए, विद्युत का प्रकाश नहीं तो अग्नि का प्रकाश चाहिए, तभी देखने में आंख समर्थ होती। लेकिन फिर भी ये उपाधि कर, उस आंख को भी ज्योति देने वाली कौन है? यदि चेतना अंदर से ही न हो तो क्या आंख देखने में समर्थ होगी? कान सुनने में समर्थ होगा? नासिका सूंघने में समर्थ होगी? कोई भी अवयव जो है ये क्रिया करने में समर्थ नहीं। देव तो एक है लेकिन वही उपाधि भेद से तत्तद कार्य करता है, इसलिए उसे जो है मित्र शब्द से भी कहते हैं। तो मित्र वास्तव में कौन है? तो ये भी संकेत करें, तो वही मित्र है, तो वही मित्र रूप से हमारे लिए प्रकट होता, तो मित्र भी एक उपाधि हो गई, द्वैत आ गया। तो मित्र भी कौन है? वही है। तो ओम जो है वही मित्र है, इसलिए कहा वह जो मित्र है, या जिसको हम अवयवगत या इंद्रियगत देवता मान लेते उसे भी स्वीकार कर लो, तो वहां पर भी प्रकाश करने वाला वही है, इसलिए कहा मित्र शंग। वह जो मित्र है वह मित्र रूपी देवता क्या करे? शंग हमारे लिए सुख करे, है ना, अर्थात समन करे, हमारे दुर्तों को दूर करे, अर्थात हमारे दुख को दूर करे और सुख की प्राप्ति कराए। दुख दूर करने का मतलब क्या है? दुख दूर इसीलिए चाहते कि सुख चाहिए, तो दुख को दूर करे और सुख की प्राप्ति कराए, इसलिए संकेत किया ओम सन्नो मित्र। और ऐसे ही कहा शम वरुण, क्या कहा? वरुण, तो वरुण देवता भी बतला दिए, जलादि के देवता, इंद्रिगत भी कह दिया, वो भी अर्थ है।
लेकिन ये वरुण

0: कौन है? तो वही ओ। क्या है? तो वरुण शब्द का अर्थ क्या है? ब्री वर्णे अर्थ में धातु से ही वरुण शब्द बनता। तो वर्ण करने योग्य कौन है? जिसका वर्ण करने से है? क्या होगा? का लाभ होगा। क्या लाभ होगा? तो श्रुति क्या कहती? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या। वो बल देगा वरुण, हमें वो बल देगा। तो वह बल देने वाला भी कौन है? तो कहने लगे भाई, तो ऐसे उस वरुण से कहा कि जो वर्ण करने योग्य है ऋणी धातु किसी को लेकर के, तो उसका हम जड़ कर। तो वर्ण शब्द का अर्थ बतलाते हुए और संकेत करते हैं, चयन करना, चुनना। क्या बतलाया? चयन करना, चुनना। अब कैसे चयन करना, कैसे चुनना? तो इसके लिए न्याय है, नीर चीर विवेक। कौन है? हंस। तो हंस क्षीर न्याय बोला जाता। क्या बोला जाता? हंसक क्षीर न्याय। तो हंसक क्षीर न्याय के द्वारा वर्ण करना, चुनना। तो हंस क्या करता? हंस करता है अपनी चंचू को मिश्रित उस पदार्थ में जिसमें जल भी है और जिसमें दूध का अंश भी है, उसमें क्या करता? तो अपनी चंचू को डाल देता है। और चंचू को डाल देता है तो क्या हो जाता? पृथक्करण हो जाता। वो पनीर अलग हो जाता है जो दूध का अंश है, और पानी का अंश है वो अलग हो जाता। तो हंस क्या करता? चुन लेता, ग्रहण कर लेता। किसको ग्रहण करता? दूध के भाग को ग्रहण कर लेता है, पानी भाग को छोड़ देता। तो इसलिए यहां वरुण शब्द का संकेत किया, जो वर्ण हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि जिसके द्वारा हम जो है चयन करने में समर्थ हो जाए, चयन करने का हमें बल मिले। जैसे ये कार्य करने में वरुण समर्थ है, तो ऐसे ही वो वरुण देव जो है हमारे लिए क्या करें, वो बल हमें दें जिससे हम चयन करने में समर्थ हो जाए। अभी क्या है, हम भी जानते हैं आत्मा अनात्मा। आत्मा भी दुख रूप नहीं है, और वास्तविकता ये है कि अनात्मा भी दुख रूप नहीं। दुख रूप कौन है? तो दोनों की तादात्म्यता। अब उस तादात्म्यता का यदि निराकरण कर दिया जाए, विवेक कर दिया जाए, और विवेक करके वह बल हमारे अंदर आ जाए कि हम उसके चुन लें, किसको? जो सुख स्वरूप है। और ऐसे जब चुने तो अनात्मा में तो सुख कभी है ही नहीं। सुख कब भाषित होता? तो आत्मा के संसर्ग संबंध से। तो ऐसे उसको ग्रहण कराने में समर्थ कौन है? तो कहा वरुण। और जब वरुण ऐसा करते, इसलिए कहा शं शमन कर, हमारे जो है उन दुर्तों को हटा जो हम चयन करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो ऐसी हमें मेधा दे, ऐसी हमें बुद्धि दे, ऐसी बुद्धि रूपी हमें चंचू दे कि जिस चंचू के द्वारा हम क्या कर सकें, जैसे वो हंस उसका विवेक कर लेता है। लेकिन विवेक कब कर पाता है? क्योंकि हंस की चंचू में विशेषता है। वो विशेषता क्या है? उसकी चंचू में अम्ल है, और जैसे ही वो चंचू को डालता है तो उसके अम्लीय रस से और दूध पृथक पृथक हो जाता। जैसे नींबू को डाल देते हो तो क्या होता? दूध फट जाता। तो वहां तो इधर उसमें स्वर नहीं है मकार में, लेकिन यहां पर ले लो स्वरयुक्त, तो अमल की अम्ल की जगह पे अमल कर लो। माने वो अमलता, वो आचरण हमारे जीवन में, वह सामर्थ्य वह हमें को दे दे कि हमारे जीवन में वो आचरण आ जाए, वो बल आ जाए कि जिससे हम विवेक करते हुए और जो सद है उसका ग्रहण कर सकें और असद है उसका त्याग कर सकें। और ये जब कर लेंगे तो हमारे लिए सुख की प्राप्ति हो जाएगी और दुख की निवृत्ति। इसलिए संकेत किया सम वरुणा, हे वरुण क्या करो? तो वरुण शब्द से उसे संकेत कर दिया कि उसी ओम को वो वरुण जो है हमारे लिए शमन करे, अर्थात हमारे में ऐसी सामर्थ्य दे और जो हमारी उस सामर्थ्य के अवरोधक हैं, विघ्न हैं, उन विघ्नों को दूर कर दे। ऐसा संकेत करते हुए आगे पुनः संकेत किया सन्नो भवत्वर्यमा। हाँ? तो सन्नो भवत्वर्यमा समय हो गया, तो इसकी चर्चा कल करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। Dear listeners of Shaivam.org Radio, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Upar. समझ गए, इसीलिए उनका नाम उद्गीत रखा, ऋषि लोग उद्गीत का प्रयोग करते थे। हाँ, इसका ध्वनि जहां तक जाएगा वहां सब अमंगल हट जाएगा। तो उद्गीत का हो, प्रणव का हो, ओंकार का हो, एक ही बात है। तो जो ऋषि जिस रूप में इनके साधना किया है, साधन करके साक्षात्कार किया है, वो ऋषि ने उसका नाम ऐसे ही रखा है। तो स्वदेहम अरण्यम कृत्वा प्राणवम स उत्तर अरण्यम, आपने देह क्या वो अरण्य, मंथन करने के लिए दो लकड़ी चाहिए, आधा माने नीचे का अरण्य लकड़ी और ऊपर का सौठा, छोटा समझते हैं ना, दही मंथन करते देखा नहीं देखा होगा, घर में बनाते दही कि नहीं, मंथन करते ना, तो घर में जो है ना आजकल घी निकालने के लिए मक्खन से तो मंथन करते हैं। तो स्वभाव उसी के नीचे का अरण्य की जगह में अपना शरीर समझ लेना, उत्तर अरण्य के जगह में प्राण समझना, प्राणवम से उत्तर अरण्य को क्या करना, मंथन किया ध्यान, ध्यान रूपी मंथन के द्वारा। तो ध्यान रूपी मंथन से कौन सा मक्खन निकलेगा, आत्मा रूपी ज्ञान रूपी मक्खन प्रकट होगा। तो ज्ञान रूपी मक्खन पिलाओगे पियोगे तो क्या होगा, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहां से प्रकट होगा, मंथन से, किसके मंथन से, ध्यान निर्मतन अभ्यास। तो ऐसे कहते हम ध्यान कहां करें, तो ये श्रुति बतलाती है अग्नि जत्र अभिमिच्छते, जहां अग्नि मंथन होता और जहां वायु जत्र अविरुद्धते, जहां वायु रुक जाता है। वायु रुक गया तो मतलब क्या हुआ, कुंभक सबने ना, वायु जत्र अविरुद्धते है, अरे यह नहीं समझना, वायु जो एक वायु होता है, देखो अग्नि की प्रेरणा से वायु प्रज्वलित होती है, अग्नि अग्नि होता है पहले बाघ अग्नि, वायु माने अग्नि माने वाक, वाग इंद्रिय, तो वाग इंद्रिय के पीछे कौन आए, प्राण, आगे प्राण के पीछे कौन आए, प्राण के पीछे, अभी समझो इंद्रियभ्य परा ही अर्थ, अर्थभ्य परम मन, मनसस्त पराबुद्धि, बुद्धिर आत्मा महान परम, महत परम अव्यक्तम, अव्यक्ता पुरुष पर, पुरुषान्न परा कंचित सा कष्टा सा परागति, अभी देखो सबसे पर सबसे पहले सबसे पूर्व कौन है? पुरुष है, पुरुष है, पुरुषान्न पराकिंचित, पुरुष से परे कोई नहीं है। सा काष्ठा सा परागत है। अभी पुरुष से उत्तर में कौन है? अब क्रम से आओ, इंद्रिय भी पराई अर्थ है, इंद्रियों के परे कौन है? विषय, सूक्ष्म विषय, याद रखना। इंद्रिय भी पराई अर्थ, अर्थ भी अर्थों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि आत्मा अहंकार, महत्व परम महत्त्व, महत्त्व से परे अहंकार, अहंकार से परे अव्यक्त, अव्यक्त, अव्यक्त से परे पुरुष। आप देखो उत्तर उत्तर जो है ना वो पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ माने तुच्छ होता है, ठीक है, तुच्छ है। तो पूर्व पूर्व के उत्तर उत्तर की अपेक्षा पूर्व पूर्व श्रेष्ठ होगा, उत्कृष्ट होगा, आनी बात। तो सबसे परे कौन है? पूर्व, सबसे पूर्व, सबसे पहले पुरुष हुआ। अब वहां पुरुष में ध्यान लगाओ तो उनके सत्ता से सत्तावान होकर के तुम्हारे तमाम इंद्रिय मन बुद्धि अथवा प्राण आदि सब क्रियाएं कर रही है। इसीलिए मन को कहां लगाना चाहिए? जत्र वायु अभिमिच्छते है, वहां तक पहुंचो। अभी कहते वहां पहुंचने के लिए हमको करना क्या है? तो वायु जो है ये प्राणायाम, क्या करोगे? प्राणायाम, प्राण अपान गतिरुद्ध प्राणायाम परायण, प्राण और अपान के गति को रोकना। तो प्राण, प्राण जो ऊर्ध्व गति करे ऊपर की तरफ जाए, अपान नीचे की तरफ जाते, अब दोनों का संधि कहाँ है? जहां दोनों का संधि है, प्राण ऊपर नहीं जाता है, हाँ नीचे नहीं जाता है, अपान ऊपर नहीं जाता है, जहां से, जहां से अपान ऊपर के अधिकार उसका खत्म हो जाता है अधिकार, और प्राण का नीचे नहीं जाना, और दोनों का जो बीच में उस नाभि उसका जो कुंभक, उसका नाम है कुंभक, समझना, कुंभ माने घड़ा, रेशक पूरक कुंभक, अरे बात, एक कुंभक माने घड़ा। तो घड़ा जब पूर्ण हो जाता है ना तो हिलता जुलता नहीं है, ऐसे कहते तुम्हारे जो है ना प्राण अपान का जो स्थिति हो जाती है, तो प्राण अपान का जो गति स्थिर जहां हो जाती है वहां मन को लगाओ। प्राण और अपान की गति स्थिर हो जाती है, तो स्थिर हो जाती का मतलब ऐसा नहीं दोनों समान हो गया, हाँ समान हो रहा मर जाता आदमी, समझे कि नहीं? क्यों? प्राण और अपान नहीं चले तो ऐसा। तो कहते वायु जत्र अधिरुध्यते, वायु जहां पर जाना रोध हो जाता है, निरोध हो जाता है, सोमो जत्र अतिरिच्यते, सोम माने अमृत, सोम माने सोमरस, सोम माने चंद्रमा, कई बातें आए सोम शब्द अतिरिच्यते है, जहां सोम अधिक होता है तो सोम माने अमृत, और जिसमें सोमरस की अधिकता होती है अर्थात सोमरस पान में जहां आनंद आता है, जहां प्राण लगा मन को लगाने से मन को आनंद आता है, तो वहां पर जाकर के मन को स्थिर करो, मन को स्थिर करो। ये तीन साधन आपको बतलाया ध्यान के, ध्यान के लिए ये तीन साधन बतलाया, याद रखना। हाँ अग्नि बाग इंद्रियम, वायु प्राणायाम, आनी बात, और सोम चंद्रमा ध्यान, जहां ध्यान करोगे, है नी बात। ये तीन बात बता रहे, यह बता रहे आप देखो। अग्निर यत्र इति, अग्निर यत्र अभिमच्छते आधन आधो। देखो अग्नि यज्ञ कर्म, कर्मकांड, हाँ, अग्नि माने जहां हवन आदि किया जाता है। हाँ, अग्नि आधन आदि में अग्नि का जो कथन है ना, स्थित है अग्नि, स्थित अग्नि आधन करते ना, क्योंकि आधन कहाँ से किया जाता है? अग्नि आधन गृहस्थ आश्रम में अग्नि आधन किया जाता है हवन आदि करने के लिए, अनिवार्य। अग्नि आधन माने बोलाना, मंथन करने वाने प्रकट करना। हाँ, ब्रह्मचारी लोग अग्नि मंथन करेगा और गृहस्थ लोग अग्नि आधन कर, माने ब्राह्मण लोग जो अग्निहोत्र आदि करते हैं ना, उनके लिए है। अग्नि आधन करेगा, ले जाएगा, चलो एक दिन पहले यज्ञ करने वाला हो तो यज्ञ करने के लिए एक दिन पहले आपने गर्भवती अग्नि को निमंत्रण देगा। तीन अग्नि है आपके घर में, गर्भवती अग्नि, आवानीय अग्नि, दक्षिणा अग्नि, दक्षिणा अग्नि। तो आवानीय अग्नि ने बुलाना, गर्भवती अग्नि ने गृहवती के अधीन रहना, गृहवती जिसका स्वामी है, घर के स्वामी। तो गर्भवती अग्नि से प्रार्थना करके ले जाया जाता है वो अग्नि को हवन करने के लिए, यज्ञ कुंड में डालने के लिए। उसी अग्नि में उनका हवन किया जाता है और मरने के बाद में यही गर्भवती अग्नि उनको दाह संस्कार करेगा। ना दक्षिण अग्नि यज्ञ कुंड के दक्षिण भाग में रहेगा, हवन करना है ना दक्षिण अग्नि में, वो नहीं है। ये गर्भवती अग्नि क्यों, गृहपति के साथ साथ उसको खत्म कर दिया जाता है, पेट नहीं रखता। आपने देखा होगा अभी उसका प्रतीक है, जब ले जाता है ना एक हंडा ले जाता है अग्नि का, घर से ले जाता है वो, हंडे ले जाते हैं ना, उनका लड़का ले जाता है, तो उनके साथ साथ वो अग्नि समाप्त हो जाता है, नहीं तो अग्नि प्रज्वलित रहती है। आप वो गए केदारनाथ में, गए एक त्रिजुगी नारायण है, त्रिजुगी नारायण वहां तीन युग से अग्नि जल रही है। हाँ, त्रेता द्वापर कली, हाँ त्रेता युग से, द्वापर युग से, इसी के नाम, हाँ उसका नाम है क्या, त्रिजुगी नारायण। जो भी जाता वहां लकड़ी डाल करके आता है, एक बार आने बार, तो आजकल नहीं जाता उधर, क्यों, नीचे से रास्ता चला गया तो उसको जाने के लिए ऊपर होकर के जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। हाँ, अभी हो गया त्रिजुगी नारायण में, अच्छा अच्छा नहीं, पहले तो हम लोग जो पैदल गए थे ना उस समय रास्ता नहीं थी ना, सड़क पर नहीं है, पैदल जाना पड़ता था। तो ऐसी अग्नि है आपका गृहस्थों के घर में अग्नि प्रज्वलित रहता है, जो अग्निहोत्री होते हैं ना ब्राह्मण, वो अग्नि घर में रखता है, सुबह शाम आहुतियां डालते हैं। हाँ, नहीं वो जो अग्नि का, आप शादी करते हैं कि नहीं आप लोग, तो शादी के समय अग्नि प्रज्वलित रखता है कि नहीं वो, हाँ वो जो शादी करते हैं ना अग्नि, अग्नि को प्रदक्षिणा करते हैं और सात जन्मों तक साथ रहने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। अभी एक जन्म में छूट जाता है, क्यों, सात जन्म की बात छोड़ दो, एक जन्म में छूट जाता है। क्यों? अभी वो बंधन मानता नहीं ना, ये सब मान्यता की बात है। ये शास्त्रीय मान्यता जो होगा वो करेगा, नहीं मानेगा तो नहीं करेगा, और क्या है। युग युग की बात है, समय समय की बात है। क्यों नहीं? अग्नि तो ब्राह्मण है। अरे महाराष्ट्र में भी है, दक्षिण में भी है, है ना? हाँ, वो गोकर्ण में है ना। हाँ, वो हाँ गोकर्ण में है, साउथ में। मेरे पास भी एक वो आती है, गोवास है, अभी तक ईश्वर नहीं आया अभी तक। तो उनका पति जो है ना, जब तक रहे तब तक, अभी अभी पति का शरीर छूट गया, वो करता था वो। तो कहने का मतलब ये तो इने गिने होते हैं, इने गिने हैं जो शास्त्रों को मानता है, परलोक को मानता है, धर्म कर्म को मानता है, वो करता है। हाँ, तो क्यों हाय नहीं था, क्या करेगा आप। हाँ चलिए। हाँ, वायुर्जत्र अभि रुध्यते प्रज्ञाधो का वायुर्जत्र, वायु का जो है ना अभिरोध हो जाता है, अभिरोध माने रुक जाते हैं, ऊपर भी नहीं जाए और नीचे भी जाए। ऐसे जगह में ध्यान करो, मन लगाओ। सवित्र प्रेरित शब्द अभिव्यक्तम करोते ही, देखो सविता माने सविता, भगवान सूर्य, सूर्य के द्वारा प्रेरित होकर के जो शब्द करते हैं, कौन? वायु। वायु में कौन सा शब्द है? विशी इति शब्दनम, सी सी सी सी शब्द। आपको आपको मकान अगर इसमें समुद्र के किनारे होगा, जब हवा चलती है खिड़की के बाहर, खिड़की बंद कर देते हो, उसमें तो हवा अंदर आता, देखा कभी? हवा चलती है ना, तो हवा से शब्द होता है कि नहीं? तो वायु में विशीति शब्द नम, अग्नि में बुगुबुगु शब्द, बुगुबुगु शब्द होता है, जल में बुलबुलु शब्द, बुलबुला होते है ना, बुलबुल होता है, आई नहीं बात? हाँ, बुलबुल शब्द। तो हर एक 500 भूतों में शब्द है। क्यों? आकाश 500 भूतों का कारण है। तो आकाश किसको कहते? शब्द गुणकम आकाशम, आकाश शब्द गुण वाला है। तो आकाश का शब्द गुण जो है ना, वायु में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में भी आएगा। पृथ्वी में भी है, पृथ्वी में कौन सा शब्द? कड़कड़ा शब्द, कड़कड़ा शब्द होता है, कड़कड़ा शब्द। इसीलिए कारण जो है ना, कारण गुण कार्य में संसरण होता है। ऐसे हमारे यहाँ परंपरा है, बाप का गुण बेटा में, माँ का गुण बेटी में आया कि नहीं आया देखता है, बाप का सकल सूरत बेटा में आया कि नहीं आया, उसके अंदर वो गुण आया कि नहीं आया, ये देखता है। क्यों? कारण गुण कार्य में संसरण करता है। यानी बात, पृथ्वी का जो गंध गुण है वो घड़ा में आएगा, याद रखना, कार्य है ना घड़ा, मिट्टी से बना हुआ है तो उसमें आएगा ही। कारण गुण कार्य में अनुगमन करता है, अनुसरण करता है। ऐसे आकाश का गुण शब्द, तो शब्द कहाँ आएगा? वायु में। तो वायु में कौन सा शब्द है? विशी की शब्द ना, सी सी सी सी सी से आवाज होता है। वही यह कहते हैं, देखो सविता प्रेरित शब्द अभिव्यक्तम करोते सोमो जत्र, अभी देखो सोमो जत्र दश अभवित्र अभवित्रा पूयमानो अतिरिच्यते तत्र क्रोधो संजायते मनः। देगा, मन कहाँ उत्पन्न होता है। हा सोमो सोमो जत्रा दश अभवित्रात पूयमान दश अभवित सोम क्या का सोमो जत्रा दश अभवित्रात पूयो भवत सोम रस है ना सोम सोम देखा सोमजाग होते देखा नहीं देखा। हमने काशी में देखा ब्राह्मण लोग जो है ना इस सोमजाग कर रहा था। सोम एक लता होती है, लता उसी को निचोड़ करके रस निकालता है, वो रस की आहुति देते हैं। तो कहते हो रस को जो है ना छानते हैं तो उसके अंदर जो दोष है वो दोष निकल जाता है, अपवित्रता निकल जाती है, पवित्र हो जाता है। ये बात है सोमहा सोमो जात्रा दश अपवित्रात, दश अपवित्रात माने दस अपवित्र नहीं है, माने छाननी को दस अपवित्र होते हैं। छानते हैं ना कपड़ा से छानते हैं, आजकल को छाननी आ जाए, पहले वो नहीं था ना कपड़ा से छानते थे कि नहीं। हाँ छानते हैं ना वो पवित्र बनाते हैं ना, शुद्ध करते हैं ना, शुद्ध करते हैं। हाँ जैसे पानी पियो छान करके बोलता है कि नहीं। दश अपवित्र पूयमानो अतिरिच्यते तत्र क्रोधो संजयते मना, तत्र मनः क्रतो तत्र क्रतो माने यज्ञ में मन संजायते। हाँ मन उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता माने मन उसमें लग जाता है। क्यों सोमरस पान करके ब्राह्मण लोग मस्त हो जाता है। माटुंगा में देखा था एक आने का सोमरस लिखा हुआ है, सोमरस लिखा है दुकान में सोमरस। हाँ तो हमने देखा, मैंने सोमरस यहाँ मिलता है पूछ लो कैसे देता है, तो बस पूछा तो सोमरस कहते सराब को सड़ा हुआ रस, सोमरस कहते सड़ा हुआ रस को सोमरस कहते। ये अंगूर को सड़ाते है ना, जौ को सड़ाते, भात को चढ़ाते, गांव में जो है ना भात को सड़ा करके सोमरस बनाता है, गांव में बात को सड़ाता है बोतल में। अच्छा वही तो सोमरस है, सड़ा हुआ रस है सोमरस। जबरदस्त है क्रतो संजय थे मरा कटो जग कर्म में सोम जाग में मन जो है ना क्या करता है। हाँ मन जो है उस यज्ञ कर्म में लगता है, मतलब लगता है नहीं उसमें आनंद आता है। कर्म है, कर्म करने की बात कर रहा है यह, इसका दूसरा अर्थ करेंगे भाष्यकार, वो कल आपको बताएंगे।
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

नमः सर्वभूताय नमः विरूपाय नमः वामनाय नमः नराय नमः लोकपालाय नमः अन्तर्हितात्मने नमः प्रसादाय नमः अभयदाय नमः विभवे नमः पवित्राय नमः महते नमः नियताय नमः नियताश्रयाय नमः स्वयंभुवे नमः सर्वकर्मणे नमः आदये नमः आदिकराय नमः निधये नमः सहस्राक्षाय नमः विशालाक्षाय नमः सोमाय नमः नक्षत्रसाधक

राजोदयाय नमः, कर्त्रे नमः, मृगबाणार्पणाय नमः, घणाय नमः, महातपसे नमः, दीर्घतपसे नमः, अदृश्याय नमः, धनसाधकाय नमः, संवत्सराय नमः, कृताय नमः, मन्त्राय

नमः ऊर्ध्वशायिने नमः नभसे नमः तलाय नमः त्रिजटिने नमः चीरवाससे नमः रुद्राय नमः सेनायै नमः पत्ये नमः विभवे नमः अहोरात्राय नमः नक्ताय नमः तिग्ममन्यवे नमः सुवर्चसाय

महापाशाय नमः, नित्याय नमः, गिरिचराय नमः, अमताय नमः, सहस्रहस्ताय नमः, विजयाय नमः, व्यवसायाय नमः, आनन्दिताय नमः, अमर्षणाय नमः।

नमः नक्षत्र विग्रहाय नमः भावाय नमः निभावाय नमः सर्वतो मुखाय नमः विमोचनाय नमः शरणाय नमः हिरण्यकवचोद्भवाय नमः मेखलायै नमः कृतिरूपाय नमः।

महातेजसे नमः अन्तर्नमः आत्मने नमः मृगालयाय नमः लंबितोष्ठाय नमः निष्ठाय नमः महामायाय नमः पयोनिधये नमः महादन्ताय नमः महादंष्ट्राय नमः महाजिह्वाय नमः महामुखाय नमः महानखाय नमः महोरम्णे नमः महाकेशाय नमः महाजटाय नमः असपत्नाय नमः प्रसादाय नमः प्रत्ययाय नमः गीतसाधकाय नमः प्रस्वदेनाय नमः अश्वनेहाय नमः आदिकाय नमः महामुनये नमः वृषकाय नमः वृषकेतवे नमः अनलाय नमः वायुवाहनाय नमः मण्डलिने नमः मेरुवासाय नमः देववाहनाय नमः अथर्वशीर्षाय नमः सामास्याय नमः सहस्रोर्जितेक्षणाय नमः यजुःपादभुजाय नमः गुह्याय नमः प्रकाशौजसे नमः अमोघार्तप्रसादाय नमः अन्तर्भाव्याय नमः सुदर्शनाय नमः उपहाराय नमः प्रियाय नमः सर्वाय नमः कनकाय नमः काञ्चनस्थिताय नमः नाभये नमः नन्दिकराय नमः हर्म्याय नमः पुष्कराय नमः स्थपतये नमः स्थिताय नमः सर्वशास्त्राय नमः धनाय नमः आद्याय नमः।

नमः परिधायै नमः परिपूजिताय नमः संयोगिने नमः वर्धनाय नमः वृद्धाय नमः घणिकाय नमः गणाधिपाय नमः नित्याय नमः धात्रे नमः सहायाय नमः देवासुरपतये नमः पत्ये नमः युक्ताय नमः युक्तबाहवे नमः सुदेवाय नमः सुपर्वणाय नमः आषाढाय नमः सुषाढाय नमः स्कन्धदाय नमः हरिताय नमः हराय नमः वपुषे नमः आवर्तमानाय नमः अन्याय नमः वपुश्रेष्ठाय नमः महावपुषे नमः शिरसे नमः विमर्शनाय नमः सर्वलक्ष्यलक्षणभूषिताय नमः अक्षयाय नमः रथगीताय नमः सर्वभोगिने नमः महाबलाय नमः साम्नायाय नमः महाम्नायाय नमः तीर्थदेवाय नमः महायशसे नमः निर्जीवाय नमः जीवनाय नमः मन्त्राय नमः सुभगाय नमः बहुकर्कशाय नमः रत्नभूताय नमः रत्नाङ्गाय नमः महार्णवनिपातविदे नमः मूलाय नमः विशालाय नमः अमृताय नमः व्यक्ताव्यक्ताय नमः तपोनिधये नमः आरोहणाय नमः अधिरोहाय नमः शीलधारिणे नमः महातपसे नमः महाकण्ठाय नमः महायोगिने नमः युगाय नमः युगकराय नमः हरये नमः युगरूपाय नमः महारूपाय नमः वहनाय नमः गहनाय नमः नगाय नमः न्यायाय नमः निर्वापणाय नमः आपादाय नमः पण्डिताय नमः अचलोपमाय नमः बहुमालाय नमः महामालाय नमः शिपिविष्टाय नमः सुलोचनाय नमः विस्ताराय नमः लवणाय नमः कूपाय नमः कुसुमाङ्गाय नमः पलोदयाय नमः ऋषभाय नमः वृषभाय नमः

सुधा जाताय नमः, स्वर्गद्वाराय नमः, महाधनुषे नमः, गिरावासाय नमः, विसर्गाय नमः, सर्वलक्षणलक्षविदे नमः, गंधमालिने नमः, भगवते नमः, अनंताय नमः, सर्वलक्षणाय नमः, संतानाय नमः, बहुलाय नमः, बाहवे नमः, सकलाय नमः, सर्वपावनाय नमः, करस्थालिने नमः, कपालिने नमः, ऊर्ध्वसंहननाय नमः, यूने नमः, यंत्रतंत्र सुविख्याताय नमः, लोकाय नमः, सर्वाश्रयाय नमः, मृदवे नमः, मुंडाय नमः, विरूपाय नमः, विकृताय नमः, दंडिने नमः, कुंडिने नमः, विकुर्वणाय नमः, वार्यक्षाय नमः, ककुभाय नमः, वज्रिणे नमः, दीप्ततेजसे नमः, सहस्रपदे नमः, सहस्रमूर्ध्ने नमः, देवेन्द्राय नमः, सर्वदेवमयाय नमः, गुरवे नमः, सहस्रबाहवे नमः, सर्वांगाय नमः, शरण्याय नमः, सर्वलोककृते नमः, पवित्राय नमः, त्रिमधवे नमः, मन्त्राय नमः, कनिष्ठाय नमः, कृष्णपिंगलाय नमः, ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः, शतघ्नाय नमः, शतपाशधृषे नमः, कलायै नमः, काष्ठायै नमः, लवाय नमः, मात्रायै नमः, मुहूर्ताय नमः, अह्ने नमः, क्षपायै नमः, क्षणाय नमः, विश्वक्षेत्रप्रदाय नमः, बीजाय नमः, लिंगाय नमः, आद्याय नमः, निर्मुखाय नमः, सदसते नमः, व्यक्ताय नमः, अव्यक्ताय नमः।

त्रिविष्टपाय नमः, निर्वाणाय नमः, हृदयाय नमः, ब्रह्मलोकाय नमः, परागतये नमः, देवासुर विनिर्मात्रे नमः, देवासुर परायणाय नमः।

महर्षभाय नमः, विबुदाघ्राय नमः, सुराय नमः, श्रेष्ठाय नमः, स्वर्गदेवाय नमः, उत्तमाय नमः, संयुक्ताय नमः, शोभनाय नमः, वक्त्रे नमः, आशाणां प्रभवाय नमः, अव्ययाय नमः, गुरवे नमः, कांताय नमः, निजाय नमः, सर्गाय नमः, पवित्राय नमः।

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் .org ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் .org. ஓம் நம சிவாய.
1: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
2: Maulav Ganga Shashankav, Karacharanatale Sheetalanga Bhujangaha, Vame Bhage Dayardra, Himagiritanaya Chandanam Sarvagatre, Itham Sheetam Prabhutam, Tavakanaka Sabha Nathavodham Kvashaktihi, चित्ते निर्वेद तप्ते यदि भवति नते नित्यवासो मदीये, गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम्, त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्। नमःशिवाय सोमाय सगुणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यंत हेतवे, शक्तिरप्रतिमायस्य ह्यैश्वर्यञ्चापि सर्वगम्, स्वामित्वं च विभुत्वं च ஸ்வபாவம் சம்ப்ரசக்ஷதே, தமஜம் விஸ்வகர்மாணம் சாஸ்வதம் சிவமவ்யயம், மகாதேவம் மகாத்மானம் வ்ரஜாமி சரணம் சிவம். ஸ்ரீமத் க்ஷீரதரங்கிணி தடகதே புண்யே விரிஞ்சே புரே, நித்யம் சந்நிஹிதம் கிலாகலயிதும் க்ஷீராபிஷேகாதரம், ஸ்ரீகாருத்மத வல்லிகா சஹசரம் மார்கே சஹாயம் நிருணாம், ஸ்ரீமத் தீக்ஷித விப்ரதைவதவரம் சஞ்சிந்தயே சங்கரம். ஸ்ரீமத் அப்பைய தீக்ஷிதேந்திர ரசிதஸ்ய கங்காதராஷ்டகஸ்ய த்விதீய ஸ்லோக. ஸ்லோகேஸ்மின் பித்ரோஹ தாரித்ர்யவசாத் பேயக்ஷீராலாபரூபாம் ஆர்த்திமாபத்யமானஸ்ய வியாக்ரபாதசூனோஹ உபமன்யோஹ ஆர்த்திஹந்தாரம் ததிஷ்டப்ரதம் பகவந்தம் ஸ்துவந்தி தீக்ஷிதேந்திராஹ. ஏவம் பவதி ஸ்லோகஹ. க்ஷீரம் ஸ்வாது நிபீய மாதுலு கிரஹே கத்வா ஸ்வகீயம் கிரஹம், க்ஷீராலாப வசேன கின்ன மனசே கோரம் தபஹ குர்வதே, காருண்யாதுபமன்யவே நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் ஆர்த்தத்ராண பராயணஸ்ஸ பகவான் கங்காதரோ மே கதிஹி இதி. அன்வயஹ ஏவம் பவதி. ஸ்வாது க்ஷீரம் மாதுலகிருஹே நிபீய ஸ்வகீயம் கிருஹம் கத்வா க்ஷீராலாப வசேன கின்ன மனசே கோரம் தப குர்வதே உபமன்யவே, யஹ காருண்யாத் நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. ஸ்லோகேஸ்மின் பிரயுக்தஹ ஏகைகோபி சப்தஹ ஸ்ரீ சிவமஹாபுராணாந்தர்கதாயாஹ சப்தம்யாஹ வாயவீய சம்ஹிதாயாஹ பிரதமே பாகே சதுஸ்த்ரிம்ஷத் பஞ்சத்ரிம்ஷத் அத்யாயயோஹ கதிபய ஸ்லோகானாம் சாரஹ. ஸ்ரீ சிவமஹாபுராணாந்தர்கதாயாஹ சப்தம்யாஹ வாயவீய சம்ஹிதாயாஹ பிரதமே பாகே சதுஸ்த்ரிம்ஷத் பஞ்சத்ரிம்ஷத் அத்யாயாப்யாம் பிரதிபாதிதம் உபமன்யு அனுக்ரஹ வ்ருத்தாந்தம் சங்க்ருஹந்தி, கோரம் தபஃ குர்வதே கிண்ண மனசே உபமன்யவே, யஹ காருண்யாத் நிரவதிம் க்ஷீராம்புதிம் தத்தவான் சஹ ஆர்த்தத்ராண பராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி இதி. கோரம் துஷ்கரம் தபஹ குர்வதே தபஹ அனுதிஷ்டதே கிண்ண மனசே, கிண்ணம் சோகாக்ரஸ்தம் மனஹ யஸ்ய தஸ்மை உபமன்யவே, வியாக்ரபாத சூனவே தௌம்யாக்ரஜஸ்ய ச பகவத்யவஹித மனசே இதி யாவத். யஹ இதி வாக்யசேஷ. காருண்யாத் தத்துக்க பிரஹாணேச்சாதஹ நிரவதிம் நிஸ்ஸீமானம் க்ஷீராம்புதிம் க்ஷீரசமுத்ரம் தத்தவான் சஹ பூதபாவனஹ ஆர்த்தத்ராணபராயணஹ பகவான் கங்காதரஹ மே கதிஹி. தத்ர உபமன்யோஹ மனஃக்கேதே ஹேதுமாஹுஹ. ஸ்வாது க்ஷீரம் மாதுலு க்ருஹே நிபீய ஸ்வகீயம் க்ருஹம் கத்வா க்ஷீராலாப வசேன இதி. ಸ್ವಾದು ರಸನೇಂದ್ರಿಯೇಷ್ಟಂ ಕ್ಷೀರಂ ಗವ್ಯಂ ಪಯಃ ಮಾತುಲಗೃಹೆ ಇತ್ಯನೇನ ಮಾತುರ್ಜನ್ಮಗೃಹೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ನಿಪೀಯ ಆಸ್ವಾದ್ಯ ಸ್ವಕೀಯಂ ಗೃಹಂ ಗತ್ವಾ ಇತ್ಯನೇನ ಸ್ವಪಿತುರ್ಗೇಹಮೇತ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಕ್ಷೀರಾಲಾಭವಶೇನ ಕ್ಷೀರಸ್ಯ ಅಹರಃ ಪೇಯಸ್ಯ ಪಯಸಃ ಅಲಾಭಃ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ತಸ್ಯ ವಶಃ ಅಭಿಭವಃ ಕ್ಷೀರಾಲಾಭವಶಃ ತೇನ ಇತಿ ಏವಂ ವರ್ತತೆ ಕಥಾ. ಅಸ್ತಿ ಶಿವಂ ನಾಮ ಶಿವಮಧಿಕೃತ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿಸಹಸ್ರ ಗ್ರಂಥಸಂಖ್ಯಾಕಂ ಚತುರ್ಥಂ ಪುರಾಣಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ತದಂತರ್ಗತಾಯಾಂ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ವಾಯವೀಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ಪಾದ್ಮಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಚ ಶೈವಂ ಭಾಗವತಂ ತಥಾ ಭವಿಷ್ಯಂ ನಾರದೀಯಂ ಚ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮತಃಪರಂ ಆಗ್ನೇಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಂ ಲೈಂಗಂ ವಾರಾಹಮೇವ ಚ ಸ್ಕಾಂದಂ ಚ ವಾಮನಂ ಚೈವ ಕೌರ್ಮಂ ಮಾತ್ಸ್ಯಂ ಚ ಗಾರುಡಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಚೇತಿ ಪುಣ್ಯೋಯಂ ಪುರಾಣಾನಾಮನುಕ್ರಮಃ ತತ್ರ ಶೈವಂ ತುರೀಯಂ ಯತ್ ಶಾರ್ವಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಂ ಇತಿ. ತಸ್ಯ ಭೇದಾಃ ಏವ ಮುಕ್ತಾಃ. ಯದಿದಂ ಶೈವಮಾಖ್ಯಾತಂ ಪುರಾಣಂ ವೇದಸಂಮಿತಂ ತಸ್ಯ ಭೇದಾನ್ ಸಮಾಸೇನ ಬ್ರುವತೋ ಮೇ ನಿಬೋಧತ ಇತಿ. ವ್ಯಾಸೇನ ತತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ ಸಹಸ್ರಕಂ ಶೈವಂ ತತ್ರ ಪುರಾಣಂ ವೈ ಚತುರ್ಥಂ ಸಪ್ತಸಂಹಿತಂ ವಿಧ್ಯೇಶ್ವರಾಖ್ಯಾ ತತ್ರಾದ್ಯಾ ದ್ವಿತೀಯಾ ರುದ್ರಸಂಹಿತ ತೃತೀಯಾ ಶತರುದ್ರಾಖ್ಯಾ ಕೋಟಿರುದ್ರಾ ಚತುರ್ಥಿಕಾ ಪಂಚಮೀ ಕಥಿತಾಚೋಮಾ ಷಷ್ಠೀ ಕೈಲಾಸ ಸಂಹಿತ ಸಪ್ತಮೀ ವಾಯವೀಯಾಖ್ಯಾ ಸಪ್ತೈವಂ ಸಂಹಿತ ಇಹ ಇತಿ. ವಾಯವೀಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಃ ಭೇದಃ ಪುನರುಚ್ಯತೆ. ಚತುಸ್ಸಹಸ್ರಕಂಯತ್ತು ವಾಯವೀಯ ಮುದೀರಿತಂ ತದಿದಂ ವರ್ತಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಾಗದ್ವಯ ಸಮನ್ವಿತಂ ಇತಿ. ಅತ್ರ ಸಪ್ತಮ್ಯಾಂ ವಾಯವೀಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಭಗವತಾ ವಾಯುನಾ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯಸ್ಥೇಭ್ಯಃ ಋಷಿಭ್ಯಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಕಥಾಃ ನಿವೇದಿತಾಃ. ಪುರಾಹಿ ಶೌನಕಾದಯಃ ಮಹರ್ಷಯಃ ಶಿವತತ್ವಂ ಜ್ಞಾತುಕಾಮಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಪ್ರಪೇದಿರೆ. ಸ ಚ ತಾನ್ ಮಹರ್ಷೀನ್ ಸಹಸ್ರವರ್ಷಪರ್ಯಂತಂ ಕ್ರತುಂ ಕಂಚಿತ್ ಅನುತಿಷ್ಠಿತಮಾದಿದೇಶ. ತತ್ಸಮಾಪ್ತೌ ಪಿತಾಮಹ ನಿದೇಶಾತ್ ವಾಯುಭಗವಾನ್ ತತ್ರ ಆವಿರ್ಭೂಯ ಶಿವತತ್ವಂ ತಾನ್ ಋಷೀನುಪದಿಶ್ಯ ತಾನನುಜಗ್ರಾಹ. ಶಿವಾತ್ ವಾಯೋಃ ಉತ್ತಮತ್ವ ಕಥನೇನ ಯಸ್ಯ ವಿಷರಾಜಾಶಿನಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಅಪಕರ್ಷಃ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯೈಃ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ವಚನವಿರುದ್ಧಂ ಕೃತಃ ತಸ್ಯ ಭಗವತೋ ವಿಷಕಂಠಸ್ಯ ಸ್ತುತಿಃ ಪ್ರಥಮೇ ಶ್ಲೋಕೇ ಕೃತ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತೇಂದ್ರೈಃ. ಶಿವಭಕ್ತವರ್ಗೇಣ ಭಗವತಾ ವಾಯುನಾ ಯಸ್ಯ ಗುಣಕಥಾಃ ಶಿವಪುರಾಣೇ ವರ್ಣಿತಾಃ ತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀಪತೇಃ ಸ್ತುತಿಂ ವಿಧಾತುಮೇವಾಯಂ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ಲೋಕಃ ನಿಬದ್ಧಃ ಇತಿ ಪ್ರತೀಯತೆ. ತತ್ರ ಉಪಮನ್ಯುವೃತ್ತಾಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸುಭಿಃ ಮಹರ್ಷಿಭಿಃ ವಾಯುದೇವಂ ಪ್ರತಿಕೃತಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಧೌಮ್ಯಾಗ್ರಜೇನ ಶಿಶುನಾ ಕ್ಷೀರಾರ್ಥಂ ಹಿ ತಪಃ ಕೃತಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವೋ ದತ್ತಃ ತಸ್ಮೈ ದೇವೇನ ಶೂಲಿನಾ ಇತಿ. ತಾನ್ ಪ್ರತಿ ವಾಯುದೇವ ಕೃತಂ ಉತ್ತರಂ ಕದಾಚಿತ್ ಕ್ಷೀರಮತ್ಯಲ್ಪಂ ಪೀತವಾನ್ ಮಾತುಲಾಶ್ರಮೇ ಈಷ್ಯಯಾ ಮಾತುಲಸುತಂ ಸಂತೃಪ್ತ ಕ್ಷೀರಮುತ್ತಮಂ ಪೀತ್ವಾ ಸ್ಥಿತಂ ಯಥಾ ಕಾಮಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ವೈ ಮಾತುಲಾತ್ಮಜಂ ಇತಿ. ಪುನರುಚೇತೆ ತತ್ರೈವ ಉಪಮನ್ಯುರ್ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಿಃ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರೋವಾಚ ಮಾತರಂ ಇತಿ. ಕ್ಷೀರಾಲಾಭವಶೇನ ಖಿನ್ನಮನಸಃ ಉಪಮನ್ಯೋಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಾಃ ಮಾತರ್ಮಾತರ್ ಮಹಾಭಾಗೇ ಮಮ ದೇಹಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಗವ್ಯಂ ಕ್ಷೀರಮತಿಸ್ವಾದು ನಾಲ್ಪಮುಷ್ಣಂ ಪಿಬಾಮ್ಯಹಂ ಇತಿ. ಪುನರುಚ್ಯತೆ ಭಗವಾನ್ ವಾಯುಃ ತಚ್ಛೃತ್ವಾ ಪುತ್ರವಚನಂ ತನ್ಮಾತಾ ಚ ತಪಸ್ವಿನಿ ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಸ್ಯ ಮಹಿಷಿ ದುಃಖಮಾಪತ್ತದಾಚಸ ಉಪಲಾಲ್ಯಾತ ಸುಪ್ರೀತ್ಯ ಪುತ್ರಮಾಲಿಂಗ್ಯ ಸಾದರಂ ದುಃಖಿತಾ ವಿಲಲಾಪಾಥ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ನೈರ್ಧನ್ಯಮಾತ್ಮನಃ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಸ್ಮೃತ್ವಾ ಪುನಃ ಕ್ಷೀರಂ ಉಪಮನ್ಯುಸ್ಸ ಬಾಲಕಃ ದೇಹಿ ದೇಹೀತಿ ತಾಮಾಃ ರುದನ್ಭೂಯೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ತದ್ಧಟಂ ಸಾ ಪರಿಜ್ಞಾಯ ದ್ವಿಜಪತ್ನಿ ತಪಸ್ವಿನಿ शान्तयेतद्धटस्याथ शुभोपाय मरीरचत् उञ्छवृत्त्यार्जितान् बीजान् स्वयं दृष्ट्वा च सा तदा बीजपिष्टमथालोड्य तोयेन कलभाषिणि एह्येहि मम पुत्रेति समपूर्वं ततस्सुतम् आलिङ्ग्यादाय दुःखार्ता प्रददौ कृत्रिमं पयः पीत्वा च कृत्रिमं क्षीरं मात्रा दत्तं स बालकः नैतत्क्षीरमिति प्राह मातरं चातिविह्वलः दुःखिता सा तदा प्राह सम्प्रेक्ष्याघ्रायमूर्धनि सम्मार्ज्य नेत्रे पुत्रस्य कराभ्यां कमलायते इति जनन्युवाच त्वं मातुलगृहे स्वल्पं पीत्वा स्वादुपयश्रितं ज्ञात्वा स्वादु त्वया पीतं तज्जातीयमनुस्मरन् दत्तं न पय इत्युक्त्वा रुदन् दुःखीकरोषि मां प्रसादेन विनाशं भोः पयस्तव न विद्यते पादपङ्कजयोस्तस्य साम्बस्य सगणस्य च भक्त्या समर्पितं यत्तत् कारणं सर्वसम्पदाम् अधुना वसुदोऽस्माभिः महादेवो न पूजितः सकामानां यथा कामं यथोक्तफलदायकः धनान्युद्दिश्य नास्माभिः इतः प्रागर्चितः शिवः अतो दरिद्राः सञ्जाताः वयं तस्मान्नतेपयः इति अनेन यो भक्तः येन भावेन भगवन्तमाराधयति तथैव स भगवान् अनुगृह्णाति तं भक्तम् इति सूचितम् अथ तद्दौर्भाग्यहेतुभूतदुरितशमनार्थं भक्तवत्सलं भगवन्तमेव उपासितुं तन्माता तं शशंसेत्याह विलम्बं मा कृथास्त्वं हि भजसाम्बं सदाशिवं तस्य देवाधिदेवस्य शिवस्य वरदायिनः साक्षान् नमः शिवायेति मन्त्रोऽयं वाचकस्मृतः प्रबलश्च तथा ह्येषः मन्त्रः मन्त्रान्तरादपि सर्वरक्षाक्षमोऽप्येषः नापरः कश्चिदिष्यते तस्मात् मन्त्रान्तरांस्त्यक्त्वा पञ्चाक्षरपरो भव तस्मिन् जिह्वान्तर्गते न किञ्चिदिह दुर्लभम् इति मातुर्गिरमाकर्णयतः उपमन्योः अग्रिमां प्रवृत्तिमाह एवं मात्रा समादिश्य शिवमस्त्वित्युदीर्य च विसृष्टस्तद्वचो मूर्ध्नि कुर्वन्नेव तदा मुनिः तां प्रणम्यैव मुक्त्वा च तपः कर्तुं प्रचक्रमे तमाह च तदा माता शुभं कुर्वन्तु ते सुराः अनुज्ञातस्तया तत्र तपस्तेपे स दुश्चरं हिमवत्पर्वतं प्राप्य वायुभक्षः समाहितः तपसा तस्य विप्रस्य चोपमन्योर्महात्मनः चराचरं च मुनयः प्रदीपितमभूज्जगत् इति एवम् उग्रे तपसि स्थितस्य तस्य उपमन्योः पुरस्तात् भगवान् शिवः प्रादुर्भूय वाञ्छितादप्यधिकं फलं ददौ इत्याह क्षीरार्णवसहस्रं च पीयूषार्णवमेव वा दध्यादेरर्णवांश्चैव घृतोदार्णवमेव च फलार्णवं च बालस्य भक्ष्यभोज्यार्णवं तथा अपूपानां गिरिं चैव दर्शयामास सप्रभुः इति पुनरुच्यते अत्रैव क्षीराब्धिरपि साकारः क्षीरं स्वादुकरे दधत् उपस्थाय ददौ पिण्डीभूतं क्षीरमनश्वरं योगैश्वर्यं सदा तुष्टिं ब्रह्मविद्यामनश्वरां समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानसः इति अथ उपमन्युः निश्चञ्चलां शिवभक्तिं प्रार्थयामास भगवन्तम् इत्याह प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमां दिव्यामव्यभिचारिणीं श्रद्धां देहि महादेव त्वत्सम्बन्धिषु मे तदा स्वदास्यं परमं स्नेहं सान्निध्यं चैव सर्वदा एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षगद्गदयागिरा सतुष्टाव महादेवं उपमन्युर्द्विजोत्तमः देवदेव महादेव शरणागतवत्सल प्रसीदकरुणासिन्धो साम्बशङ्कर सर्वदा इति अथ भगवान् एतदप्यनुगृह्य अन्तर्दधे अनेन कथेयं समाप्ता अनेन च भाषणमिदं समापयामि हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
3: ओम नमः शिवाय
4: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो
3: the 24/7 spiritual channel from shaivam.org.
4: Om Namah Shivaya.

0: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dakshinamurti Stotram, presented by Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om, Om, Om. Sarvagya, Adi Guru Bhagavan, Shankaracharya Virachit, Dakshinamurti Stotra Pero. विचार आरंभ हो रहा है। इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी महाराज के परम शिष्य नृसिंह अवतार सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक लिखी है और उस वार्तिक का नाम है मानसोल्लास। तो इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के विचार के प्रसंग में मानस उल्लास पर भी विचार करते जाएंगे। तो मूल श्लोक दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है, शायद प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट की तरफ से

मूल श्लोकों का, ये 10 श्लोकों का ये फोटोकॉपी पत्रिका आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। आप इस श्लोकों का अभ्यास करें और जब हम इसके पदों पर विचार करने लगेंगे, पदार्थ पर, तो आप एक एक पद के उच्चारण करें, पढ़ें और उसके अर्थ पर चिंतन करें, तो अवश्य ही मुमुक्षुओं को ये बहुत सहायक होगा। परम पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज का ये प्रिय मंगलाचरण श्लोक है। अपने प्रवचनों के आरंभ में हमेशा इस श्लोक का वो मंगलाचरण के रूप में प्रयोग किया करते थे। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदम् श्री दक्षिणा मूर्तये। इदम् नमः, ये मेरा नमस्कार है। किसको? गुरु मूर्तये, जो साक्षात गुरु के रूप में अद्वैत वेदांत के प्रथम आचार्य के रूप में प्रकट हुए, ज्ञानावतार गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति। दक्षिणामूर्ति के बारे में हमने कल संकेत किया था। मुमुक्षु जिज्ञासु श्रद्धालु सनत कुमारों को शास्त्र विधि से गुरु की आवश्यकता पड़ी। यूं तो उनको किसी ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वह नियम और विधि का उल्लंघन करता है तो प्रत्यवाय का भागी बनता है। इस अर्थ में कि सनत कुमार यदि गुरु न करते तो उनको पाप लगता, ऐसा नहीं है, सामाजिक दोष लगता, क्योंकि वह स्वयं स्वरूपतः जन्मतः निवृत्त मार्गी थे, ज्ञानमूर्ति थे। पाप तो उस पर लगता है जिसको कर्म में कर्ता भाव होता है। सनत कुमारों में कर्ता भाव नहीं था, इसलिए उनको इस प्रकार के पाप या प्रत्यवाय की शंका नहीं कर सकते, वो तो मुक्त पुरुष थे। फिर भी सामाजिक एक प्रत्यवाय होता है, वह कि गुरु परंपरा का उच्छेद करने का प्रत्यवाय उनको लगता, तो उसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए सनत कुमारों ने गुरु की जिज्ञासा की और उनकी जिज्ञासा की परिपूर्ति किया भगवान शिव ने। ज्ञानावतार करुणामूर्ति भगवान शिव स्वयं ही बाल रूप में युवा रूप में बटवृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख होकर बैठे और उन पर उनकी श्रद्धा हुई। देखो, महापुरुषों को वो काम करनी चाहिए जिससे जिज्ञासु और मुमुक्षुओं की श्रद्धा बनी रहे। श्रद्धालुओं की श्रद्धा का
उपेक्षा गुरुओं को नहीं करनी चाहिए। उनकी श्रद्धा जिस रूप में, जिस भावना से उनकी श्रद्धा है, उसी रूप में उनके श्रद्धा को आदर करना चाहिए। मुझे महाराज जी ने एक जगह लिखा है, अखंडानंद जी महाराज जी ने प्रवचन में कहा, दृष्टांत के रूप में दिया। कहते हैं एक बहुत सिद्ध महात्मा थे, बड़े ज्ञानी महात्मा थे, और उनके दो चार शिष्य भी थे, और कहीं चातुर्मास करने के लिए किसी शहर में पहुंच गए। श्रद्धालु भक्तों ने आग्रह किया कि महाराज आप यहीं रहें और चातुर्मास में हमें कुछ वेदांत ज्ञान गुण की बात सुनाएं। कहते महात्मा ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा है, हमको कहीं न कहीं बैठना है चातुर्मास में, तुम कहते हो तो यहीं बैठ जाते हैं। तो बैठ गए। एक बार किसी भक्त ने भोजन के लिए बुलाया, वो भी वहां का नामी भक्त था उस शहर का। महाराज हमारी इच्छा है, हमारी श्रद्धा है, हमारी इच्छा है कि आप हमारे घर में भोजन के लिए पधारे। महात्मा ने कहा कि ठीक है, हमको भोजन तो करनी ही है, चाहे प्रेमपुरी की करें चाहे आपके घर की करें, भोजन तो करनी ही है, लेकिन हमारे साथ दो चार और शिष्य भी हैं। बोले कोई बात नहीं, आप मंडली की सहित आए, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ईश्वर की कृपा से सब कुछ व्यवस्था है। महात्मा पहुंचे, शिष्य सहित भोजन किया, भोजन बहुत बढ़िया था। भोजन के पश्चात उस भक्त ने महात्माओं को और उन महाराज को, सभी को अपनी क्षमता अनुसार खूब दक्षिणा, खूब सामग्री, संतों को क्या चाहिए, दंड कमंडलु, कौपीन, कंथा, यही तो है संतों की संपत्ति। तो उसने श्रद्धा अनुसार दक्षिणा भी दी महात्माओं को खूब, समर्थ था, वैभव से संपन्न था, कपड़े लत्ते दंड कमंडलु बहुत कुछ दिया एक एक महात्माओं को। महात्मा आपस में विचार करने लगे, महात्मा की तरफ, गुरु की तरफ देखने लगे। महात्मा ने कहा बेटा क्या देखते, उठाओ ले चलो। तो सब कुछ उठा के लेके आए। तो महात्मा, गुरुजी तो खाना खा के आए थे, वो आराम करने के लिए चले गए, और वो जो शिष्य लोग थे आपस में बैठकर वार्ता करने लगे, विचार करने लगे। देखो ये कैसा धन का अभिमानी है, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकले हैं, त्यागी हैं, और ऐसे विरक्त त्यागी को ये ऐसा समझता है कि ये परम विलासी हैं, भोगी हैं, इनको सब कुछ चाहिए, और इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि इन सबको तो हम छोड़ के निकले हैं और ये दे रहा है, हमारे त्याग पर इसको विश्वास नहीं है। और हमारे गुरुजी भी फिर कैसे है, देखो लेके चलो कहते हैं, ये सब छोड़ दो, यहीं कह देना चाहिए था, हम लेके आ गए, अब इसका क्या करेंगे, पहले से एक डंडा है, दूसरा डंडा क्या करेंगे, पहले से ही एक कमंडलू है, दूसरा कमंडलू आ गया, उसका क्या करेंगे, पहले से ही एक जोड़ी वस्त्र है तो ये दूसरे जोड़ी वस्त्र आ गए, इसका क्या करेंगे। आपस में वह वार्ता करने लग गए, तो महात्मा सुन रहे थे। महात्मा ने कहा क्या बात है महात्माओं, तुम लोग सो नहीं रहे हो, क्या चर्चा कर रहे हो। तो कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। महात्मा ने कहा कुछ तो कर रहे हो, बोलो क्या कर रहे हो। महाराज ये चीज है, हम इस तरह सब कुछ त्याग करके छोड़ छाड़ कर निकले हैं, और इस हमारी त्याग का यह कुछ महत्व नहीं समझ रहा है, और ये सारा संपत्ति दे रहा है, अब यह क्या करें बोलिए। और आपने कहा कि ले चलो,
अब इसका क्या करेंगे, एक कमंडोलो की जगह दो कमंडोलो, एक डंडे की जगह दो डंडे, एक जोड़ी वस्त्र की जगह दो जोड़ी वस्त्र, एक छाता की जगह दूसरा छाता, एक खड़ाऊं की जगह दूसरे खड़ाऊं। महात्मा ने कहा कि अरे क्यों परेशान होते हो, रखे रहो पड़े रहो, कोई और दूसरा महात्मा है जिसके पास कमंडोलो नहीं है उनको दे देना, कोई दूसरा महात्मा आएगा जिसके पास एक जोड़ी वस्त्र नहीं है उनको दे देना, कोई महात्मा आएगा जिसके पास दंड नहीं है उनको दंड दे देना, वो कोई महात्मा आएगा जिनके पास छत्री नहीं है छत्री दे देना। क्यों परेशान होते हो, सामान पड़ा रहने दो, जो आएगा जिसके काम में आएगा दे देना। बोले महाराज जब देना ही था तो पहले क्यों लिया, लेना ही नहीं चाहिए था, आपने कहा ले चलो। तो महाराज जी ने दृष्टांत दिया है, कहते देखो वो पैसे वाला व्यक्ति है, वो तुम्हारी त्याग तपस्या संत साधु के प्रति परम श्रद्धा रखता है, और तुम्हारी त्याग पर श्रद्धा रख के ही वो ये सब कर रहा है, क्योंकि वह वैभव में संपत्ति में खेलता है, इसलिए उसके अलावा श्रद्धा व्यक्त करने को दूसरे विकल्प सोचता ही नहीं है। वो पैसों में खेलता है, इसलिए पैसा देने से महात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, हमको कृपा मिल जाएगा, क्यों उसको तो वही है। तो इसीलिए उसकी श्रद्धा जो तुम्हारी प्रति थी, उस श्रद्धा को सामग्री के माध्यम से उसने व्यक्त की है। यदि तुम लोग उसको वहीं छोड़कर आ जाते तो उसके श्रद्धा में आघात पहुंचती, मैंने दिया और महात्माओं ने लिया नहीं, तिरस्कार कर दिया, तो उसकी श्रद्धा बनी रहनी चाहिए, नहीं तो फिर कल किसी आवश्यक महात्माओं को कोई सामान की आवश्यकता पड़ी वो देगा नहीं फिर, क्योंकि महात्मा को क्या जरूरत है कहेगा वो। तो इसलिए उसकी श्रद्धा की रक्षा करना बहुत जरूरी था, इसलिए तुम लोग को हमने कहा उठा के ले आओ, अब तुम्हें आवश्यकता है रखो, नहीं है तो बांट दो दूसरे साधु को दे दो, खत्म हो गई बात, उसकी श्रद्धा तो बची रही सुरक्षित रही। महात्मा ने कहा कि बहुत अच्छी दृष्टि है, हमारी दृष्टि गई नहीं वहां पर। तब कुछ दिन के बाद फिर दूसरा संत ने भोजन के लिए बुला लिया, माने भक्त ने, तो गए महात्मा मंडली सहित, भोजन किया, बड़ा प्रेम से भोजन किया। जब चलने लगे तो उसने एक पैसा भी दक्षिणा नहीं दी उसने, उस भक्त ने दक्षिणा के एक पैसा भी नहीं दिया, सामान की तो बात ही छोड़ दो, दंड कमंडलो कौपीन खड़ाऊं छाता छत्री कुछ नहीं, दक्षिणा भी नहीं दी। वापस आ गए कुटिया में, महात्मा तो गुरुजी थे वो तो सो गए, और शिष्य इधर फिर चर्चा करने लग गए, क्या बात है भे? देखने में तो लगता है घर इतना बड़ा है, वैभव क्या है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने नौकर हैं, इतने चाकर हैं, सब कुछ है, और भोजन करने के लिए बुलाया, खाली भोजन करा दिया, एक पैसा भी नहीं दिया, कैसा आदमी है, कंजूस महाकंजूस। तो बात करने लगे तो महात्मा को फिर पता चला कि अरे भाई क्या बात है, तुम लोग सोए नहीं हो। तो बोले महाराज देखिए ऐसा है, ठीक तो कर रहा है वो तुम्हारी त्याग तपस्या अपरिग्रह का आदर करता है, वो ये डर रहा है कि इतने बड़े त्यागी इतने अपरिग्रही, यदि मैं इनको 100 रुपया दे दूं तो उस साधु को रात भर निद्रा नहीं आए कि 100 रुपया मैं क्या करूं, तो तुम्हारी त्याग का ही वो सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है। देखो तो हम तो वही हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, अखंडानंद जी महाराज दृष्टांत देते हैं, साधु को इसी तरह रहना चाहिए है? वो जो कर रहा है वो श्रद्धा, उसकी श्रद्धा की रक्षा। तुम यदि पैसा मांगने लग जाते, अरे चलते समय में भोजन कराया और दक्षिणा नहीं दिया कहते, तो फिर वो तुम्हारी श्रद्धा पर आघात होता है, ये कैसे लोभी साधु हैं, इनको पैसे की क्या आवश्यकता, खाना था भोजन कर लिया हो गया, वैसे क्या आवश्यकता, साधु होकर दक्षिणा पैसा मांगते हैं कैसे लोभी है, उसकी श्रद्धा खंडित हो जाती और तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं की।
तो देकर भी वो श्रद्धा ही कर रहा है, न देकर भी तुम्हारी त्याग का आदर और श्रद्धा ही कर रहा है। यदि ये न होती तो भोजन के लिए न बुलाता, बड़े प्रेम से भोजन कराया। तो ये दृष्टांत से यही समझना चाहिए कि महापुरुषों को किसी की भी श्रद्धा, जिस रूप में वो श्रद्धा कर रहा है, उसकी श्रद्धा का हर हालत में रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी श्रद्धा को तोड़ दो, मैं विरक्त हूं, मैं त्यागी हूं, मुझे पैसा देकर मेरे विरक्ति मेरी त्यागपना का खंडन कर रहा है, मुझे लोभी और भोगी समझता है, ये भी उसकी श्रद्धा का हनन होगा। तो भगवान शिव, दक्षिणामूर्ति शिव, ये वह गुरु हैं जो जिस रूप में श्रद्धा करना चाहता है वह उसी रूप में उसकी श्रद्धा की रक्षा करते हैं। वह गुरु चाहते हैं, लेकिन गुरु कैसा चाहते हैं कि देखने में वह त्यागी हो, विरक्त हो, असंग हो, अपरिग्रही हो, अनासक्त हो, निष्प्रपंची हो। तो भगवान शिव को वैसा ही बनकर सनत कुमारों के सामने आना पड़ा और आए, और उनकी श्रद्धा का सम्मान हुआ, रक्षा हुई और बैठ गए वहीं। गुरु बोल नहीं रहे हैं, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, और उन्होंने खाली संकेत करके चिन मुद्रा भद्रा मुद्रा दक्षिणामूर्ति में यो भद्रया मुद्रया करके उसका संकेत किया है। उतने से उनको ज्ञान हुआ, बोध हो गया, गुरु मान लिए। अब देखो उपनिषद का प्रसंग है, वही नारद जी जिन्होंने पहले सनत कुमारों को गुरु करने के लिए प्रेरित किया, और नारद जी की प्रेरणा से सनत कुमारों ने गुरु का अनुसंधान किया और दक्षिणामूर्ति भगवान शिव गुरु के रूप में उनको प्राप्त हुई। कालांतर में वही नारद जी फिर उन्हीं सनत कुमारों के पास जाते हैं और कहते हैं अधि ही भगवन, हे भगवन मुझे कुछ उपदेश कर लीजिए, मैं सारे वेद वेदांग आदियों को जानता हूं, शिक्षा निरुक्ता आदि सब कुछ जानता हूं, पद और पदार्थ सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैंने सुना है उपनिषदों में तरति शोकम आत्मवित्, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति समस्त शोक मोह से वह तर जाता है। मैं सारे उपनिषद वेद वेदांग आदियों को सबको अच्छी तरह जानता हूं, पद पदार्थों को जानता हूं, फिर भी मेरा शोक मोह निवृत्त नहीं हुआ। इसका मतलब है कि मैं शास्त्र को परोक्ष माने आत्मा को ब्रह्म को परोक्ष रूप में तो जानता हूं, अपरोक्ष रूप में नहीं जान रहा हूं। तो वो आत्मा अपरोक्ष रूप में ज्ञात हो और शोक मोह से निवृत्ति हो तो मुझे उसका कोई उपदेश करिए। तब वही सनत कुमारों ने नारद जी को फिर सद्विद्या का उपदेश किया। छांदोग्य उपनिषद में नारद सनत कुमार का संवाद है। तो क्योंकि नारद जी को मालूम है कि यही मेरे शोक मोह को निवृत्त कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जब गुरु नहीं किया है तो फिर मैं ऐसे को गुरु में कैसे बनाऊं, तो परंपरा होनी चाहिए। तब उनको पता चला कि दक्षिणामूर्ति को इन्होंने गुरु बना लिया है, तो अब मुझे इनको गुरु बनाना कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शास्त्र मर्यादा है, गुरु परंपरा है। संततमातनोस्मि अस्मद गुरुम संततमानतोस्मि। तो ये प्रसंग है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का। और सुरेश्वराचार्य जी की वार्तिक है, मानसोल्लास वार्तिक। सुरेश्वराचार्य जी ने अपनी वार्तिक लिखने के क्रम में मंगलाचरण के रूप में पहला श्लोक लिखा है, बड़ा सुंदर है ये। मंगलम दिशतु मे विनायको,

0: विनायक, नायक और विनायक। हम लोग सब क्या हैं? नायक हैं। या तो हम किसी और के ऊपर शासन करते हैं या हमारे ऊपर कोई और शासन करता है, इसलिए हम नायक हैं, हम लोग विनायक नहीं हैं। हम नौकर के ऊपर शासन करते हैं, बच्चों के ऊपर शासन करते हैं, और या फिर मां बाप के द्वारा शासित हैं, पति पत्नियों के द्वारा शासित हैं, और कुछ नहीं, अपने से ज्यादा जो बॉस है उसके द्वारा तो शासित है ही है। तो हम लोग सब नायक हैं, भगवान गणेश विनायक हैं। उनके ऊपर, भगवान गणेश के ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह शासन करने वाला कोई नहीं है तो अनुशासित हीन है, ऐसा नहीं है। यही तो उनकी विनायकता है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया, उसके ऊपर और कोई नहीं है, इसका मतलब वह स्वच्छंद हो जावे, ये तो मानवीय गुण है, दानवीय गुण है। तो गुण क्या कहें? दानवीय गुण को तो हम लोग की दृष्टि से दुर्गुण ही कहा जाए। जो जितना बड़ा है वह उतने ही मर्यादा और अनुशासन में रहना चाहिए। विनायक, विघ्न विनाशक होने के कारण वो विनायक है। विघ्नों का नायक है और खुद विनायक है। तो ऐसे जो विनायक हैं, विघ्न ध्वंस, विघ्ननाशक, विघ्न ध्वंसक, मंगलम दिशतु मैं, मेरे लिए वो मंगलकारक हों, मंगल का उपदेशक बने, संवाहक बने। तो पहला तो गणेश जी के बारे में उन्होंने मंगलाचरण में गणेश जी का स्मरण किया, क्योंकि मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक, ये तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि में इसका संकेत किया है, अध्यास भाष्य में। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां कोई नमस्कारात्मक नहीं है, लेकिन ब्रह्मसूत्र बादरायण जी ने सीधे ही, कोई भूमिका नहीं, कोई मंगलाचरण नहीं, किसी परमात्मा को नमस्कार आदि नहीं किया, और सीधे ही सूत्र की रचना कर दी कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बोले तुमने देखा नहीं, अथ ये शब्द का जो प्रयोग किया यही तो मंगलाचरण है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम वित्त विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका भुवो। सृष्टि के आरंभ में दो शब्द क्रमशः प्रकट हुए परमात्मा के श्वासोच्छ्वास से। सबसे पहला शब्द प्रयोग हुआ, अक्षर प्रयोग हुआ, ओम प्रणव। उसके तुरंत बाद अथ ये शब्द प्रयोग हुआ। तो अतः ओम और अथ ये सृष्टि के आदि के परमात्मा के ध्वनि हैं, अतः दोनों ही मंगलवाची हैं, मंगलकारक हैं।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org रेडियो, द साइज ऑफ अवर ऑडियो कलेक्शन कंटिन्यूज टू ग्रो डे बाय डे। वी नाउ होस्ट मोर देन 25,000 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai Music and Thirumurai Discourses will be broadcast on Thirunariya Tamilosai. Philosophical Discourses and Periyapuranam Lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Ilayankudi Maranayanar Puranam, presented by Sri Singapore Shankaranarayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, aaj hum sunenge aur ek Nayanmar Ilayankudi Marar ki kahani. यह तमिलनाडु में रामनाथपुरम जिले के क्षेत्र इलयानकुड़ी के निवासी इलयानकुड़ी मारर एक समृद्ध कृषक थे। माटी में हल चलाकर वे अमृतमय अन्न पैदा करते थे। उनके परिश्रम से खेती सोना उगलती थी। इलयानकुड़ी मारर शिव भक्तों के दास थे। प्रत्येक पथिक में उन्हें शिव ही दिखाई देते थे। पथिक को आदर समेत आमंत्रित करते थे और उनका सम्मान पूर्वक आसन प्रदान कर विविध व्यंजनों से युक्त भोजन करवाना ही उनकी साधना थी। इस भांति इलयानकुड़ी मारर के यहाँ सदाव्रत खुला रहता था। इलयानकुड़ी मारर के महत्व को उजागर करने के लिए तिल्ले के स्वामी शिव ने शनै शनै यानी कि धीरे धीरे से उनकी धन संप्रदा चिति को निर्धनता में बदल दिया। यह शिव की ही परीक्षा थी। कालांतर में उनकी समस्त संपत्ति समाप्त हो गई, पर उनकी अतिथि सेवा की भावना अभी भी दृढ़ ही थी। यहाँ तक कि वो नितांत कंगाल हो गए। वर्षा ऋतु ऐसा समय भी आया कि एक दिन वर्षा ऋतु थी, घर में अन्न का दाना भी नहीं था। पति पत्नी दोनों निराहार ही सो गए थे। उस समय शिव एक तपस्वी का रूप धारण कर इलयानकुड़ी मारर के घर पहुंचे। इलयानकुड़ी मारर ने उनका स्वागत किया, उन्हें आदरपूर्वक अपने घर में बिठाया और उनके शरीर को स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर विश्राम करने को कहा। अतिथि को भोजन देने के लिए घर में एक दाना भी नहीं था। घर में कुछ भी भोज्य पदार्थ नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी से परामर्श किया और रात्रि के अंधकार में भी सुप्रयास कुछ दिन पूर्व बोए बीजों को बटोर कर लाए, छप्पर की लकड़ी काटकर ईंधन जुटाया। वर्षा में भीगते हुए ही घर के पिछवाड़े में उग रहे आधे उगे साग को अंधेरे में टटोल टटोल कर उखाड़ कर ले आए। साग को उखाड़ना मानो पुनर्जन्म रूपी पौध की समूल उखाड़ना था। पत्नी ने अन्न और साग का स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया। अतिथि को भोजन खिलाने के लिए बरामदे में आने पर इलयानकुड़ी मारर ने देखा कि एक अद्भुत ज्योति थी। ज्योतिपुंज से एक स्वर उठा, वत्स, मैं प्रसन्न हूं। जीव मात्र की भूख शांत करने में तुम सदैव तत्पर हो। अब चलो मेरे संग। और प्रभु ने सपत्नी अपने दिव्य लोक में ले गए। चकिलर ने इस कथा की महत्व को अद्भुत ढंग से अभिव्यक्त किया है। यदि मारर ने केवल भस्मधारी शिव भक्तों को ही अन्न खिलाया होता तो वह धार्मिक निष्ठा का परिचय होता। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का परिचय उनके धार्मिक भेदभाव को त्याग कर मानव मात्र की भूख मिटाने के नियम से चलता है, चिक्किलर का कथन है। चिक्किलर जो कि तमिलनाडु के बहुत बड़े कवि थे, उनका कथन है। राह चलते हर पथिक को शिव का भक्त मानकर मारर अपने घर ले जाते थे और बड़े प्रेम से भोजन कराते थे। तमिलनाडु में प्राचीन काल से ही अन्नदान को महादान माना जाता है। संगम साहित्य की पंक्ति बभुक्षार रोग का समर्थक चिकित्सक और पंच महाकाव्यों में प्रसिद्ध पंक्ति अन्नदाता जीवनदाता है इसी भाव को दर्शाती है। कालांतर में धर्म और संप्रदायों की विभिन्नता होते हुए भी लोग कम से कम अपने धर्म या संप्रदाय के मानने वालों को अन्नदान करना अपना कर्तव्य मानते थे, लेकिन इलयानकुड़ी मारर ने बिना अपने धर्म या परम या पराया धर्म न जानते हुए भी हर व्यक्ति की भूख को मिटाने का प्रयास किया। इसीलिए वह कहते हैं प्रभु के समस्त भक्त आएं और अन्न ग्रहण करें। इससे यही शिक्षा मिलती है कि धर्म और संप्रदाय के भेदभाव को भूलकर मानवता को अन्न या भोजन खिलाना ही उत्तम संस्कार है। ओम नमः शिवाय।
4: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
5: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org. The next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari, presented by Adiguru Sankaracharya Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: ताही विधि राखिए ताही विधि रहिए हैं, चाहे झोपड़ी में बास हो हैं, क्या है वो, चाहे महलों में बास हो चाहे झोपड़ी में बास हो, लेकिन जब परमात्मा झोपड़ी में तुमको भेजता है तब परमात्मा से तुम नाराज हो जाते हो, भजन तो गा देते हो भजन तो गा देते हो भगवान के सामने, हे भगवान चाहे तुम महल में रख चाहे झोपड़ी में रख, तुम्हें जहां इच्छा हो वहां रखो, मुझे झोपड़ी में रखकर तुमको आनंद आ रहा हो, मैं झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं, समझे कि नहीं, मुझे महल में रखकर तुम्हें आनंद आ रहा हो, मैं महल में रहने को तैयार हूं, लेकिन हम अपने आप को भगवान से भी बड़े मान लेते हैं ना, तो भगवान से बड़े किस लिए मानते हैं, हमको महल में रहने पर ही आनंद आएगा इसलिए हम महल में ही रहेंगे, झोपड़े में तो किसी हालत में नहीं जाएंगे महाराज, हमको महल ही चाहिए झोपड़ी नहीं, परमात्मा कहते हैं तुम्हें झोपड़ी में रखकर हमको आनंद आता है, तो उस समय क्या कहोगे बोलो हैं? उस समय क्या कहोगे, हमको तो रस और पूरी खाने से ही आनंद आता है महाराज, हमको तो रस पूरी ही चाहिए, अब परमात्मा कहता है महाराज रस पूरी नहीं, कभी कभी बाजरे की बासी रोटी भी नमक और मिर्ची के साथ खाओ बेटा, हमको आनंद आएगा, तुम खाने को राजी हो कि नहीं बोलो, वहां नहीं होते हो तब समस्या आई, वहां तुम क्या कहते हो, नहीं महाराज मेरे द्वारा बाजरे की बासी रोटी और नमक मिर्ची से बासी रोटी खाने पर तुमको आनंद आता है भले आवे, हम नहीं खा सकते, तुम्हारा यही कहना है कि नहीं बोलो हैं? मानो कि उस भोजन से आनंद तुम अपने को आनंदित होना चाहते हो, इसीलिए भक्ति अधूरी हो जाती है, इसलिए भक्ति अधूरी हो जाती है, उस क्रिया से तुम आनंदित होना चाहते हो खुद, जबकि वह क्रिया परमात्मा खुद आनंदित होने के लिए तुमसे करा रहा है, तो ये गलती हम करते हैं, तो परमात्मा के संकल्प में और हमारे संकल्पों में संघर्ष चल पड़ता है, परमात्मा के संकल्प में और हमारी दिनचर्या दैनंदिनी में संघर्ष चल पड़ता है, तब जीवन विषाद हो जाता है, विषाद आनंद नहीं होता है। आगे का श्लोक, बहुविध परितोष बाष्प पूर स्फुट पुलकांचित चारु भोग भूमि चिरपद कांक्षी सद्यमानं परम सदा शिव भावनां प्रपद्ये। बहुविध परितोष, देखो योग में योग करने वाले योगियों को योग सिद्धि से पहले योग की सिद्धि के कुछ लक्षण दिखता है, ये लक्षण उस योगी साधक के जीवन में आवे तो मानो कि योग ठीक रास्ते पर चल रहा है। ये पूर्व भूमिका है, वो लक्षण से अनुमान करते हैं। और योग की जो भूमिका है वही भक्ति की भूमिका है, भक्ति शास्त्र में भी वही भूमिका है। तो आपकी भगवान के प्रति जो होने वाली भक्ति है, भक्ति भाव, वो भक्ति भाव कितनी पराकाष्ठा में है उसकी पूर्व भूमिका लक्षण दिखता है भक्तों में। ये स्वाभाविक भक्तों के स्वाभाविक लक्षण हो जाते हैं। इसको फिर नाटक के रूप में आप प्रस्तुत नहीं करना, ये लक्षण भक्तों के जीवन में स्वाभाविक अभिव्यक्त होते हैं। क्या है? तो बहुविध परितोष, भगवान की भक्ति अनेक प्रकार के संतुष्टि का कारण है। भक्त कभी भी असंतुष्ट होता ही नहीं। असंतुष्टि भक्त का लक्षण नहीं है। मैंने पहले एक भजन की पंक्ति गाई ना, जाई विधि राखी है ताई विधि रही है, वहां असंतोष का कहां है, असंतुष्टि कहां है? वहां पर जाही विधि राखी है ताई विधि रही है, तो असंतोष कहां है वहां पर? हां? बाप मरे, भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं? भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं बाप मरने पर? मां मरने पर भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं? भक्त तो नहीं होगा। जाही विधि राखी है ताही विधि रही है, पति मरने पर भगवान का भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं? बोलो, होगा है? अन्यथा नहीं लेना हो। भक्त तो ये कह सके, महाराज पति न मरा है, तुम तो नहीं मरे हो, ये कहने का हिम्मत होना चाहिए कि नहीं भक्तों में? बोलो है, ये होनी चाहिए कि नहीं? पति मरा और रो नहीं रहा है, कोई पूछे पति मर गया क्यों नहीं रो रही हो, और खुद भगवान पूछे तुमसे तुम्हारा पति मर गया तो तुम क्यों नहीं रो रही हो, तो तुम क्या जवाब देना है तुम्हें? पति मर गया, तुम तो नहीं मर रहे हो। बोलो, जाई विधि राखे राम है, इतना साहस होनी चाहिए कि नहीं? बोलो ना भक्तों में, जाई विधि राखे राम, बहुविध परितोष। ये अन्यथा संसार में को लोक माराधय तुम समर्थ। कालिदास जी ने एक वाक्य लिख दिया है, ये संसार में किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी, कोई भी किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता है। एक को खुश करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा खुश तीसरा नाराज, एक वस्तु से वो प्रसन्न है दूसरे वस्तु से नाराज। को लोक माराधय तुम समर्थ, तो एक ही चीज है संसार में, बहुविध परितोष, हर प्रकार से संतुष्ट होना भक्त का लक्षण है। हंसे तो ठीक, रोए तो ठीक, चले तो ठीक, बैठे तो ठीक, बहुविध परितोष बाष्प पूरा, दूसरा लक्षण बाष्प पूरा, भक्तों के भक्ति साधना के काल में, योगियों के योग साधना काल में और भक्तों के भक्ति साधना काल में बाष्प पूरा, उसके शरीर से पसीना निकलेगा। हाँ, ये भक्तों का लक्षण है। और हम तो पसीना आने लग जाए तो घबरा जाएंगे, एसी कहां गया। स्फुट पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने का, पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने लगेगा। चारु भोग भूमि आनंद की भूमिका है वो, चिरपद कांक्षी सेव्य माना, चिरपद कांक्षी सेव्य माना, जो नित्य आनंद के अनुभव करना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा सेव्य, उन्हीं को ही चिरपद प्राप्त होगा उनके द्वारा। परम सदाशिव भावनाम प्रबंधे, परम सदाशिव की भावना भक्ति के शरण में प्रबंधे में जाता हूं। तो परम शिव के जो भक्ति चरण में जिसकी अनन्य भक्ति है, वो भक्ति का प्रभाव यह है कि बहुविध परितोष, हर प्रकार की संतुष्टि प्राप्ति होगी, बाष्प पूरा। इसको अन्यत्र योग भूमि में इस तरह भी लिखा है, स्तंभ स्वेदो अथ रोमांच स्वर भंगो अथ बेपथु हो, भक्त स्तंभ हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, स्तंभ जड़ की तरह। भागवत आदि लक्षणों में तुम पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई सब स्तंभ हुए, स्तंभ हुए। भागवत में लिखा है जंगल के जो मृग शावक हैं, मृग हैं, घास खा रहे थे और मुख में जो घास लिया तो मुख ही में है, बच्चे मां के दूध पी रहे थे, चूसना बंद कर दिया, स्तंभ, जो जहां है वहीं स्तंभित हो गया। भगवान की बांसुरी का ध्वनि ऐसा मधुर था, इतना सम्मोहक था, पशु जंगल में घास चरते चरते जहां पहुंच गए थे वहीं खड़े हो गए, मुख में घास है, न वो परित्याग कर रहे हैं ना नीचे या उतार रहे हैं, स्तंभ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। स्वेदः शरीर में भाव उद्रेक होने पर पसीना निकलने लगता है। अतः रोमांच लक्षण है, ये भक्ति पराकाष्ठा के लक्षण है। शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, रोमांच। स्वर भंगो, कुछ बोलना चाहे बोली नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं निकलती, बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते, स्वर भंग। बेपतुः शरीर कांपता है। वैवर्णम उसका जो स्वरूप है उसमें बदलाव आ जाता है। अश्रु प्रलय जोर जोर से आंख से आंसू निकलने लगते, यही भक्ति के सात्विक भाव है। ये सात्विक भाव है, लेकिन आजकल देखते हैं कोई कोई ये लक्षण पढ़ लेते हैं और समाज में बड़े नामी भक्त होने के लिए ऐसे ही रोने लग जाते हैं, नाटक की तरह रोने लग जाते हैं। कोई कहे अरे ये तो बड़ा भगवान का भक्त है, ये सिद्ध करने के लिए कहां अपने लगते हैं। बहुत देखते हो है? कहीं भगवान का भजन हो रहा हो, नाम जप हो रहा हो, कि संकीर्तन हो रहा हो, तो कीर्तन करते करते कांपने लगते हैं। ले जी दो थप्पड़ मारो तो उनकी कांप गई। ये स्वाभाविक होनी चाहिए, ये भक्तों के लक्षण हैं। बहुविध परितोषा बाष्प पूरा स्फुट पुलकांकित चारु भोग भूमि चिरपदकांक्षी सेव्यमानाम परम सदा शिव भावनाम प्रपद्ये। आर्यचंद अमित मुदमृतम मुहुर्दुहंतिम विमल भवत्पद गोष्ठमा वसंतिम सदय पशुपते सुपुण्य पाकाम परिपालय भक्ति धेनु मे काम। भक्त बड़े कभी कभी बदमाशी भी करते हैं, कहते हैं अमित मुद मृतम मुहुर दुहंती। मैंने एक गाय पाल रखी है, शंकराचार्य जी कह रहे हो शिव जी से सीधे कह रहे हैं, शंकराचार्य जी भगवान शिव से सीधे कह रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। मैंने एक गाय पाल रखी है, बड़ी अच्छी गाय है। अमित मुदा मृतम मुहुर दुहंतिम, अमित माने असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुद माने प्रसन्नता का, आनंद का। अमृतम मुहुर दुहंतिम, बार बार जब चाहो तब जान चाहो वहां दू सकते हो, जितने बार चाहो उतनी बार दू सकते हो। वो देने में समर्थ ऐसी गाय मैंने पाल रखी है। विमल भवत पद गोष्ठ मा वसंती, लेकिन समस्या यह है महाराज, उस गाय को बांधने के लिए मेरे पास अच्छा गोठ नहीं है। क्योंकि भैंस को तो जहां भी बांध दो चल जाता है, सुअर के लिए बहुत साफ स्थान चाहिए हैं? दुनिया में गंदा सा गंदा स्थान में रख दो तभी आनंद से रहता है कि नहीं सुअर है? लेकिन गाय रह सकती है ऐसी जगह? नहीं रह सकती, इसलिए उसको बहुत अच्छा जगह चाहिए, बढ़िया गोष्ठ चाहिए। मैंने संसार में बहुत जगह घूम घूम कर देखा, उस गाय के लिए गाय के अनुकूल गोष्ट मुझे प्राप्त नहीं हुआ कहीं भी। एक जगह मुझे मिल गया है महाराज, वो क्या है? विमल पद विमल भगवत पद गोष्ठम, निर्मल आपके जो चरण रूपी गोष्ठ है वहीं मैं इस गाय को बांधना चाहता हूं। बस महाराज, तुमने गाय का नाम क्या रखी है? नाम होता है नहीं गाय के? गाय के विशेषण तो बता दिया, अमितम उदम अमृतम मुहूर् द्वंतिम, लात मारने तो जानती ही नहीं हो गई। हालांकि लोक व्यवहार में कहा जाता है भैंस कभी लात नहीं मारती है कहते हैं, गाय लात मारती है कहते हैं, लेकिन ये हमने जो गाय पाली है वो लात मारने तो जानती ही नहीं है। क्यों नहीं जानती है महाराज वो गाय लात मारने क्यों नहीं जाती है? क्योंकि आपके लात के आश्रय में बैठी है तो किसको मारेगी वो? है भगवत पद विमल भगवत पद गोष्ठम आवसंतिम, वो गाय आपके निर्मल चरण रूपी गोठ के अलावा और जगह बैठना ही नहीं चाहती है वो। है भगवत विमल भगवत पद गोष्ठम, आपके जो चरण है वही उस गाय के लिए उत्तम गोष्ठ है, गोठ है। वहां यदि आपने आश्रय दिया तो वो गाय बड़ी खुश होगी और मुझे नित्य निरंतर अमितम उद अमृतम मुहूर् दुहंती, जब चाहो तब मैं उससे अमृत दू सकता हूं, हर वस्तु के लिए आनंद का अमृत दूध के रूप में दे सकती है। सदाया महाराज कृपा करो, हमारे एक भक्त है, एक बार हमारे पास आकर उन्होंने कहा, ये सच घटना हो, और संयोग से उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, घर में एक कुत्ता पाल रखा था, औसतन कुत्ते की आयु 14-15 वर्ष 12-14 वर्ष, ज्यादा ज्यादा 15-16 वर्ष की आयु है, उसे ज्यादा कुत्ते नहीं बांसते हैं, औसतन आयु वही है। उनके बहू बेटे दोनों बाहर चले गए, विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, तो एक बाई रखा था उन्होंने घर में काम करने के लिए, बहुत पुरानी बाई, अक्सर उस कुत्ते की देखभाल वही बाई करती थी, समय में खाना देना, उसको बाहर ले जाना, घुमाना, है ना, तो बाई करती थी। बाई वृद्ध हो गई तो मर गई बाई, दूसरी भाई मिली नहीं, घर में कुत्ता है 16 साल का हो गया, हो बहुत बूढ़ा है कुत्ता, अब अपने आप मर नहीं रहा है, घर में पाला हुआ है, अब उसको मारने का तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, पाला हुआ कुत्ता कैसे मारेगा, अब उस बूढ़े कुत्ते को कोई दूसरा पालेगा भी नहीं, उसके लिए ऐसा बंधन हो गया है कि उस कुत्ते को छोड़कर एक दिन भी कहीं बाहर जा नहीं पाती है। उसी कुत्ते के लिए समय में खाना देने के लिए घर में रहना पड़ेगा, आकर मुझे सुनाती है, महाराज

अब इस गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद नहीं करती है, करेगी? आजकल के बहू पसंद करेगी? सास ने ये गाय पाल रखी है, मान लो भगवान शिव की भक्ति रूपी कामधेनु सास ने पाल रखी है, अब भक्ति रूपी गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद करेगी? हैं? बेटे के यहां जाओ तो बेटा पसंद करेगा? तो तुम्हारे लिए यह मुसीबत हो गई कि नहीं बोलो? हैं? तुम छोड़ भी नहीं सकते हो। अमितमुदम अमृतम मुहुर दुअंतिम, बार बार तुमको अमृत की प्राप्ति हो रही है, छोड़ भी नहीं सकते। और संसार में कोई भी तुम्हारे द्वारा धारण की हुई भक्ति को किसी को देने जाओ, कोई लेने को तैयार होता नहीं। आज के जमाने में कोई भक्ति लेने को तैयार है? बोलो। कभी कभी तो ये बिना मतलब का भक्ति हमने शुरू कर लिया, मुसीबत हो गया। कई बार शालिग्राम लाते हैं घर में वो शालिग्राम मुसीबत हो जाता है, मुसीबत हो जाता है। लेके जाएं तो अमेरिका कहां लेके जाएंगे? तुलसी का पत्ता मिलता नहीं। महात्मा ने शालिग्राम दिया था रोज तुलसी का पत्ता चढ़ाना, यहां थे तो चढ़ाते रहे, अब अमेरिका जाना है तो लेके जाए तो वहां तुलसी का पत्ता मिलेगा नहीं, यहां छोड़ के जाए तो बहुत चढ़ाएगी नहीं तुलसी का पत्ता, मुसीबत हो गई कि नहीं? बोलो, क्या करें? भक्ति भी कभी कभी मुसीबत होती है। शंकराचार्य जी को हो गई, तुम्हें नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये भक्ति काम देनु, भक्ति देनु काम में काम, एक ही गाय है वह आपके विमल भवत पद गोष्ठम आवसंतिम, वहीं बैठना राजी है, इसलिए हम आपके चरण रूपी गोठ में उस भक्ति को बांध देना चाहते हैं। सदय पशुपते सुपुण्य पाताम, मेरे अनेक जन्मों के सत्फल सत्कर्मों का फल परिपक्व हुआ तब जाकर आज मुझे बढ़िया गोठ प्राप्त हुआ, गोठ प्राप्त हुआ। कौन सा गोठ? भगवान के चरण रूपी गोठ की प्राप्ति हुई है बात। अब ये भगवत भक्ति रूपी गाय इसी गोठ में मैं बांधता हूं। मम परिपालयः, महाराज इस गाय को पालने का काम आपका है, आपके प्रति मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसकी रक्षा करने का काम आपके है, आपके चरण में मैं अर्पण कर रहा हूं। हाँ? मम परिपालयः भक्ति देनु में ये काम, मैं और किसी को पत्नी को पालो मैं नहीं कहूंगा, बेटे को पालो ये नहीं कहूंगा, हैं? मां को पाल लो, बाप को पाल लो, मुझे पाल लो ये नहीं कहूंगा। एक भक्ति जो मेरे पास है उसको आप पालन करो, अपने गोठ में पालन करो, और ताकि अमृत दूध मैं पी सकूं। बोलो, भगवान को तो गोठ के गोठाला बनाने चाहते हैं शंकराचार्य जी, ग्वाला बना दिया भगवान के। बोले गाय भी तुम्हारी है, गोठ भी तुम्हारा, पालन पोषण तुम ही करो, हमको तो अमृत पान करना है बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण

0: ஓம் நம சிவாய. யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு சைவம் டாட் ஆர்க் ரேடியோஸ், 24/7 ஸ்பிரிச்சுவல் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் சைவம் டாட் ஆர்க். ஓம் நம சிவாய.
1: ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, பிரசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
2: 10 ghanta குச் சோச்சனை கலியே கஹே கிளிஷ்ட பாத்தே சூக்ம பாத்தே தோ மே சோச் சக்தா ஹூ. मैं दिमाग से चल सकता हूं पर शारीरिक में अस्वस्थ हूं, तो कोई बात नहीं, अब हट योग करके, योग करके, ज्यादा तकलीफ देके आपके शरीर को कष्ट मत दीजिए. बुद्धि दी है भगवान ने, तो बुद्धि से, ज्ञान से वो परमात्मा को प्राप्त करके आप छूट जाइए. तो कोई कहेगा कि भाई मेरी बुद्धि है इतनी सूक्ष्म चल नहीं सकती है. आप कहे तो मैं योग कर सकता हूं, मैं आसन कर सकता हूं और मेरी मन की चंचलता को दूर कर सकता हूं, तो उसके लिए योग पर्याप्त है. कोई कहेगा कि मैं योग थोड़ा कम कर सकता हूं, मेरी बुद्धि जो है मैं ज्यादा क्लिष्ट और सूक्ष्म बातें सोचना नहीं चाहता. मैं आप कहेंगे तो प्रणिपात कर सकता हूं, तीर्थ यात्रा कर सकता हूं, माला जप मंत्र कर सकता हूं. आप बोलेंगे उतने तो वो करके भी आप मन शांत करना क्या है, उद्देश्य क्या है ये सब चीजों का? ये सब चीजों का उद्देश्य है अंतकरण की शुद्धि, मन की, मन का जो चांचल्य है, मन की चंचलता जो है, उद्विग्नता जो है, उसे दूर करना है. यही एक पर्पज है. पठन्तु शास्त्राणी, यजन्तु देवान, कुर्वन्तु कर्वाणी, भजन्तु देवताः. आत्मैक बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि. ये याद रख लीजिए कि ये सब करने के बाद भी मैं वो परमात्मा हूं, ये अहम अयम अस्मि इति ब्रह्म, वो जो पुरुषः, आत्मानं चेद् विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय. अंतिम क्या है ज्ञान? तो बोले ये जो भीतर जो परमात्मा, जो आत्मा है, हृदय गुहा में हृदयस्थ जो परमात्मा है, वो मैं ही हूं, वो जानना वो अंतिम परिणाम है. और ये जो यजन, पठन, पाठन, तीर्थ यात्रा, दर्शन है, वो क्यों, ये वो व्यवस्था किसके लिए है? ये जानने के लिए मन का जो शांत होना जरूरी है, मन में भगवद आकार वृत्ति का उत्पन्न होना जो जरूरी है, उसके लिए ये सब किया जाता है. कहने का तात्पर्य, आपके संस्कार, आपके आदतों के मुताबिक ये सब साधनाएं करना. ये न कहने प्रकार है ना, आपका मन जिससे शांत हो ऐसे आप शांत कर सकते हैं. अनुकरण मत करना और उसकी ज्यादा बहुत चिंता भी मत करना. उसे प्राप्त करने निकले हैं तो उसे ही उसकी चिंता करने दो. आप चिंता करके अपनी शक्ति का व्यय मत करो. देखिए ये जो संघात दिया है ना, ये लिमिटेड है और ये लिमिटेड से अनलिमिटेड को प्राप्त करना है. ये आंख में जो देखने की शक्ति दी गई है ना, परमात्मा ने आपको पैकेट तो भेज दिया, पर आंख को देखने की जो शक्ति दी गई है वो उतनी ही शक्ति दी गई है जिससे आप परमात्मा को देख सको. परमात्मा को देख सको यानी परमात्मा तो अदृश्य है, आंख का विषय नहीं है, पर आंख से देख के इतना ही निर्णय करना है कि हे परमात्मा, मैं जिसे देख रहा हूं उसमें अस्थि भांति प्रिय रूप आप हो, आप नाम आकार के रूप में नहीं हो. इसमें आंख की शक्ति है, उसका सदुपयोग करना है. पर हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड आंख की शक्ति दी है, लिमिटेड कर्ण की शक्ति दी है, लिमिटेड वाणी की शक्ति दी है, लिमिटेड पैर की चलने की शक्ति दी है, पर हम क्या करते हैं, ये सब शक्ति को गलत कर्म में, गलत जगह में, गलत वस्तु में, गलत विषयों में हम डाल के खत्म कर देते हैं. पर ये कोई नेवर एंडिंग ऐसा डायनामो ऐसा नहीं दिया है कि वो रिजनरेट होता जाए. शक्ति गई तो गई, वापस नहीं आएगी, नहीं तो हमको चश्मा नहीं आते. और देखिए आप ऋषि मुनियों को, आप हिमालय में चले जाइए, 100-100 साल का जीवन है और चश्मा क्या, कैटरेक भी नहीं आता है. क्यों, आपका दुरुपयोग ही नहीं किया है. कान चले ही नहीं जाते, आप और मुझसे और आपसे ज्यादा सुन सकते हैं वो. अच्छा क्यों, क्योंकि गलत सुना ही नहीं दिया है. ऐसी ही वाणी सुनी है जो भगवत का नाम, परमात्मा की, भगवत आकार की वृत्ति उत्पन्न करे, ऐसा ही कान में डाला है शब्द. क्या हम ये कर सकते हैं, ऐसा करो तो ये तप हो गया, ऐसा करो तो और कुछ आसन योग शास्त्र की जरूरत नहीं रहेगी, आप शांत हो जाएंगे अपने आप. हिम्मत है ऐसा करने की? जहां भी प्रपंच गया, जहां भी दूसरी वाणी, नाम और आकार की बात आई और उठकर आप जा सकते हैं बिना शर्म, बिना झिझक, बिना संकोच, तो समझना कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ आपने किया, उठ के चले जाइए। शर्माइए मत, उसको प्राप्त करने के लिए संकोच मत कीजिए। यह वाणी से कितना गलत और बिन उपयोगी कितनी वाणी हमने बोल दी, एनर्जी वेस्ट गई तो गई, अभी चली गई। और संतों की वाणी, ऋषियों की वाणी हम तड़पते हैं सुनने के लिए, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गलत वाणी बोल के एनर्जी वेस्ट नहीं की, तो उनके मुख से जो निकलता है वाक तपस हो जाता है, जो बोलते हैं वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाणी ने गलत नहीं बोला, इसलिए जो बोलते हैं वो हो जाता है। तात्पर्य क्या है अब बराबर समझ लीजिए कि हमें क्या सीखना है इससे। जो भी शक्ति आपको दे गई है उसका सदुपयोग करना है। अब पुष्पदंत जी के स्वभाव के मुताबिक उन्हें ये वाणी को थोड़ी रसमयी बना के गीतात्मक रूप में परमात्मा की स्तुति करने का एक मौका मिल गया। देखिए, और एक बात समझ लीजिए कि प्रतिकूल संजोग आ गए तो प्रतिकूल संजोग में परमात्मा उनके श्रवण का, मनन का, चिंतन का, निधिध्यासन का, गान का, भक्ति का मौका दे रहे हैं। ये मौका मत चूकना। मीराबाई को जब ये जहर का कटोरा यहां तक आ गया तो मीराबाई को तो बहुत खुश हो गए। क्यों? मौका मिल गया कि हे परमात्मा, इतनी एकतांता तेरे साथ कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। इतनी एकतांता थी कि वो पिए तब उनके मन में ये विष है उतनी वृत्ति, देखिए ये विष है ऐसा कहने के लिए वृत्ति होनी चाहिए कि ये विष है। पहले अंतकरण वृत्ति जो है वो तत्त्वत विषयाकार होती है, फिर ही भान होता है कि ये है। अब वो विषयाकार करने के लिए मेरे मन में ओम नमः शिवाय की वृत्ति चल रही है, जहर का कटोरा आ गया तो ओम नमः शिवाय की वृत्ति मेरी क्या होगी? चली जाएगी। और ये विष है ऐसा सोचने के लिए वृत्ति यहां से निकल के यहां जाएगी। अब यहां से निकल के यहां गई, उतनी क्षण के लिए भी उन्होंने परमात्मा का, भगवत का नाम नहीं छोड़ा, तो भगवत आकार वृत्ति ऐसी ही बनी रही। तो हे परमात्मा, मुझे तो खुशी हुई कि ये जहर मिला, क्योंकि ये होने तक ये है ऐसी भी वृत्ति, इतना भी नोटिस नहीं किया। तेरे साथ में ज्यादा हो सकी, ये प्रतिकूलता से आप ज्यादा मिल गए। अब देखिए, कोई भी जीवन में प्रतिकूलता आएगी तो आप परमात्मा का नाम थोड़ा विशेष रूप से लेंगे कि नहीं लेंगे? आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, कुछ सुन लिया कि अरे भाई कुछ गलत हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तूफान आ गया है, कर्फ्यू लग गया है, तो क्या होगा? तुरंत ही परमात्मा का नाम की प्रबलता बढ़ जाती है कि नहीं? हाँ, प्रतिकूलता में प्रबलता बढ़ जाती है। यानी प्रतिकूलता को क्यों आई, ये प्रतिकूलता कैसे आई, उसमें से कैसे मैं बाहर चली जाऊं, कैसे निकलू, कैसे छूटू, ये सोचने के बदले आपकी भगवताकार वृत्ति को एकदम ही पकड़ के प्रकर्षण मजबूत किए जाइए। तो ये पुष्पदंत जी ने क्या किया, राजा के सामने गिड़गिड़ाना तो बंद ही कर दिया। देखिए, उनके उद्यान से चोरी की है तो भी उन्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हाथ उसे जोड़ने हैं। गलत किसी का किया भी, गलत तो करना नहीं ही है, पर कर ही लिया तो कोई बात नहीं, कोई छोटे बन जाने की भी जरूरत नहीं है। प्रार्थना तो करनी ही है, नमस्कार तो, माफी तो मांगनी ही है, वो परमात्मा की मांग लेना। तो उन्होंने क्या किया, कोई राजा के साथ की बात कुछ नहीं की, कोई सैनिकों के साथ कुछ मारपीट कुछ नहीं, मन में द्वेष भी नहीं रखा कि मैं पकड़ा गया, निर्माल्य क्यों रखा, अब उसके मुताबिक भी वार्तिक नहीं किया, क्योंकि गंधर्व योनि मनुष्य योनि से ऊपर है, देव गंधर्व योनि भी ऊपर है गंधर्व योनि से, तो ये तो ऊपरी हो गए। तो भी कोई वाद नहीं किया, कोई तर्क, देखिए तर्क से कुछ भी जीता जा सकता है। ये तर्क से काशी नरेश राजा को भी वो असत्य ठहरा सकते थे, उनमें शक्ति थी है। पर ऐसा करने में हमें आपको बताया, जो एनर्जी जो है, जो शक्तियां दी गई है परमात्मा को जानने के लिए, उसका व्यय नहीं करना। ये तर्क आपकी शक्ति को खा जाता है और परमात्मा को नहीं मिलने देता। तो ये जो शक्ति है उनका सदुपयोग उन्होंने मात्र परमात्मा की स्तुति के लिए किया, और वो स्तुति है शिव महिम्न स्तोत्र। पहला श्लोक है आपके पास, जिसके पास शिव महिम्न है कईयों को तो मुखपाटी होगा आप सबको, जिसको नहीं है पुस्तक में आप देख के मेरे साथ ही गान करना।

ये एक महिम्न स्तोत्र ऐसा है जो शिखरिणी वृत्त में ही गाया जाता है। आप कोई अलग कोई राग में गाए तो वो अलग बात है, बाकी इनके लिए शिखरिणी जो वृत्त है, शिखरिणी जो छंद है, उसी में गाने का विधान किया गया है, क्योंकि वो ज्यादा ये मधुर रस जो है, ये मधुर रस में ज्यादा मधुर, ये कहते हैं ना आइसक्रीम के ऊपर आप टॉपिंग रख देखते हैं, ऐसे मधुर को भी मधुर करते हैं, क्योंकि मधुराधिपते अखिलम मधुरम, परमात्मा सब मधुर जितना एकत्र कर लिया, जितना आनंद, जितना श्रेष्ठत्व, जितना सौंदर्य एकत्र कर लिया, उससे भी ज्यादा वो परमात्मा है। उनके महिमा को हम पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए जितना महिमा किया उतना आपके लिए तो कम ही है, क्योंकि मैं जितना आपका वर्णन करूंगा, मैं जितना आपका महिमा का गान करूंगा, उससे आप ज्यादा ही है, इसलिए जितना वर्णन करूं उतना कम है, फिर भी जितना भी करूं उतना पर्याप्त भी है, क्योंकि मैं आगे बढ़ सकता नहीं हूं। आप मधुर से भी ज्यादा मधुर है, तो ये मधुर से भी ज्यादा मधुर स्तोत्र है, उसको और मधुर बनाने के लिए शिखरिणी वृत्त क्यों किया गया, क्योंकि ये गान शिखरिणी छंद में गाने से परमात्मा की आनंद की बात इसमें बन जाती है। तो शिखरिणी वृत्त में 17 जो अक्षर जो बने हैं उसमें 6 को तोड़ देते हैं और बाकी के 11 अलग गाए जाते हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए। अब यहाँ कहा है महिम्न पारमते परम विदुषो यद्र सदृशी। हे परमात्मा, हे महादेव, आपके महिमा की परम सीमा, परम विदुषो, परम सीमा जो है वो न जानते हुए मेरी स्तुति अगर आप उसे अयोग्य कहेंगे, यानी हे परमात्मा, आपका जो महिमा है वो अवर्णनीय है, आपका महिमा आप ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम स्वरूप ब्रह्म है, और परब्रह्म के बारे में क्या कहा गया है उपनिषदों में, हम भी जानते हैं कि अवांग अमनस अगोचरम, यानी वाणी का विषय नहीं है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का विषय ये नहीं है, वो बंद हो गए। अच्छा, मन का विषय है, तो बोले मन भी उड़ गया, अंतकरण का भी विषय नहीं है वो परमात्मा, बुद्धि का भी विषय नहीं है, और हमारे पास है क्या? वॉट वी हैव टू नो दैट लॉर्ड, ये मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि का संघात है, और ये संघात के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये मैं स्तुति कर सकूं। तो ये संघात की मदद से अगर मैं स्तुति कर रहा हूं तो वो अयोग्य नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो महिमा को पहुंच नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि शरीर मन बुद्धि के पर की वो महिमा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं तो वो अयोग्य नहीं है। क्यों अयोग्य नहीं है? तो उसकी बात बता रहे हैं कि स्तुति ही ब्रह्मादि नाम, ब्रह्मादि है वो देव भी, उनकी वाणी भी आपकी स्तुति करने में अयोग्य है। अयोग्य है यानी पहुंच नहीं सकती है, पूर्ण नहीं हो सकती है। और यहां ब्रह्मा जी की ही बात क्यों की? ब्रह्मा जी के साथ कुछ उनको तकलीफ हुई थी क्या? तो बोले नहीं, ब्रह्मा जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पर ब्रह्मा जी स्वयं परमात्मा में से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनकी स्तुति को, उनके महिमा को खुद ही उत्पन्न हुए तो भी नहीं जान सकते हैं, उनके कारण है तो भी नहीं जान सकते हैं, उनका कार्य है तो भी नहीं जान सकते हैं, तो मेरी तो बात ही क्या? अगर ब्रह्मा जी नहीं जान सके तो भी उन्होंने स्तुति की है, तो मेरी स्तुति सर्वथा योग्य ही है, स्वीकार्य ही हो सकती है, इसीलिए मैं ये स्तुति करने की कोशिश चेष्टा कर रहा हूं। आगे कहते हैं, अथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामा वधिगृणन ममाप्येश स्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः। और उन्होंने कहा कि अपनी अपनी बुद्धि के मर्यादा के मुताबिक स्तुति करने वाले हर कोई अगर निंदा पात्र नहीं है तो मेरा ये स्तोत्र जो है उसका प्रयत्न निर्दोष ही आप समझिए। हे हर, हर याने हरण करने वाले,
किसका हरण करने वाले? अज्ञान का हरण करने वाले। तो अगर आप अज्ञान का हरण करने वाले हैं तो मेरी स्तुति में अज्ञान कहां से आ गया? भाई शरीर मन और बुद्धि का उपयोग किया ना, यही अज्ञान आ गया। अगर आप जो अगर कहेंगे ना कि भाई ब्रह्म ही है और आप ब्रह्म में ही निष्ठा रखते हैं, ऐसा हम कैसे जाने? जिस दिन हम बोलना बंद कर देंगे सब संत, तब मान लेना कि ब्रह्म में। तो क्या संतों को ब्रह्म में निष्ठा नहीं है? ऐसा नहीं है, बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सुनने वाले की, वक्ता की, शरणागत की भी निष्ठा हो, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी ब्रह्म को जानने के बाद कुछ बोलना नहीं रहता है, एक शब्द नहीं रहता है, ये तो उच्छिष्ट हो गया ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में बोले तो ब्रह्म उच्छिष्ट हो गया। वो उच्छिष्ट कैसे हो सकता है? वो तो परम शुद्ध है, बोला ही नहीं जा सकता। बोलते इसलिए है क्यों? क्योंकि कोई शरणागत है। बोलते इसलिए है क्योंकि बोलने वाला ही सुन के वो नहीं बोलने वाले को प्राप्त हुआ है। किसी का तो उसने प्रवचन सुना है, किसी को तो बोल सुने हैं, कि कोई तो उद्धृत हुआ है उनको बोलने के लिए, और वो सुन सुन के वो परमात्मा के बारे में जान सके हैं, अंतिम विधि तक जान सके हैं, अंतिम अवधि तक पहुंच सके हैं, इसलिए वो फिर से बोलते हैं। ये कष्ट होता है बोलने में, क्यों? क्योंकि एक बार पता लग गया कि वाणी का विषय भी जो नहीं है, जो मन का भी विषय नहीं है, बुद्धि का भी विषय नहीं हो, उसमें बल जबरी बोलना पड़े तो जानना के क्या होता है, फिर भी बोलते हैं। इसीलिए गुरु को, संत को, ये वेद को अकारण दयामय कहते हैं, वो इसीलिए। तो पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे परमात्मा हर, आप हर यानी अज्ञान का हरण करने वाले हैं, मेरी जो स्तुति मैं कर रहा हूं उसमें अज्ञान क्या आ गया कि आप वाणी से पर है तो भी वाणी में बोल रहा हूं, तो ये वाणीगत जो अज्ञान है उसको आप निकाल दीजिए। और जो परम शुद्ध आप रह गए वाणी के बाद कैसे रह गए? तो देखिए, अगर आप परमात्मा का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये वाणी का उपयोग किया। अब वाणी में से परमात्मा को हर बोल के प्रार्थना क्या करनी है कि इसमें से अज्ञान को निकाल दो, यानी शब्द को निकाल दो और उसकी जो असर है उसमें आप स्थित हो जाओ। ओम नमः शिवाय जब आप बोलेंगे तो असर क्या होगी? ओम बोलेंगे तो असर क्या होगी? तो बोलने के बाद जो शांति है, जो आनंद है, जो शरीर मन बुद्धि की संवेदनाएं हैं वो चली जाती है, प्रारब्धगत सुख दुख जो है वो क्षण के लिए जो दूर हो जाते हैं, और मात्र परमात्मा का जो क्षणिक स्पंदन होता है वो परमात्मा ठहर जाता है, वह रह जाता है। पर प्रार्थना में वो अज्ञान को निकाल देता है, वाणी को निकाल देता है। तो वाणी को निकालने के बाद तो हे परमात्मा वाणी से बोल रहा हूं उसमें वाणी रूप अज्ञान को निकाल दीजिए, और मेरा जो हार्द है, मेरा जो प्रेम है आपके प्रति जो प्रदर्शित हो रहा है, वो प्रेम को आप पकड़ लीजिए, आप तो वो करने में सक्षम है। देखिए, इतना आप भक्त से किसको बोल सकते हैं? जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको आप मानते हैं। तो परमात्मा को इतना नितांत अपना पहले मानिए, पहले अपना बना लीजिए, फिर ही उसको बोल सकते हैं। अच्छा, मेरे मन का, जो मन और बुद्धि से आपकी महिमा का मैं वर्णन तो कर रहा हूं, वाणी से आपके रूप का वर्णन करूंगा, पर आपके जो गुण है, निर्गुण गुण है, ये कैसा है? शक्कर का एक टुकड़ा है, तो उसका जो रूप है उसका वर्णन मैं वाणी से कर सकूंगी कि भाई ऐसा है, सफेद रंग है, ऐसा ऐसा है, इतनी जगह रोक रहा है, उसका वजन इतना है, उसका वॉल्यूम इतना है, ये टेबल पे रखा गया है, ये सब तो मैं बोल सकती हूँ। पर वो कैसा है, उसके अंदर भीतर कुछ और भी है क्या? शक्कर के भीतर ये रूप के अलावा और क्या है? मिठास है, तो मिठास दिख रही है? नहीं, मिठास दिख नहीं रही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको चखना पड़ेगा, उसको वाणी के ऊपर लाना पड़ेगा, जूठा करना पड़ेगा। जूठा करने के बाद क्या आएगा? जूठा करने के बाद जवाब क्या आएगा कि ये मीठा है। ऐसे हे परमात्मा, मेरी गलती तो हो ही गई है, वाणी से नाम लेके मैंने जूठा कर दिया आपके नाम को। ये वाणी से भी लिया नहीं जा सकता नाम, तो भी मैंने लेने की दुष्टता चेष्टता की, पर मुझे माफ करना। क्यों? क्योंकि शक्कर के निर्गुण गुण को जानने के लिए मुझे उसे जूठा करना ही पड़ता है, तो ही मैं मीठा ऐसा बोल सकता हूँ। ऐसे हे परमात्मा, वाणी से आपका नाम लेके
मन और बुद्धि से ये नाम लेने के बाद जो भी आपके निर्गुण निराकार जो विशेषण जो गुण थे वो मेरे भीतर जिस प्रकार आए उसका मैंने वर्णन, निर्गुण का भी वर्णन मैंने किया है। इसलिए ये स्तुति का बहुत महत्व है, क्योंकि सगुण और निर्गुण को एक साथ प्रदर्शित किया है, एक ही प्रभु के लिए प्रदर्शित किया है। और ये जो परमात्मा मन और बुद्धि से मैंने जो निर्गुण तत्व का वर्णन किया है उसमें से अज्ञान रूप मन को हर, अब हर इसलिए है कि हर में ये मन की जो मेरा जो मन है, मेरा जो संस्कार है सत्व रजस तमस, मेरे मन के जो संकल्प विकल्प आपके निर्गुण रूप को वर्णित करने में भी बीच में आ गए हो उसको आप निकाल देना, और फिर जो रह जाएगा वो स्तुति आप स्वीकार कर लेना। बुद्धि से भी, जो भी बुद्धि से मैं जहां तक पहुंच सका, आप बुद्धि से पर है, मैं जहां तक पहुंच सका वहां तक मेरी बुद्धि गई, वो मेरी अज्ञान रूप बुद्धि को निकाल लेना और जो भी बच गया वो स्तुति को आप ले लेना। ऐसा हर, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा जिस दिन आप परमात्मा को कह सकेंगे कि हे परमात्मा ये तेरा नाम मैं ले रहा हूं, उसमें से ये अज्ञान रूप मन वाणी का विषय निकाल देना और जो परम तत्व आप रह गए हैं तदेको अवशिष्ट शिव केवलोहम, ये अवशिष्ट जो रह गया है हे परमात्मा उसको आप सहर्ष स्वीकार कर लेना। तब समझना कि आपने परमात्मा को स्वीकार किया, आप परमात्मा को प्रेम कर रहे हैं। कुछ नहीं तो उसके साथ मन ही मन बातें कीजिए, कभी उसके साथ बात की है? हाँ, ऑर्डर ही किया है, पैर दुखता है हे भगवान मिटा दो, आंख दुखती है भगवान मिटा दो, ये हो गया घर टूट गया हे भगवान, ये क्या ऑर्डर, हाउ कैन यू ऑर्डर? और ऑर्डर किसको कर सकते हैं? जिसके साथ इंटीमेसी हो, जिसके साथ फ्रेंडशिप हो। कभी उठ के पूछा है हाउ आर यू? हाँ, परमात्मा को कभी मन से भी पूछा है? नहीं, उसको प्रेम ही नहीं किया। परमात्मा को आस्तिक के बुद्धि से प्रेम करो। देखिए तकलीफ होती है तब वही परमात्मा, वही उनके सगुण साकार रूप के बाद आप नहीं सोचेंगे तो भी जाते तो है ही, अनजाने में भी चले जाते हैं, दौड़ जाते हैं, मदद मांगते हैं, और वो गलत भी नहीं है। तो अनजाने में उनके पास अगर आप दौड़ जाते हैं तो जानते हुए जाइए ना, शर्म क्यों लगती है, ये संकोच क्यों है? ये संकोच तोड़ दीजिए। ये शर्म, परमात्मा के बारे में संकोच और शर्म तोड़ दीजिए, तो ही परमात्मा को आप कह सकेंगे कि मेरी वाणी से अनुरुत निकाल दीजिए। हाँ, असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये असत जो वाणी में मन में बुद्धि में रह गया है उनको आप निकाल दीजिए। तो यहाँ मेरी स्तुति निर्दोष है ऐसा परमात्मा को पहले से ही उन्होंने बता दिया। क्यों? क्योंकि आपका वर्णन हमेशा जितना वर्णन करूं उससे आप अधिक ही है। देखिए व्यवहार में भी मैं मिठास का जितना वर्णन करूं वो कम ही है ना, आपको तृप्ति कब होगी? हाँ, जब वो मिठास आपके भीतर जाएगी तभी आपको तृप्ति होगी। वर्णन तो वैसे भी अधूरा रहेगा, तो व्यावहारिक शक्कर का वर्णन भी अधूरा है तो ये परमात्मा का वर्णन तो अधूरा ही रहेगा। वो मुझे पता भी है कि अधूरा रहेगा तो भी मैं चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं करने से तो वर्णन करना अच्छा है। इससे क्या हो रहा है, देखिए सूक्ष्मतया क्या हो रहा है, बहुत बड़ी घटना घट रही है। ये भगवदाकार वृत्ति तैयार हो रही है, ये प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जिसमें आप वो तत्वमसी का उपदेश है वो धारण करके रख सकते हैं। यही एक पात्र है, यही एक शुद्ध भगवदाकार वृत्ति का पात्र है जिसमें ये परमात्मा ठहर सकता है, क्योंकि वो अति शुभ्र अति शुद्ध है। आप यहाँ आए और आपके कुर्सी के ऊपर कल जो कुछ पूजा हुई होगी, किसी ने प्रसाद या शक्कर के 2-3 दाने पड़े होंगे, तो आप वो कुर्सी पे बैठ जाएंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? साफ करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे बताइए। भाई ये तो मंदिर है, ये मंदिर ही है तो मंदिर में तो कहां भी बैठा जाता है, साफ करने की क्या जरूर है? नहीं, हम तो साफ करके बैठेंगे। देखो ये जड़ शरीर मन बुद्धि का संगात है, मृत प्राय। शंकराचार्य जी ने इतना अच्छा बताया विवेक चूड़ामणि में, सुनने को तो अच्छा नहीं लगेगा कि ताजा मरा हुआ मर्दा है ये शरीर, ताजा ताजा एकदम फ्रेश मरा हुआ सुनने में अच्छा नहीं लगता है, पर ये हकीकत स्वीकारनी पड़ेगी। तो ये ताजे मर्दे को भी बिठाने के लिए साफ सफाई करते हैं, तो वो अति शुद्ध परमात्मा वो क्या अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मल, हाँ
ये इतनी अशुद्धि हो कि सीट पे बैठ जाएगा आके हृदय में लगता है बैठेगा। हाँ, हम चेयर को साफ कर करके बिठाते हैं तो आप अपने अंतकरण को शुद्ध कब करेंगे, कैसे बैठेगा वो अंदर, एक क्षण के लिए भी नहीं बैठेगा। इट इज एन इंसल्ट टू इन्वाइट लॉर्ड, उनको बुलाने की जल्दी मत करना, क्योंकि यो वेद नहीं तम गुहायाम, वो तो आके है ही पर अपने स्वरूप को वो बताता नहीं है। अहम अस्मि प्रत्यय से वो प्रगटीकरण नहीं करते हैं अपने आप को। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जो आसन है वो स्वच्छ नहीं है। आप किसी के घर में जाते हैं, आपको अगर शुद्ध आसन बैठने के लिए नहीं दिया गया या जानबूझ के गंदा आसन दिया गया, गंदा आपका आदर सत्कार नहीं किया, ठीक जगह पे आपको अपने स्टेटस के मुताबिक बिठाया नहीं तो क्या होगा? वोंट यू फील इंसल्टेड? हाँ, हमको बुरा लगेगा, हम वापस वहां नहीं जाएंगे। हम तो निर्णय लेके बैठ जाते हैं कि हम वापस ये घर में जाएंगे नहीं। परमात्मा तो इतना भी नहीं कर सकता है, और यही बात का हम डिसएडवांटेज लेते हैं उनका। अशुद्धि तो पूरे पूरी है, परमात्मा को बुलाया कि मेरा ये काम कर दे। कभी कभी मन हुआ प्रार्थना कर ली, मन हुआ सत्संग कर लिया, पर ठीक जगह ठीक आसन उनको नहीं दिया तो ये परमात्मा इतना करुणामय दयालु है कि ये ऐसा भी नहीं कहता है कि मुझे ठीक बिठाने को नहीं मिला तो मैं चला जाता हूं, नहीं। वो ऐसे ही अंतस्थित अहम प्रत्यय से आपको सत्ता और स्फूर्ति देते ही रहते हैं कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इतनी धीरज वो परमात्मा रख सकता है। अब तो सोचिए कि उसे निज आसन पे बिठाना, ये परमात्मा को बिठाना यानी क्या कि परमात्मा को अहम ब्रह्मास्मि अहम वृत्ति से इतना व्यावृत्त होने देना, इतना अभिव्यक्त होने देना कि आप कुछ भी वाणी बोले, कुछ भी देखें तो उसमें अदृश्य परमात्मा दिखाई दे, उसको अभिव्यक्त होने देना। ये आंख उसने दी है तो परमात्मा को अंदर बोलिए, ये शरणागति क्या है? ईश्वर अर्पितम नेच्छया कृतम, ईश्वर को अर्पण करना क्या है? शरणागति क्या है कि ये आंख तूने दी है, मैंने ठीक ठीक सब देख लिया, नाउ इट इज फॉर यू। आप जितना जल्दी सके दे सके उसको आंख दे देना, यानी आंख दे देना यानी क्या कि ये आंखें अब तेरे लिए है, तुझे जो देखना है वो देख ले, ये मुख तेरे लिए है, जो बोलना है वो बोलना, जो खाना है वो खाना है परमात्मा, जो कान तुझे दे दिए, अब मैं जिद नहीं करूंगा कि यही सुनना है, यही खाना है, यही देखना है, यही पहनना है, इट इज योर्स, यूटिलाइज इट। ये शरणागति है तो हृदय आसन शुद्ध होगा, और ऐसे हृदय आसन शुद्ध करने के लिए ये भक्ति है, स्तोत्र है, अनेकविध स्तुतियां है, ऐसे ये न कहने प्रकारेण सत्संग करके, ये प्रयत्न करके हम परमात्मा के प्रति जितने निकट हो सके, मनुष्य शरीर एक ही ऐसा है उसमें हम जा सकते हैं, इसीलिए इसका सदुपयोग करके, एक एक क्षण का उपयोग करके वो परमात्मा के प्रति हमारी निष्प्रतिदिन गति हो, ऐसी ही परमात्मा को प्रार्थना करते हुए कल हम फिर से मिलेंगे।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम डॉट ऑर्ग, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Nandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: उसी से वही क्या है जगत का सृष्टा है, ये संकेत। और फिर आगे संकेत किया वरेण्यम, वही क्या है वर्ण करने योग्य, प्राप्त करने योग्य, क्योंकि जब मूल की प्राप्ति हो जाए तो सब कुछ मिल गया। और मूल की जब तक प्राप्ति नहीं होती है तब तक अधूरापन रहता है, तब तक सर्वस्व नहीं मिलता, पूर्णता नहीं आती। इसलिए संकेत किया कि वही वर्ण करने योग्य है, वही प्राप्त करने योग्य। और शास्त्रों में अन्यत्र भी तम ह आत्मबुद्धि प्रकाशम ममुखर वही शरणम अहम प्रपद्य, माने उस आत्मरूप को प्रकाशित करने के लिए ऐसी बुद्धि को हम उस देव से चाहते, ऐसा संकेत किया। और अन्यत्र भी संकेत किया स्मृति के अंतर्गत सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृत ज्ञान मपोहनम च, जो ये सब कुछ करने वाला है का वही वेदैश्च सर्वई रहमेव वेद्यु, संपूर्ण वेदों के द्वारा कौन जानने में आने वाला, कहा वही मूल तत्व। और जब उस मूल तत्व को जान लिया जाता तो वेदांत कृत वेद है, संकेत कर दिया तो वो वेदांत कृत हो जाता। और वेदांत कृत का मतलब कृत भूतकालिक क्रिया, माने उसने सिद्धांत को कर लिया। और जिसने सिद्धांत को कर लिया तो अब करना बाकी क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से वही यहां संकेत किया वरेण्यम, वही प्राप्त करने योग्य है। इसलिए क्यों कहा उसकी प्राप्ति भी हो जाएगी तो लाभ क्या होगा, प्रश्न हमारा तो जो है, क्योंकि आप बोलते हो दर्शन की पद्धति है अनुद्देश्यम बिना मंदोपि न प्रवर्तते, जब तक कोई उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती है तो एक मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त, तो हम इस कार्य में प्रवृत्त क्यों हो, इससे हमें लाभ क्या होगा, लाभ की दृष्टि होती। अब लाभ की दृष्टि जब देखते हैं तो संकेत क्या किया, कहा वरेण्यम देवस्य भर्गो, क्योंकि देव कैसा है तो उसका विशेषण दिया भर्ग रूप। ये भर्गता क्या है तो भर्ज धातु से भर्ग शब्द बनता, भर्जयति भर्गयति इति भर्ग, तो जैसे भुर्जी शब्द बनता उसी धातु से, भुर्जी क्या करता चने को भून देता, और चने को भून देता है तो चना क्या होता उसका आवरण टूट जाता, और आवरण टूट जाता है तो चने में एक विकास आता है, एक सौंदर्य आता है और स्वादिष्ट भी हो जाता, लेकिन उसमें फिर आगे जो है प्ररोहण नहीं, मतलब अंकुरित वो नहीं होता। तो जैसे वहां भुर्जी काम करता वैसे ही क्या है परमात्मा भी भुर्जी है, इसलिए भर्ग कह दिया। वो क्या करता कहा वो भूंज देता, इसको भूंज देता है, तो जैसे वो अंकुरित होने की शक्ति है वैसे ही कामना ही सारे संसार की जड़ है, अंकुर है, तो वो हमारी कामना को ही भूंज देता। अथवा यूं कहें हमारे पाप और पुण्य दोनों को जला देता। संपाति गया असुर के सामने तो क्या हुआ दोनों पक्ष उसके जल, तो निष्पक्ष बना दिया। तो ये क्या करने वाला निष्पक्ष बनाने वाला, निर्विशेष बनाने वाला। तो इसलिए संकेत किया कि भर्ग रूप है, ऐसे भर्ग रूप देवस्य धीमही, हम उसका ध्यान करते क्यों ध्यान करते, कहा वही हमारी बुद्धि में ऐसा प्रकाश, हमारी बुद्धि को प्रेरित करेगा जिसके द्वारा हम उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकेंगे, जिसे गुरु जो है चिदाकाश रूप जो गुरु है और उपाधि को लेकर के जिस कार्य को करता है वो कार्य इसी ओम से हो जाएगा। ये संकेत किया तो इस प्रकार का ओम। अब जो ये ओम है ऐसे ओम का उच्चारण करते हुए क्या कहा ओम शन्नो, तो ओम तो संकेत कर दिया ब्रह्म का अत्यंत नजदीकी है, लेकिन अब उसी ब्रह्म की नजदीकता से फिर कुछ दूरी चलेगी, तो दूरी में फिर संकेत क्या किया, मित्र हो, क्या कहा, मित्र, ओम शं नो मित्र, ओम मित्र न शम। अब जो मित्र है वो क्या करे, तो कहे न अस्माकम, हमारे लिए, शम सुखम शमनम, शमन करे, सुख करे, जो हमारे में दुख है उस दुख का शमन करे, और दुख का शमन करके क्या करे, सुख प्रदान करे। तो वह कौन करे, तो कहा मित्र। अब मित्र क्या है, तो सर्वमान्य इति मित्र, या मित्र शब्द का अर्थ दूसरा क्या है, तो आप जानते हो भर्तरी ने लिखा, पापान निवारे योजेते इताय गुहम च गुहत गुणान प्रकटी कर, आपदगतम न जहात ददाति काले शनमित्र लक्षण मिदम प्रवदंति। तो सच्चे मित्र के लक्षणों की चर्चा की, सच्चा मित्र कौन है, तो संसार के जो मित्र हैं वो कुछ सहयोग तो कर देते हैं, कुछ कार्य तो करते हैं, लेकिन जैसा यहां कहा गया वैसा आपत्ति के समय साथ नहीं देते, वैसे तो देते हैं, पापों से भी हटाने का प्रयास कर लेंगे, सदमार्ग में भी लगा देंगे, ये सब कर देंगे, और दे भी देंगे, सहयोग भी कर देंगे, लेकिन आपत्ति में साथ देना, मृत्यु काल में साथ देने वाला, ये हमारा संसार का कोई भी मित्र नहीं। तो ये मित्र तो हैं, लेकिन यथार्थ मित्र, तो सच्चा मित्र कौन है, तो कहने लगे ओम सच्चिदानंद परमात्मा। अब जो है वही सच्चा मित्र है, तो ऐसे मित्र को लेकर के कहा जो मित्र है, और मित्र कब कहलाता है, मित्रता कब होती है, तो आप जानते हो मित्र मित्र में परस्पर स्नेह भाव होता है, परस्पर क्या होता है, स्नेह भाव होता है, बगैर स्नेह के मित्रता कभी टिकती नहीं। तो मित्र में स्नेह, और स्नेह क्या है, तो नैयायिकों ने तो लिखा चूड़ाद पिंडी भाव हेतु स्नेह, बिखरे हुए खंड खंड कणों को जो एकीकृत कर देता है उसका नाम है स्नेह। जैसे आप जो कनक है, आटा है, वो आटा क्या है, कण कण में बिखरा हुआ, और जल को जब उसमें डाल देते हैं तो वही क्या बन जाता है, पिंड बन जाता है, और पिंड बन गया तो किसके माध्यम, जो जल के अंदर स्नेह तत्व था, गुण था, स्नेह जल का गुण है, उसने क्या किया, उसे एकीकृत कर दिया। तो स्नेह क्या करता, एकत्व स्थापित करता, एकीकृत करता, तो स्नेह क्या हो गया, तो इसलिए स्नेह को क्या कहा, स्नेह कहो प्रेम कह दो उसी का नाम, उसी को क्या कहा, भक्ति कहा गया, उसी का नाम क्या रखा गया, भक्ति है। इसलिए जो वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने लिखा महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ा सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति ऋतिख्याता तथैव मुक्तिर न चान्यथ। संकेत किया, अब स्नेह कब होता है, प्रेम कब होता है, तो किसी से भी प्रेम तभी होता है जब उसमें गुण विशेष आप देखते हो, गुण विशेषों को लेकर के ही किसी पदार्थ से या किसी व्यक्ति से हमारा प्रेम होता, अर्थात गुणों, गुण क्या बतलाते हैं, गुण उसके महत्व को बतलाते हैं, गुण क्या बतलाते हैं, गुण पदार्थ की महिमा को बतलाते हैं, पदार्थ के महत्व को बतलाते हैं। तो जब उसकी महिमा का हमें ज्ञान होता, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु, पहले उसकी महिमा का ज्ञान होता, पदार्थ में गुण विशेषों का ज्ञान होता, और जब पदार्थ में पदार्थ की महिमा का ज्ञान होता है, गुण विशेषों का ज्ञान होता है, तो उस पदार्थ से हमारा स्नेह हो जाता, और जिस पदार्थ में गुण विशेषों का हमें ज्ञान नहीं होता है तो उससे हमारा स्नेह भी नहीं होता। तो वही संकेत किया कि महात्म ज्ञान पूर्वस्तु, उसकी महिमा का ज्ञान होने पर और सुदृढ़ सर्वतोदिका सबसे अधिक और दृढ़ क्या हो जाता है का स्नेह, जो स्नेह है तो सबसे अधिक और दृढ़ स्नेह है उस स्नेह का नाम ही है क्या भक्ति। स्नेहो भक्ति प्रतिख्याता, ऐसे स्नेह का नाम ऐसे प्रेम का नाम क्या है भक्ति। और सबसे अधिक और दृढ़ प्रेम कहां संभव है तो विद्यारण्य स्वामी ने क्या लिखा, हमको धन से प्रेम है, संसार के पदार्थों से प्रेम है, और शरीर से प्रेम है, पुत्र से प्रेम है, परिवार आदि से प्रेम है, ये सारे प्रेम है, स्वर्ग आदि से प्रेम है, ये सब प्रेम, लेकिन सबसे अधिक प्रेम कहां है ये जब कहा जाए तो आप देखते हो कि आपको धन से प्रेम है लेकिन धन का आप त्याग कर देते हो। कब तो धन से अधिक प्रेम कहां हो गया, इसलिए सुरेश्वराचार्य ने लिखा विये वार्तिक में, तो वित्त से भी अधिक प्रेम है पुत्र से। यदि पुत्र अस्वस्थ हो जाए तो क्या करते हो, धन भी आप त्याग देते हो, और वही पुत्र आपको नींद आ रही है और पुत्र आपसे बातचीत कर रहा है तो कहते हैं चुप हो जा, अब जो है मैं है सहन कर लेने दे, तो पुत्र आदि का प्रेम भी जो है कैसा हो जाता, वो भी परित्यक्त हो जाता, तो आप कहां चले जाते, कहा नींद में चले जाते, विश्राम में चले जाते। लेकिन ये भी विश्राम कैसा, खंड सह, तो अंतिम जो विश्राम है वो क्या है, आत्मा का ही विश्राम, और वही है प्राणी मात्र का सबसे अधिक प्रेम। इसलिए याज्ञवल्क्य और गाना मैत्रेयी के प्रसंग में आप सुनते ही हो, है ना, कि सब जो प्रेम जो सब वस्तुओं से है वो किसके लिए, का आत्मा, आत्मा के प्रेम के लिए। और यही आचार्य जो है विद्यानंद स्वामी ने लिखा, यम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पद में था, ये आत्मा ही पर आनंद रूप है। इसलिए सबसे अधिक प्रेम हमारा सुदृढ़ प्रेम कहां होता है, आत्मा में ही होता है। बंदरिया का दृष्टांत भी लोग देते हैं, जब तक जल जो है उसके गले तक आया तब तक तो बच्चे को सिर पर रख लिया, और जब जल उसके मुख में जाने लगा नासिका में जाने लगा तो बच्चे के ऊपर खड़ी हो गई, क्यों, अपने से सबसे अधिक प्रेम है। तो ये तो उदाहरण है स्थूल शरीर को लेकर, लेकिन आत्मा से वास्तव में प्राणी मात्र का सबसे अधिक प्रेम। तो ऐसा जो प्रेम है, ऐसी महिमा को जब आत्मा की महिमा को हम जब जान लेते हैं तो सबसे अधिक हमारा प्रेम कहां होता है, उस आत्मा, उस प्रेम का नाम ही है भक्ति, अन्य प्रेम का नाम भक्ति नहीं। इसलिए चाहे भगवत पादाचार्य आचार्य शंकर ने लिखा हो कि आत्मा अनुसंधान भक्तिरेव गरीयसी, वही श्रेष्ठ भक्ति, और चाहे जहां आचार्य शब्द से संकेत किया गया कि व्रजवल्लवाएं व गोपिकाएं भक्ति की आचार्य हैं, तो उनके हृदय को जरा टटोलो, उन्होंने क्या लिखा, नकल गोपिका नंदनो भवान अखिल देह नाम अंतरात, ये जब दृष्टि उनकी बनी तब उनका सबसे अधिक प्रेम हुआ, और उस प्रेम का नाम ही है भक्ति। तो यहां संकेत करते कि वह मित्र, और वो मित्र कौन है, मित्र कहलाने योग्य कौन है, तो कोई दूसरा नहीं है, वही चिदाकाश कहो ब्रह्म कहो आत्मा कहो सच्चिदानंद कहो, वही क्या है, परम प्रेमास्पद का विषय, और उससे ही सुदृढ़ प्रेम होना। और उससे सुदृढ़ जब प्रेम होगा तो वो प्रेमी क्या करेगा, वो प्रेमी तुम्हारे दुर्गुणों को दूर कर देगा, तुम्हारी सारी बाधाओं को नष्ट कर देगा। तो ये मित्र का लक्षण, तो ऐसा जो मित्र, यद्यपि इंद्रियगत देवता रूप से भी मित्र को कहा गया, लेकिन यथार्थ रूप में यहां मित्र शब्द का अर्थ शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत भी और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत भी यही किया गया, अंतर थोड़ा सा है नीचे की पंक्तियां छोड़ करके, और जो है विष्णु रुक क्रमा यहां तक जो है कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र आया और शुक्ल यजुर्वेद में भी इस मंत्र आया। तो अब जो है संकेत करते कि मित्र हो वह मित्र है, और आप ये जानते हो एको देवा सर्वभूतेश, वो एक ही देव है, लेकिन एक ही देव अनेक देवों के रूप में भी विशेष उपाधि को लेकर के अनेक रूपों में भी वही देव के रूप में प्रकट हो जाते। आप एक चर्चा और सुनते रहते हो, 33 कोटि। अब ये 33 कोटि क्या है? तो लोग बड़ी चर्चा इस पर करते हैं कि उस समय इतनी जनसंख्या भारत की नहीं थी और 33 करोड़ देवता और फिर भी सुधार नहीं कर पाए, ऐसा कहते हैं। लेकिन वहां पर आप विचार करके देखें, ये 33 कोटि जो है किसका परिचायक है? तो यही ओम की व्याख्या अथर्ववेद के अंतर्गत आई, उसकी अथर्ववेद उपनिषद है, अथर्व सिखो उपनिषद, उसके अंतर्गत चर्चा आती, दो मंत्र ही दिए वहां। तो वहां संकेत किया कि प्रथमा अस्य मात्रा पृथ्वी, अष्टवसु ब्रह्मा, ऋग्वेद और गारस्पत्य अग्नि अनुष्टुप छंद, ऐसा वहां वर्णन आया। मने ओम की जो आकार मात्रा है उसी से पृथ्वी लोक, ऋग्वेद, अष्टवसु और एक ब्रह्मा, ये देव, और ऋग्वेद आदि की संकेत कर दिया, अरिष्टपादी छंद कर ला दिया, गारस्पत्य अग्नि बतला दी। तो अब वहां देवों की चर्चा जो मूल हम लेना चाहते, तो देव कितने बतलाए? अष्टवसु माने 8 वसु और एक ब्रह्मा, कितने हो गए? 9। उकार जो द्वितीया अस्य उकार मात्रा, जो दूसरी उसकी उकार मात्रा है, उस उकार मात्रा से क्या लिया? तो रुद्र, जो 11 रुद्र कहे गए उनमें से एक रुद्र गण किया, रुद्र आदित्याश्च, रुद्र और 12 आदित्य बतलाए जाते हैं। 12 आदित्य कितने हो गए? 13। और फिर वहां पर यजुर्वेद आदि करके संकेत किया गया, जगती आदि छंद की चर्चा की गई, तो लेकिन चलो उनसे मतलब नहीं, हमें देव शब्द से मतलब। तो वहां पर कितने हो गए? 12 माने 12 है और एक रुद्र, 13। 13 और 9 कितने हो गए? 22। और जो तृतीय मात्रा है, तृतीया मकारस्य मात्रा, तृतीय जो मकार मात्रा है उससे द्यौलोक, द्यौलोक, और कहने लगे द्यौलोक श्यामवेद, श्यामवेद, आवाहनी अग्नि, और जो है इसी प्रकार से वहां क्रम से बतलाते हुए फिर देव की चर्चा कर दी। कहा देव, तो कहने लगे विष्णु और 10 रुद्र। तो विष्णु और 10 रुद्र कितने हो गए? 11। 11 22 कितने हो गए? 33। ये हैं 33 देवता। अब कहा कि कोटि शब्द बचा पड़ा हुआ, वो संख्या का वाचक वहां पर नहीं, शब्द जहां पर भी शब्द का अर्थ लिया जाता संगति के अनुसार। जब यहां 33 की गणना की गई तो 33 में कोटि शब्द जो है वो करोड़ का वाचक, संख्या का वाचक नहीं, तब कोटि शब्द किसका वाचक? तब कोटि शब्द है, आप बोलते हो ये बड़ी उत्तम कोटि का व्यक्ति है, तो कोटि शब्द क्या है? श्रेष्ठता का वाचक। ये 33 श्रेष्ठ देवता, और आप सुनते ही बृहदारण्य को प्रश्न, एक देवता, फिर 1.5 देवता रही प्राण आदि को लेकर के, फिर 3 देवता और फिर 3 से 33 देवता, उन्हीं 33 को लेकर के फिर इंद्रियगत आदि जो है अवयवगत देवताओं को भी ग्रहण कर लिया गया। तो मुख्य देवता जो है, श्रेष्ठ देवता कौन बतलाए? 33 श्रेष्ठ के अंतर्गत। तो ये 33 देवताओं का संकेत, इसलिए यहां पर संकेत करते हैं, है तो वो एक, एको देवा, लेकिन वही देव जो है उपाधि भेद से, और वही क्या है? मित्र है। वही क्या है? मित्र। क्यों? आंख में जो रोशनी है वो किसको लेकर के? आपको आंख की रोशनी है, आंख तो बेचारी इतनी लाचार है कि आंख जब भी देखती है तो उसे सहयोगी चाहिए, बगैर सहयोग के देखने में समर्थ नहीं। तो भौतिक प्रकाश उसे चाहिए, या तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं तो चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, चंद्रमा का प्रकाश नहीं तो विद्युत का प्रकाश चाहिए, विद्युत का प्रकाश नहीं तो अग्नि का प्रकाश चाहिए, तभी देखने में आंख समर्थ होती। लेकिन फिर भी ये उपाधि कर, उस आंख को भी ज्योति देने वाली कौन है? यदि चेतना अंदर से ही न हो तो क्या आंख देखने में समर्थ होगी? कान सुनने में समर्थ होगा? नासिका सूंघने में समर्थ होगी? कोई भी अवयव जो है ये क्रिया करने में समर्थ नहीं। देव तो एक है, लेकिन वही उपाधि वेद से तत्तद कार्य करता है, इसलिए उसे जो है मित्र शब्द से भी कहते हैं। तो मित्र वास्तव में कौन है, तो ये भी संकेत करें, तो वही मित्र है, तो वही मित्र रूप से हमारे लिए प्रकट होता, तो मित्र भी एक उपाधि हो गई, द्वैत आ गया। तो मित्र भी कौन है, वही है, तो ओम जो है वही मित्र है, इसलिए कहा वह जो मित्र है, या जिसको हम अवयवगत या इंद्रियगत देवता मान लेते उसे भी स्वीकार कर लो, तो वहां पर भी प्रकाश करने वाला वही है, इसलिए कहा मित्र शं। वह जो मित्र है, वह मित्र रूपी देवता क्या करे, शं हमारे लिए सुख करे, है ना, अर्थात समन करे, हमारे दुर्तों को दूर करे, अर्थात हमारे दुख को दूर करे और सुख की प्राप्ति कराए। दुख दूर करने का मतलब क्या है, दुख दूर इसीलिए चाहते कि सुख चाहिए, तो दुख को दूर करे और सुख की प्राप्ति करे, इसलिए संकेत किया ओम सन्नो मित्र। और ऐसे ही कहा शम वरुण, क्या कहा, वरुण, तो वरुण देवता भी बतला दिए, जलादि के देवता, इंद्रियगत भी कह दिया, वो भी अर्थ है, लेकिन ये वरुण भी कौन है, तो वही ओम, क्या है, तो वरुण शब्द का अर्थ क्या है, ब्री वर्णे अर्थ में धातु से ही वरुण शब्द बनता, तो वर्ण करने योग्य कौन है, जिसका वर्ण करने से है क्या होगा, का लाभ होगा, क्या लाभ होगा, तो श्रुति क्या कहती, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्या, वो बल देगा, वरुण हमें वो बल देगा, तो वह बल देने वाला भी कौन है, तो कहने लगे भाई, तो ऐसे उस वर्ण से कहा कि जो वर्ण करने योग्य है, ऋणी धातु किसी को लेकर के, तो उसका हम जर्व कर, तो वर्ण शब्द का अर्थ बतलाते हुए और संकेत करते हैं, चयन करना चुनना, क्या बतलाया, चयन करना चुनना, अब कैसे चयन करना, कैसे चुनना, तो इसके लिए न्याय है, नीर चीर विवेक, कौन है, हंस, तो हंसक क्षीर न्याय बोला जाता, क्या बोला जाता, हंसक क्षीर न्याय, तो हंसक क्षीर न्याय के द्वारा वर्ण करना चुनना, तो हंस क्या करता, हंस करता है अपनी चंचू को है? मिश्रित उस पदार्थ में जिसमें जल भी है और जिसमें दूध का अंश भी है, उसमें क्या करता, तो अपनी चंचू को डाल देता, और चंचू को डाल देता है तो क्या हो जाता, पृथक्करण हो जाता, वो पनीर अलग हो जाता है जो दूध का अंश है, और पानी का अंश है वो अलग हो जाता, तो हंस क्या करता, चुन लेता, ग्रहण कर लेता, किसको ग्रहण करता, दूध के भाग को ग्रहण कर लेता है, पानी भाग को छोड़ देता, तो इसलिए यहां वरुण शब्द का संकेत किया, जो वर्ण हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि जिसके द्वारा हम जो है चयन करने में समर्थ हो जाए, चयन करने का हमें बल मिले, जैसे ये कार्य करने में वरुण समर्थ है, तो ऐसे ही वो वरुण देव जो है हमारे लिए क्या करें, वो बल हमें दें जिससे हम चयन करने में समर्थ हो जाए। अभी क्या है, हम भी जानते हैं आत्मा अनात्मा, आत्मा भी दुख रूप नहीं है, और वास्तविकता ये है कि अनात्मा भी दुख रूप नहीं, दुख रूप कौन है, तो दोनों की तादात्म्यता, अब उस तादात्म्यता का यदि निराकरण कर दिया जाए, विवेक कर दिया जाए, और विवेक करके वह बल हमारे अंदर आ जाए कि हम उसके चुन लें, किसको, जो सुख स्वरूप है, और ऐसे जब चुने तो अनात्मा में तो सुख कभी है ही नहीं, सुख कब भाषित होता, तो आत्मा के संसर्ग संबंध से, तो ऐसे उसको ग्रहण कराने में समर्थ कौन है, तो कहा

0: जैसे नींबू को डाल देते हो तो क्या होता, दूध फट जाता। तो वहां तो यद्यपि उसमें स्वर नहीं है मकार में, लेकिन यहां पर ले लो स्वरयुक्त, तो अमल की, अम्ल की जगह पे अमल कर लो। मने वो अमलता, वो आचरण हमारे जीवन में, वह सामर्थ्य वह हमें को दे दे कि हमारे जीवन में वो आचरण आ जाए, वो बल आ जाए कि जिससे हम विवेक करते हुए और जो सद है उसका ग्रहण कर सकें और असद है उसका त्याग कर सकें। और ये जब कर लेंगे तो हमारे लिए सुख की प्राप्ति हो जाएगी और दुख की निवृत्ति। इसलिए संकेत किया सम वरुणा, हे वरुण क्या करो, तो वरुण शब्द से उसे संकेत कर दिया कि उसी ओम को वह वरुण जो है हमारे लिए शमन करे, अर्थात हमारे में ऐसी सामर्थ्य दे और जो हमारी उस सामर्थ्य के अवरोधक हैं, विघ्न हैं, उन विघ्नों को दूर कर दे। ऐसा संकेत करते हुए आगे पुनः संकेत किया सन्नो भवत्वर्यमा। हाँ? तो सन्नो भवत्वर्यमा समय हो गया, तो इसकी चर्चा कल करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.आर रेडियो, the size of our audio collection continues to grow day by day. We now host more than 25,000 audio recordings. In order to make these extensive resources more accessible and beneficial to our radio listeners, we have reorganized our program schedule. Thirumurai music and Thirumurai discourses will be broadcast on Thiruneriya Tamilosai. Philosophical discourses and Periyapuranam lectures in Tamil will be broadcast on Shivatattvam. Programs in languages other than Tamil will be broadcast on Shaivalahari. As a result of these changes, there will be some adjustments to program timings. We trust that you will kindly accept these schedule changes with understanding and patience. We also request you to encourage your relatives and friends to listen to and benefit from our radio services. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Over. समझ गए ना, इसीलिए उनका नाम उद्गीत रखा, ऋषि लोग उद्गीत का प्रयोग करते थे। हाँ, इसका ध्वनि जहां तक जाएगा वहां सब अमंगल हट जाएगा। तो उद्गीत कहो, प्रणव कहो, ओंकार कहो, एक ही बात है। तो जो ऋषि जिस रूप में इनके साधना किया, साधन करके साक्षात्कार किया, वो ऋषि ने उसका नाम ऐसे ही रखा है। तो स्वदेहम अरण्यम कृत्वा प्राणवम स उत्तर अरण्यम, आपने देह क्या वो अरण्य, मंथन करने के लिए दो लकड़ी चाहिए, आधा माने नीचे का अरण्य लकड़ी और ऊपर का सौठा छोटा समझते हैं ना, दही मंथन करते देखा नहीं, देखा होगा घर में बनाते दही की नहीं, मक्खन मंथन करते हैं ना, तो घर में जो है ना आजकल घी निकालने के लिए मक्खन से तो मंथन करते हैं। तो स्वभ या उसी के नीचे का अरण्य की जगह में अपना शरीर समझ लेना, उत्तर अरण्य के जगह में प्राणव समझना, प्राणवम से उत्तर अरण्य। तो क्या करना, मंथन किया ध्यान, ध्यान रूपी मंथन के द्वारा, तो ध्यान रूपी मंथन से कौन सा मक्खन निकलेगा, आत्मा रूपी ज्ञान रूपी मक्खन प्रकट होगा। तो ज्ञान रूपी मक्खन पिलाओगे पियोगे तो क्या होगा, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहां से प्रकट होगा, मंथन से, किसके मंथन से, ध्यान और निर्मथन अभ्यास। तो ऐसे कहते हम ध्यान कहां करें, तो ये श्रुति बतलाती है अग्नि जत्र अभिमिच्छते, जहां अग्नि मंथन होता है और जहां वायु

0: तत्र अविरुध्यते, जहां वायु रुक जाता है। वायु रुक गया तो मतलब क्या हुआ? कुंभक सबने ना, वायु तत्र अविरुध्यते है। अरे यार नहीं समझना, वायु जो एक वायु होता है, देखो अग्नि की प्रेरणा से वायु प्रज्वलित होती है। अग्नि होता है पहले, बाघ अग्नि, वायु माने अग्नि माने वाक, वाग इंद्रिय। तो वाग इंद्रिय के पीछे कौन आए? प्राण। आन के प्राण के पीछे कौन आए? प्राण के पीछे, अभी समझो इंद्रियभ्य परा ही अर्थ, अर्थभ्य परम मन, मनसस्त परा बुद्धि, बुद्धिर आत्मा महान परम, महत परम अव्यक्तम, अव्यक्ता पुरुष पर, पुरुषान्न परा कंचित, सा कष्टा सा परागते। अभी देखो सबसे पर, सबसे पहले, सबसे पूर्व कौन है? पुरुष है, पुरुष है, पुरुषान्न परा कंचित, पुरुष से परे कोई नहीं है। सा कष्टा सा परागते है। अभी पुरुष से उत्तर में कौन है? अब क्रम से आओ, इंद्रिय भी परा ही अर्थ, इंद्रियों के परे कौन है? विषय, सूक्ष्म विषय, याद रखना। इंद्रिय भी परा ही अर्थ, अर्थ भी अर्थों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धिर आत्मा अहंकार, महत्व परम महत्त्व, महत्त्व से परे अहंकार, अहंकार से परे अव्यक्त, अव्यक्त, अव्यक्त से परे पुरुष। आप देखो उत्तर उत्तर जो है ना, वो पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर कनिष्ठ होता है। कनिष्ठ माने तुच्छ होता है, ठीक है, तुच्छ है। तो पूर्व पूर्व के उत्तर उत्तर की अपेक्षा पूर्व पूर्व श्रेष्ठ होगा, उत्कृष्ट होगा। आनी बात तो सबसे परे कौन है? पूर्व, सबसे पूर्व, सबसे पहले पुरुष हुआ। अब वहां पुरुष में ध्यान लगाओ तो उनके सत्ता से सत्तावान होकर के तुम्हारे तमाम इंद्रिय, मन, बुद्धि, अथवा प्राण आदि सब क्रियाएं कर रही है। इसीलिए मन को कहां लगाना चाहिए? जत्र वायु अभिमिच्छते है, वहां तक पहुंचो। अभी कहते वहां पहुंचने के लिए हमको करना क्या है? तो वायु जो है ये प्राणायाम, क्या करोगे? प्राणायाम, प्राण अपान गतिरुद्ध प्राणायाम परायण, प्राण और अपान के गति को रोकना। तो प्राण, प्राण जो ऊर्ध गति करे ऊपर की तरफ जाए, अपान नीचे की तरफ जाते, और दोनों का संधि कहाँ है? जहां दोनों का संधि है, प्राण ऊपर नहीं जाता है, नीचे नहीं जाता है, अपान ऊपर नहीं जाता है, जहां से अपान ऊपर के अधिकार उसका खत्म हो जाता है अधिकार, और प्राण का नीचे नहीं जाना, और दोनों का जो बीच में उस नाभि, उसका कहते कुंभक, उसका नाम है कुंभक, समझना। कुंभ माने घड़ा, रेशक पूरक कुंभक, अरे बात एक कुंभक माने घड़ा। तो घड़ा जब पूर्ण हो जाता है ना, तो हिलता जुलता नहीं है। ऐसे कहते तुम्हारे जो है ना प्राण अपान का जो स्थिति हो जाती है, तो प्राण अपान का जो गति स्थिर जहां हो जाती है, वहां मन को लगाओ। प्राण और अपान की गति स्थिर हो जाती है, तो स्थिर हो जाती का मतलब ऐसा नहीं दोनों समान हो गया, समान होना मर जाता आदमी, समझे कि नहीं? क्यों प्राण ना और अपान नहीं चले तो ऐसा तो कहते वायु जत्र अधिरुध्यते वायु जहां पर जाना रोध हो जाता है निरोध हो जाता है सोमो जत्र अधिरिच्यते सोम माने अमृत सोम माने सोमरस सोम माने चंद्रमा कई बातें हैं सोम शब्द अतिरिच्यते जहां सोम अधिक होता है तो सोम माने अमृत और जिसमें सोमरस की अधिकता होती है अर्थात सोमरस पान में जहां आनंद आता है जहां प्राण लगा मन को लगाने से मन को आनंद आता है तो वहां पर जाकर के मन को स्थिर करो मन को स्थिर करो ये तीन साधन आपको बतलाया ध्यान के लिए ये तीन साधन बतलाया याद रखना हाँ अग्नि बाघ इंद्रियम वायु प्राणायाम है बात और सोम चंद्रमा ध्यान जहां ध्यान करोगे है बात ये तीन बात बताए यह बता रहे आप देखो अग्निर यत्र इति अग्निर यत्र अभिमच्छते आधा नाधो देखो अग्नि यहां यज्ञ कर्मकांड हाँ अग्नि माने जहां हवन आदि किया जाता है हाँ अग्नि आधा नाधो में अग्नि का जो कथन है ना स्थित है अग्नि आधान करते ना क्योंकि आधान कहां से किया जाता है अग्निधन गृहस्थ आश्रम में अग्निधन किया जाता है हवन आदि करने के लिए है बात अग्निधन माने बोलाना मंथन करना माने प्रकट करना हाँ ब्रह्मचारी ही लोग अग्नि मंथन करेगा और गृहस्थ लोग अग्निधन कर माने ब्राह्मण लोग जो अग्निहोत्र आदि करते हैं ना उनके लिए है अग्निधन करेगा ले जाएगा चलो एक दिन पहले यज्ञ करने वाला हो तो यज्ञ करने के लिए एक दिन पहले आपने गर्भवती अग्नि को निमंत्रण देगा तीन अग्नि है आपके घर में गर्भवती अग्नि आवानी अग्नि दक्षिणा अग्नि तो आवानी अग्नि ने बुलाना गर्भवती अग्नि ने गृहवती के अधीन रहना गृहवती जिसका स्वामी है घर के स्वामी तो गर्भवती अग्नि से प्रार्थना करके ले जाया जाता है वो अग्नि को हवन करने के लिए यज्ञ कुंड में डालने के लिए उसी अग्नि में उनका हवन किया जाता है और मरने के बाद में यही गर्भवती अग्नि उनको दाह संस्कार करेगा ना दक्षिण अग्नि यज्ञ कुंड के दक्षिण भाग में रहेगा हवन करना है ना दक्षिण अग्नि में वो नहीं जाए ये गर्भवती अग्नि क्यों गृहपति के साथ साथ उसको खत्म कर दिया जाता है पेट नहीं रखता आपने देखा होगा अभी उसका प्रतीक है जब ले जाता है ना एक अंडा ले जाता है अग्नि का घर से ले जाता है वो अंडे ले जाते हैं ना उनका लड़का ले जाता तो उनके साथ साथ वो अग्नि समाप्त तो हो जाता नहीं तो अग्नि प्रज्वलित रहती है अब आप वो गए केदारनाथ में गए एक त्रिजुगी नारायण वहां तीन युग से अग्नि जल रही है हाँ त्रेता द्वापर कली हाँ त्रेता युग से द्वापर युग से इसी के नाम हाँ उसका नाम है क्या त्रिजुगी नारायण जो भी जाता है वहां लकड़ी डाल करके आता है एक बार तो आजकल नहीं जाता उधर क्यों नीचे से रास्ता चला गया तो उसको जाने के लिए ऊपर होकर के जाना पड़ता है पैदल जाना पड़ता है हाँ अभी हो गया त्रिजुगी नारायण में अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा नहीं पहले तो हम लोग तो पैदल गए थे ना, उस समय रास्ता नहीं थी ना, सड़क पर नहीं है, पैदल जाना पड़ता था। तो ऐसी अग्नि है आपका गृहस्थों के घर में अग्नि प्रज्वलित रहता है, जो अग्निहोत्री होते हैं ना ब्राह्मण, वो अग्नि घर में रखता है, सुबह शाम आहुतियां डालते हैं। हाँ नहीं, वो जो अग्नि का आप शादी करते हैं कि नहीं आप लोग, तो शादी के समय अग्नि प्रज्वलित रखता है कि नहीं, वो हाँ वो जो शादी करते हैं ना अग्नि अग्नि को प्रदक्षिणा करते हैं और सात धर्मों तक साथ रहने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं, अभी एक धर्म में छूट जाता है, क्यों सात जन्म की बात छोड़ दो, एक जन्म में छूट जाता है, क्यों अभी वो बंधन मानता नहीं ना, ये सब मान्यता की बात है, ये शास्त्रीय मान्यता जो होगा वो करेगा, नहीं मानेगा तो नहीं करेगा, और क्या है, युग युग की बात है, समय समय की बात है। हाँ क्यों नहीं, अग्निहोत्री ब्राह्मण है, अरे महाराष्ट्र में भी है, दक्षिण में भी है, हाँ है ना, हाँ वो गोकर्ण में है ना, हाँ वो हाँ गोकर्ण में है, हाँ साउथ में है, मेरे पास भी एक वो आती है गोवास है, अभी तो इसल नहीं आया अभी तक, तो उनका पति जो है ना जब तक रहे तब तक, अभी अभी पति का शरीर छूट गया, वो करता था वो, तो कहने का मतलब ये तो इन्हें गिने होते हैं, इन्हें गिने हैं जो शास्त्रों को मानता है, परलोक को मानता है, धर्म कर्म को मानता है, वो करता है। हाँ तो क्यों वो हाय नहीं था, क्या करेगा आप, हाँ चलिए, हाँ वायुर्जत्र अभी रुध्यते प्रव्याधो का वायुर्जत्र, वायु का जो है ना अविरोध हो जाता है, अविरोध माने रुक जाते हैं, ऊपर भी नहीं जाए और नीचे भी जाए, ऐसे जगह में ध्यान करो, मन लगाओ, सवित्र प्रेरित शब्द अभिव्यक्तम करोते ही, देखो सवित्र माने सविता भगवान सूर्य, सूर्य के द्वारा प्रेरित होकर के जो शब्द करते हैं, कौन वायु, वायु में कौन सा शब्द है, विशीति शब्दनम, सी शब्द, आपको आपको मकान अगर इसमें समुद्र के किनारे होगा, जब हवा चलती है खिड़की के बाहर खिड़की बंद कर देते हो, उसमें तो हवा अंदर आता, देखा कभी हवा चलती है ना, तो हवा से शब्द होता है कि नहीं, तो वायु में विशीति शब्द नम, अग्नि में बुगुबुगु शब्द, बुगुबुगु शब्द होता है, जल में बुलबुलु शब्द, बुलबुला होता है ना, बुलबुल होता है, आई नहीं बात, बुलबुल शब्द, तो हर एक 500 भूतों में शब्द है, क्यों आकाश 500 भूतों का कारण है, तो आकाश किसको कहते, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश शब्द गुण वाला है, तो आकाश का शब्द गुण जो है ना वायु में अग्नि में जल में पृथ्वी में भी आएगा, पृथ्वी में भी है, पृथ्वी में कौन सा शब्द, कड़कड़ा शब्द, कड़कड़ा शब्द होता है, कड़कड़ा शब्द, इसीलिए कारण जो है ना कारण गुण कार्य में संसरण होता है, ऐसे हमारे यहाँ परंपरा है, बाप का गुण बेटा में, माँ का गुण बेटी में आया कि नहीं आया देखता है, बाप का संकल्प सूरत बेटा में आया कि नहीं आया, उसके अंदर वो गुण आया कि नहीं आया, ये देखता है। क्यों? कारण गुण कार्य में संसरण करता है। अन्य बात, पृथ्वी का जो गंध गुण है वो घड़ा में आएगा, याद रखना। कार्य है ना घड़ा, मिट्टी से बना हुआ है तो उसमें आएगा ही। हाँ, कारण गुण कार्य में अनुगमन करता है, अनुसरण करता है। ऐसे आकाश का गुण शब्द, तो शब्द कहाँ आएगा? वायु में। तो वायु में कौन सा शब्द है? विसी की शब्द ना, सी सी सी सी सी आवाज होता है, वही यह कहते हैं। देखो, सवित्रा प्रेरित शब्द अव्यक्तम करोते सोमो जत्र। अभी देखो, सोमो जत्र दश अभवित्रा पूयमानो अतिरिच्यते तत्र क्रोधो संजायते मनः। देगा मन कहाँ उत्पन्न होता है? सोमो जत्र दश अभवित्रात् पूयमानः। दश अभवित्र सोम क्या का? सोमो जत्र दश अभवित्रात् पूयो भवति। सोम रस है ना, सोम सोम देखा, सोम जाग होते देखा नहीं देखा? हमने काशी में देखा, ब्राह्मण लोग जो है ना, ये सोम जाग कर रहा था। सोम एक लता होती है, लता उसी को निचोड़ करके रस निकालता है, वो रस की आहुति देते हैं। तो कहते हो रस को जो है ना छानते हैं, तो उसके अंदर जो दोष है वो दोष निकल जाता है, अपवित्रता निकल जाती है, पवित्र हो जाता है। ये बात है सोमहा। सोमो जत्र दश अपवित्रात्, दश अपवित्रात् माने दस अपवित्र नहीं है, माने छाननी को दस अपवित्र बैठे है। छानते हैं ना, कपड़ा से छानते हैं, आजकल को छाननी आ जाए, पहले वो नहीं था ना, कपड़ा से छानते थे कि नहीं? हाँ, छानते हैं ना, वो पवित्र बनाते हैं ना, शुद्ध करते हैं ना, शुद्ध करते हैं। हाँ, जैसे पानी पियो छान करके, बोलता है कि नहीं? दश अपवित्र पूयमानो अतिरिच्यते तत्र क्रोधो संजायते मना। तत्र मनः क्रतो, तत्र क्रतो माने यज्ञ में मन संजायते। हाँ, मन उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता माने मन उसमें लग जाता है। क्यों? सोमरस पान करके ब्राह्मण लोग मस्त हो जाता है। माटुंगा में देखा था एक आदमी का सोमरस लिखा हुआ है, सोमरस लिखा है दुकान में, सोमरस। हाँ, तो हमने देखा, मैंने सोमरस यहाँ मिलता है, पूछ लो कैसे देता है। तो बस पूछा तो सोमरस कहते शराब को, सड़ा हुआ उसका रस। सोमरस कहते सड़ा हुआ रस को सोमरस कहते। ये अंगूर को सड़ाते है ना, जौ को सड़ाते, भात को चढ़ाते। गांव में जो है ना, भात को सड़ा करके सोमरस बनाता है, गांव में बात को सड़ाता है बोतल में। अच्छा, वही तो सोमरस है, सड़ा हुआ रस है सोमरस। जबरदस्त है। क्रतो संजयते मरह, क्रतो जग कर्म में सोम जाग में मन जो है ना क्या करता है? मन जो है उस यज्ञ कर्म में लगता है, मतलब लगता है हमने उसमें आनंद आता है। कर्म है, कर्म कांड की बात कर रहा है, इसका दूसरा अर्थ करेंगे भाष्यकार, वो कल आपको बताएंगे।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. ओम नमः शिवाय।